शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर। तो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन है वो। सो जयरमन सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटिफुल लवली मॉर्निंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स।
1: Yeah, I am Jayaraman from Bangalore. So I originally I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career. And I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture. And acupuncture, acupressure. I took a master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on a voluntary service. This is my
0: profile. Good, great. तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी। किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए, ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें, तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए।
1: एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी यू नो ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए। सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली। तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुस हु टीच यू फ्यू श्लोकास एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना धो के भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ हाथ इस करके, नहीं नो यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास, दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन। बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन, तो मम्मी की इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई रिमेम्बर गोइंग यू नो टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में, तो मम्मी बिकेम माई फादर एंड मदर बेसिकली। सो आई वॉज ऑलवेज ट्रेवलिंग विथ माई मम्मी, तो मम्मी मुझे प्रोफेशन के लिए लेके जाती है, तो दैट वॉज लिटिल हाई फॉर मी। उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, यू नो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो स्वामी जी वहां बोलते थे सोहम बोलो, व्हेनेवर यू डू एनीथिंग यू टेल सोहम। सोहम का यू नो संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट, सी आई एम गॉड बेसिकली। तो उसको संस्कृत में सोहम बोल देते हैं। तो वो बोलते हैं, तो आप चलते टाइम सोहम बोलो, कान भरने टाइम सोहम बोलो, घर में यू नो यू आर कुकिंग, मदर को बोलते हैं। तो आई इवन यूज टू टीस माय मदर, अरे आपको बोलते क्यों नहीं हो सोहम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सोहम बोलो। तो शी यूज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे। So I used to tease her, but I was not understanding the depth of that statement. Hmm? And then my influence was, when I was the youngest fellow of 5 sons and 1 sister. So I was the youngest and I was just 6-7 years, and she used to read a lot of Adhyatmic text, you know, about all the saints. I used to just sleep in her lap, basically, just. And this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening, but during sleep, it has gone subconscious mind. And all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious, आप कह सकते हैं, which helped me in my later life. Then that is you know spirituality का first lessons जो है, it was very useful in my life. Then college days में I got associated with a mission, with a religious mission where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. भगवद गीता और स्पिरिचुअलिटी के काफी कनेक्शंस हैं। प्रेयर एक्चुअली इज अ यू नो इट इज आध्यात्मिक शुद्धता बोलते हैं ना, इट इज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। इनिशियली बचपन में तो प्रेयर ऐसे ही होता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलना है, आई वांट टू बी यू नो आई वांट टू गेट गुड मार्क्स, इट स्टार्ट्स लाइक दैट यू नो। And then prayers starts with the chanting of, you know, Om. Om jo syllable hai.
0: Right, sir.
1: Teen akshar ka A, O, N, M. And that really gives you the solace and peace in the mind. And something surprising when we go to temple is, we see the God standing in front of him. And we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
0: Correct.
1: हम अपने हाथ को आंख बंद कर देते हैं. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family.

0: इन कम्युनिटी इट गोस ऑन एक्सपैंडिंग. तो बचपन में सिर्फ हमको हमको बोला जाता है अरे आंख बंद कर लो. इवन लिटिल बिट स्लाइटली आंख सड़क खोल के देखते हैं क्या होता है देखें. सो बट लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्ट स्टडीइंग और नोइंग अबाउट गॉड स्पिरिचुअलिटी विद ऑल स्पिरिचुअल टेक्स्ट लाइक भगवद गीता and we then we get to know what is the depth of the whole thing. See hamare body hamare jism hote hain mind hote hain intellect hote hain buddhi man buddhi and then we are when we chant om sincerely and you know closing our eyes you actually reflect God in your own antaratma.
1: राइट सर, यहां पर एक और बात भी आ जाती है सर. आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी. पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं, ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया, थॉट आया सर, मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं. तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए, उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है, कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं. वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आईज. सो मुझे समझ में नहीं आया.
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, यू नो गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट योरसेल्फ. तुम अपने अंतरात्मा को देखें.
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं, उधर ही क्यों?
0: क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो यस यू आर लुकिंग एट गॉड, यू आर लुकिंग एट गॉड एंड आपने देख लिया काफी, देन व्हाट इज नेक्स्ट, यू नो, देन यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड विद द सराउंडिंग्स, यू नो.
1: ओके,
0: जो जो आजू बाजू में को इधर उधर हिल रहे हैं, चल रहे हैं. So by closing your eyes, you are able to concentrate on the God and your prayers, and then slowly you are looking inwards.
1: All right.
0: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है, तो अब अंदर की देख. That is what they and all the scriptures say. You know, look at inside, turn your direction inside. बाहर की दुनिया तो मेटेरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस. यस, इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन यू नो, एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए. वेयर एज व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इनसाइड दैट पीस, स्पेशली व्हेन यू चैंट ओम. वी जनरली हैव मेडिटेशन सेशन इन द मॉर्निंग, सो उसमें वही होते हैं कि आप चैंटिंग करो, ओम ओम रेवरबरेट करो, चैंट लाउडली क्लोजिंग योर आईज. दिस इज व्हाट गिव्स यू सोलेस, पीस ऑफ माइंड.
1: ऑलराइट,
0: अल्टीमेटली वी वांट टू बी हैप्पी, इज इट नॉट? वी वांट टू बी हैप्पी.
1: एब्सोल्युटली
0: यस, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, दैट्स व्हाट द स्क्रिप्चर्स से, हैप्पीनेस इज इनसाइड.
1: ओके, आई गेट इट.
0: या
1: तो दोस्तों, जाहिर से बात है हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास.

0: My body, my mind, my intellect is not me. Okay, this me, who is this me? This me is something who is different, who is observer of this all, you know. ये अंतकरण जो सोल बोलते हैं ना, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस, बट दिस इज दैट इनर कॉन्शियसनेस विच इज ऑब्जर्विंग ऑल अवर एक्टिविटीज. वो कॉन्शियंस बोलते हैं ना, हमारा अंतकरण मानता नहीं है. हाउ योर कॉन्शियंस इज अलोविंग टू डू दिस, दैट इज वॉट इज द इम्पॉर्टेंट. आत्मा को पहचानना है, दैट इज कैन बी डन ओनली विथ study of scriptures and practice. So we have to teach the youth the values of all this. So this is what is lacking in our educational curriculum. They teach you only electronics, artificial intelligence, yes, but how to lead a life.
1: तो आइए दोस्तों, एक भजन का आनंद लें, फिर आगे बढ़ें.

0: रमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज के डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए। बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं 1 घंटा लगाऊंगा
1: टेंजिबल
0: मेडिटेट।
1: बेनिफिट्स हाँ नहीं, मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है। तो
0: उसका फायदा क्या सर, वो
1: मेडिटेशन
0: बताइए।
1: में फायदा इसीलिए है कि अंतःकरण शुद्धि हो जाते हैं। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, 1 मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। तो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू अराउंड वॉट एवर नंबर ऑफ टाइम्स, 20, 21 टाइम्स, एंड देन द मोमेंट यू फिनिश दिस ओम चैंटिंग द माइंड इज लिटिल रेस्टलेस, इट द फ्लो ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स। यू नो हम कल क्या करना है, आज क्या करना है, अभी जाके पढ़ना है, ये करना है, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर। यू ऑब्जर्व द थॉट्स, डोंट डोंट ब्लॉक द थॉट्स, लेट द थॉट्स फ्लो, बट यू बिकम एन ऑब्जर्वर। यू डिटैच यूअर सेल्फ फ्रॉम दैट थॉट्स, एंड इट इज लाइक यू नो, इट इज लाइक यू नो हाउ यू आर स्टैंडिंग इन ए बैंक्स ऑफ द रिवर एंड यू आर ऑब्जर्विंग द रिवर फ्लोइंग। यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ द रिवर, बट यू आर ऑब्जर्विंग द फ्लो ऑफ रिवर, स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स एज ए ऑब्जर्वर। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। वेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इन द फ्लो ऑफ थॉट्स, द थॉट फ्लो स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, एंड कम होते होते होते होते थॉट्स कम हो जाएंगे। देन यू स्टिल कीप ऑब्जर्विंग एंड दैट पीस, इनर पीस ऑफ माइंड। सो द स्क्रिप्चर्स और द स्पिरिचुअलिटी ऑफ द मास्टर्स, द गुरुज, दे आर ओनली स्ट्रेसिंग दिस दैट थॉट्स को कम करो, और वंस द थॉट बिकम जीरो, विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, द थॉटलेसनेस, यू ऑब्जर्व दैट साइलेंस, द साइलेंस यू ट्राई टू एक्सटेंड दैट साइलेंस, यू नो वेर देर आर नो थॉट्स। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, आई रियली फॉर द यूथ एस्पेशली, बिकॉज दे आर हाइपर नो, दे आर बॉम्बार्डेड विद ऑल दिस सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप, एस्पेशली दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पीपल इन द आईटी, दे आर ग्लूड टू दिस लैपटॉप फॉर आवर्स टुगेदर। इट इज डिफिकल्ट, बट सिस्टमैटिक प्रैक्टिस कैन बी डन। द बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग, वॉट एवर टाइम इज पॉसिबल, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when the atmosphere is quiet, you sit in a quiet corner and do this meditation. There are methods, there are some methods which we follow also. You keep a jyoti, you know, you can light a lamp and you observe that lamp with devotion, and slowly that lamp, you take the lamp, the jyoti, into your body, you know, take it into your body, slowly take that jyoti mentally to every part of your body. That's called the body relaxation. ये ज्योति को हम पूरे बदन में एक एक अंग, एक एक पार्ट्स को ये करते हुए, दिस ज्योति इज टेकन टू दैट एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड दैट पार्ट बिकम्स रिलैक्स्ड, एंड देन ऑब्जर्व द साइलेंस। दिस इज पॉसिबल, बट सिस्टमैटिक ट्रेनिंग systematic effort is required by the present youth to make them more peaceful and handle the situation more effectively.
0: तो आइए दोस्तों फिर एक भजन को सुनते हैं और विचार करते हैं जो अभी जयरमन सर ने हमें बताया.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा खास रेडियो प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं हमारे घर में ही मौजूद हमारे उन प्यारे प्यारे बेजुबान साथियों की जो हमें सेल्फलेसली बिना किसी इच्छा और चाहत के हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर वो चाहे प्यारे प्यारे कुत्ते हों, बिल्लियां हों या छोटे छोटे नन्हे साथी, यहां आपको मिलेंगी उनकी देखभाल, प्यार और मजेदार किस्सों से जुड़ी हुई बातें। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का एपिसोड है बेहद खास।
1: तो बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग पेट्स के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: मैं तो अच्छी हूँ, यहाँ पे तो दिन है, आई एम इन यूएसए इन ह्यूस्टन, सो इट्स द मॉर्निंग
1: जी,
2: और बहुत गर्मी भी है पर मौसम अच्छा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको इनवाइट करने का अपने प्रोग्राम में। एक्चुअली तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे भी इनवाइट किया है।
1: हम भी बहुत एक्साइटेड हैं मैम, और हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप वहां से समय निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए आज इतनी प्यारी बातें साझा करने के लिए आपके प्यारे से पेट बेंजी के बारे में। आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड।
2: सो डू आई, बहुत बेंजी की बहुत याद आ रही है।
1: आई एम श्योर।
2: हाँ
1: जी, तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, बेंजी एक कॉकस पैनल था और 1990 से 10 इयर्स तक वो आपके फैमिली का एक हिस्सा था, बहुत ही एक क्रूशियल हिस्सा था, एक फैमिली मेंबर जैसा था। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पेट रखने का जो डिसीजन था, बेंजी को आपके जीवन में अपनी फैमिली में इंक्लूड करने का जो डिसीजन था, वो आपने कैसे लिया और किस तरह से वो जर्नी रही?
2: वो ऐसा हुआ कि जब हम बचपन में इंडिया में ग्रो अप कर रहे थे ना, तो डॉग्स हमारी फैमिलीज के बहुत ही अहम मेंबर्स भी हुआ करते थे
1: जी।
2: तो डिफरेंट ब्रीड्स थे ऑफ एंड ऑन, डिफरेंट साइजेस भी थे क्योंकि डिफरेंट ब्रीड्स की अपनी अपनी पर्सनालिटी भी होती है। बट तो मोस्टली हम तो छोटे थे तब, और इंडिया में क्या था कि जो पेट्स हम रखते थे बेसिकली वो खेलने के लिए होते थे, उसका मकसद ही ये होता था कि हम भी या फिर गार्ड डॉग्स होते थे, सेफ्टी के लिए भी लोग रखा करते थे। तो हमारे पास कुछ बड़े भी थे लाइक जर्मन शेपर्ड या कुछ, और फिर छोटा मेरे पास एक वो भी था, रशियन सेमोइड भी थे। रशियन सेमोइड जो था वो मोर लाइक कंपेनियन, डेकोरेटिव, इनडोर इस तरह का था
1: जी।
2: और जर्मन शेपर्ड जो था वो थोड़ा बाहर का आउटडोर डॉग था, वो बहुत रखवाली करता था हमारी
1: जी जी,
2: तो कंपेनियनशिप भी हो जाती थी
1: सरे।
2: और फैमिली को एनिमल से बहुत लगाव था
1: जी,
2: तो जिनके होते खुशी और प्यार में बहुत महसूस होता था आसपास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकती हूँ मैम। आप जब बेंजी को अपने जीवन में लाए तो बहुत सारी चेंजेस आपको लाने पड़े होंगे अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में, घर के माहौल में। तो क्या प्रेपरेशंस आपको करनी पड़ी? जैसे आपने बताया कि आपके पास हमेशा पेट्स रहे हैं, पर जब आप यूएस में थे तो वहां के हिसाब से क्या कुछ स्पेशल प्रेपरेशंस थी? किस तरह से आप चेंजेस लाए और बेंजी ये क्यूट सा नाम किसने डिसाइड किया?
2: तो बेंजी जो था एक्चुअली जो यूएसए में एक सेलिब्रिटी टेलीविजन डॉग हुआ करता था।
1: वाओ,
2: एकदम जैसे हमारे बेंजी की जो वही उसका शक्ल भी वैसी और उसका जो कलर था वो भी एग्जैक्टली सेम था, तो तभी शायद उसका नाम भी बेंजी पड़ा जिन्होंने भी उसको पहले लिया था
1: जी।
2: तो 70s में क्या था कि बेंजी यूज टू बी एक प्रॉपर सीरीज हुआ करती थी टेलीविजन की,
1: राइट?
2: तो तब बेंजी का नाम भी वैसे ही पड़ा। और चेंजेस जो थे काफी आए हमारी लाइफ में, और जैसे आपको पहले बताया कि इंडिया में काफी हेल्प होती थी, डोमेस्टिक हेल्प होती थी ना, तो उनको जो खाना सही टाइम पे मिले या उनको बाहर घुमाने को जाना है तो ये सब होता था। बट जब हम यूएसए में आए तब हमारे पास ये हेल्प तो नहीं थी।
1: करेक्ट।
2: और कुछ तो वो चेंजेस हमको जरूर करने पड़े थे अपनी लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पेट को रखना, खासकर एक जैसे कुत्ते को रखना. एक ऐसा टाइम भी था जब मेरे पास एक बिल्ली भी हुआ करती थी जब हमारे बच्चे नहीं थे. तो कुत्ता और बिल्ली दोनों जैसे इकट्ठे भाई बहन की तरह ही होते थे, तो मस्ती बहुत करते थे, बहुत
1: क्यूट.
2: अगर टाइम बचेगा बाद में तो मैं आपको उनकी भी कहानियां सुना सकती हूँ, पर अभी हम लेट्स जस्ट स्टिक टू आपका जो फॉर्मेट है ना.
1: जी. इसी के साथ अगर मैं आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूं और यहीं पे आपको इलैबोरेट करने का एक छोटा सा मौका दूं कि आपका बेंजी के साथ बताया हुआ सबसे क्यूट मोमेंट जो आपको आज भी याद आता है तो हंसते हंसते आंसू निकल आते हैं, तो वो कौन सा होगा?
2: पता है मोमेंट्स तो बहुत थे तनुषा, क्योंकि और जैसे मैंने उसकी प्रोफाइल में शेयर किया था आपसे कि वो जो लम्हा था ना जब वो हम उसको लेने गए और हमने अपनी वैन का साइड डोर खोला, मेरा बेटा पीछे बैठा हुआ था, तो वो दरवाजा तो खुला रखने के लिए और ये दौड़ के आके हमारी बस वैन के अंदर घुस गया और बैक सीट के ऊपर बैठ गया
1: जब आप उसे लेने गए थे.
2: हक के साथ एकदम हक से और एकदम डट के और बिल्कुल जैसे हम उसको देख रहे हैं कि ये कौन है डॉगी, इतना सुंदर कुत्ता है और ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज वाई वुड एनीबडी वॉन्ट टू पार्ट विद सच अ ब्यूटिफुल क्रीचर, यू नो, इस तरह से हमको लगा. तो ये बेंजी आके हमारे बैठ गया.

0: के पास में
1: जी.
0: और कभी कभी लगता है, और वो उठ ही नहीं रहा था वहां से, बट समझ में आया बाद में कि यही वो था जिसको हम लेने आए थे. और उसका उतरना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टिंक्टिवली कि जानवर हमें हमसे ज्यादा जांच लेते हैं.
1: बिल्कुल.
0: जैसे कौन उनसे प्यार करेगा या कौन प्यार करता है, whether we are animal lovers or not. तो यू नो इस तरह से हमें लगा. तो अब वो हिले ही ना वहां से, तो अब वो हमारा ही हो गया. तो वो एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हमें मेरी मेमोरी में रहता है कि वो जो लम्हा था ना,
1: right.
0: कि उसने हमको चूज किया, हमने उसको नहीं चूज किया. यू नो
1: जिस तरह से यू नो हम अपने फ्रेंड्स चूज करते हैं, उसी तरह से कहीं कई बार पेट्स, हम पेट्स को नहीं, पेट्स हमें चूज करते हैं. और जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया कि वो इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं कि कौन उन्हें किस तरह का प्यार दे सकता है, केयर दे सकता है. तो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं, स्पेशली डॉग्स. तो उसमें आई थिंक दे एस एट इट. एंड आई कैन इमेजिन आपने कितने खूबसूरत लम्हे बेंजी के साथ बिताए होंगे उन 10 सालों में. इसी गहरी बात के साथ, इन्हीं प्यार भरी बातों में हम एक पहला गीत सुनेंगे हमारा आज का. मैम अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बताएं.
0: नहीं कुछ ऐसा नहीं है, आप अपनी फरमाइश बताइए और बाद में अगर आपको टाइम हो बाद में तो मैं कुछ और भी लम्हे शेयर करूंगी आपके साथ.
1: बिल्कुल मैम, समय ही समय है आज तो मेरे पास, बहुत सारी बातें करेंगे आगे. अभी चलिए एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, आओ मनाएं जश्न-ए-मोहब्बत, फिल्म दूसरा आदमी.

0: खूबसूरत गीत है ये। आगे चलते हैं मैम, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अगेन कि आपके पास पेट्स एनिमल्स हमेशा रहे, यू ऑलवेज बिन अ पेट ओनर अ पेट पेरेंट, तो आप बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें कि पेट केयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है।
1: मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो पेट्स प्यार मांगते हैं और उसके साथ साथ जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह और उसके साथ जो सही वक्त पर और सही किस्म का खाना हो उनको घुमाना है, पर उनकी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी मेडिकल केयर, उनके वैक्सीनेशंस के साथ अपडेटेड रहना हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब पेट केयर में शामिल होती हैं। उसके बगैर जैसे अपनी फैमिली के लिए बच्चों के लिए आप केयर करते हैं उसी तरह इनके साथ भी पेश आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और मैं आपको इसके साथ साथ बताती चलूं कि हमारा बेंजी एक एपिलेप्टिक था।
0: हाँ,
1: उसको एक मेडिकल कंडीशन थी जो जब वो हमारे घर पे आ गया उसके दो तीन दिन के बाद हमने नोट किया कि फ्राइडे शाम की बात कर रही हूँ और फ्राइडे थी और सडनली मैंने देखा बेंजी को सीजर्स हो रहे हैं। तो मैंने तो कभी ना सोचा था ना कभी सुना था कि डॉग्स को भी
0: एपिलेप्सी होती है।
1: तो आई टोटली फ्रीक आउट, मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है इसको। और फ्राइडे नाइट थी, सब कुछ बंद था, कोई वेटनेरियन नहीं था कोई, और हम लोग इस शहर में भी थोड़े बहुत नए थे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे कि कोई पेट हॉस्पिटल है पास या कुछ। तो जब तक हमको उन दिनों में टेलीफोन डायरेक्टरीज भी हुआ करती थी, ऑनलाइन तो कुछ नहीं ना, मैं आपको 90s की बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ, जब तक मुझे एक फोन

0: बाद एनीवे जब मंडे आया तो हम उसको अपने वेटनेरियन के पास ले गए यहाँ पे. तो देन ही वाज प्लेस्ड ऑन फिनोबार्बिटॉल जो एंटी सीजर मेडिकेशन होती है ना.
1: जी जी.
0: तो वो बेंजी को दिन में दो बार ही मिला करती थी. और तो उसकी सेफ्टी के लिए और मतलब वो उसको हम एक ब्रेड के उसके अंदर डाल के ऊपर से फेंकते थे तो वो एकदम मुंह से कैच करता था और खा जाता था.
1: जी.
0: तो नहीं तो इट्स नॉट ए वेरी टेस्टी. तो हाँ. और फिर उसके लिए हमने एक पोर्टेबल डॉग कैरियर भी लेके रखा हुआ था घर पे, क्योंकि जब भी हम घर छोड़ के जाते थे अगर उसको सीजर होता है तो ही वॉज इन साइड अ कंटेन्ड स्पेस और उसको इंजरी होने से बचाता था वो. हाँ
1: करेक्ट. कि वो खुद को भी हार्म नहीं करे एंड सराउंडिंग्स को भी हार्म ना कर पाए ऐसी सिचुएशन में. बहुत ही डिफिकल्ट रहा होगा मैम ऐसी सिचुएशन में उसको. आई एम श्योर एक्स्ट्रा केयर एक्स्ट्रा प्यार भी देना पड़ा होगा. और जैसे आपने बहुत सरलता और सुंदरता से बताया कि सबसे पहली चीज तो प्यार है और फिर उसके बाद बाकी सभी चीजें आती हैं. जैसे आपके डॉग को स्पेशल कंडीशन थी तो आई एम श्योर स्पेशल केयर स्पेशल लव सभी चीजें एक्स्ट्रा आपको ध्यान देना पड़ा होगा उन 10 सालों में जब आपके पास बेंजी था. तो बहुत ही जी. क्या इससे आपके घर में आपके जो बच्चे थे आई एम श्योर आपके बच्चों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होंगी, उनने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की होंगी. तो क्या आपको लगता है कि पेट्स घर में लाना बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है? किस तरह से वो उन्हें शेप करता है?
0: मेरे ख्याल में तो इसका आंसर मैं यस बोलूंगी एंड आई कैन ओनली स्पीक अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हमारे बच्चों ने भी बेंजी की प्रेजेंस से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, काइंडनेस सीखी, एम्पथी सीखी और कैसे एनिमल्स की तरफ प्यार दिखाना और उनकी रिस्पेक्ट करना जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर, क्योंकि अब वो तो हमारा फैमिली मेंबर ही हो गया था ना. तो बच्चों को भी बहुत मतलब सेंसिटिविटी रही इस कंडीशन से जो बेंजी थी. क्योंकि फिनोबार्बिटॉल के साथ क्या होता है कि एंटी सीजर मेडिसिन होती है तो उसके साथ थोड़ी सेडेशन भी आ जाती है ना.
1: बेंजी
0: बहुत एक्टिव नहीं थी तो होता क्या था कि नॉर्मली डॉग्स के साथ बच्चे खेलते हैं कूदते हैं खूब करते हैं और बेंजी भी करता था जब अपने मूड में होता था तो. पर बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरह की थी तो उसका थोड़ा सा यू नो सेडेशन इफेक्ट भी होता था.
1: बिल्कुल. जैसे घर में एक छोटा बच्चा जब बीमार होता है तो हम सब उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं एक्स्ट्रा प्यार करते हैं. तो ये तो बेजुबान जानवर है तो आई कैन इमेजिन एंड दिस इज वेरी सैड टू नो दैट ही हैड दिस कंडीशन. हाउएवर आई एम वेरी प्राउड कि आपने उसे 10 साल अपने साथ रखा और इतनी केयर और इतना प्यार दिया. बहुत ही खूबसूरत बात है मैम ये. इसी के साथ क्या ऐसे भी मोमेंट्स होते थे जब आप लो फील कर रहे हैं घर का माहौल थोड़ा सा यू नो लो है तो बेंजी के कुछ रिएक्शंस ऐसे हों जो आपको चीयर अप करने की कोशिश करता हो? क्या ऐसे कभी एक्सपीरियंसेस हुए?
0: ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस हुए. मैंने कहा ना एनिमल्स ये इंस्टिंक्टिवली समझ जाते हैं जब आप उदास हो या आप लो फील कर रहे हो.
1: हाँ जी.
0: और ये तो कभी कभी ह्यूमंस भी नहीं फील करते कभी.
1: नहीं नहीं देखते हुए भी अनजान बनते हैं हम साथ रहते हुए भी.
0: हाँ. और ये एनिमल्स में एक खासी जैसे होता है इट्स अनदर सेंस. तो जब मेरा बेंजी मुझे इस तरह कभी देखता था या फिर बच्चों को भी इस तरह होता था तो बहुत प्यार से जाके पास में बैठ के अपना एक पॉ उनकी गोद में रखता था मेरी गोद में रखता था के और जैसे ट्राइंग टू टेल मी कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा इस तरह. जस्ट रीअश्योरिंग दैट मैं हूँ ना सब ठीक हो जाएगा जो रीअश्योर कराता था मुझे इस तरह. वो फीलिंग आती थी मुझे. और मैं संगीत में काफी इन्वॉल्व रहती हूँ तो मैं जब भी रियाज करती थी तो ऑफकोर्स मेरे मुंह पे तो खुशी आती ही थी बट बेंजी को भी लगता था कि ये म्यूजिक कीप्स मी वेरी वेरी हैप्पी और वो मेरी बेस्ट ऑडियंस भी होता था. वो प्यार से आगे सुनता था. सच्ची कह रही हूँ कभी कभी धीरे धीरे उसके मुंह से हमको हमिंग भी सुनाई देती थी.

0: Wow.
1: You know, I'm telling you, it was such a memorable
0: And so unique.
1: बहुत यूनिक था क्योंकि कभी कभी अगर घर के आसपास से एम्बुलेंस भी जा रही है ना सायरन बजता था
0: जी जी
1: तो ये सायरन की आवाज निकालने की कोशिश भी करता था.
0: ओह सच अ म्यूजिकल पेट. आई थिंक द पेट पेरेंट ग्रू ऑन बेंजी. आपका जो मेलोडी है दैट ग्रू ऑन हिम एंड ही बिकेम एज मेलोडियस एज यू. अब आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ साझा कर दी है कि आप म्यूजिक में बहुत इन्वेस्टेड और इंटरेस्टेड हैं, जो मैं वैसे तो जानती हूँ बट हमारे श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि बिंदु मैम बहुत खूबसूरत गायकी करती हैं. तो एंड में आप हमें एक गीत तो जरूर सुनाएंगे बेंजी के नाम.
1: बेंजी के नाम से ओ माय गुडनेस, ये तो यू आर कैचिंग मी टोटली अनअवेयर. बट
0: आप कोई सा भी गीत, एनीथिंग दैट कम्स टू यू नेचुरली, बट वो डेडिकेटेड होगा बेंजी को.
1: जरूर जरूर कोशिश करूंगी, जो मेरे बच्चे भी गाया करते थे उसके लिए मैं भी गाती थी कभी कभी.
0: जी
1: तो हाँ, तो मैं आपको बता रही हूँ, तो कभी कभी वो जैसे बोला ना अपना एक पाव रखता था मेरे ऊपर और रीअश्योर कराने के लिए, फिर कभी कभी जाके मेरी म्यूजिक इक्विपमेंट के पास या मेरे माइक के पास बैठ जाता था कि मैं वेट कर रहा हूँ अभी तुम गाओ. वेरी वेरी बहुत ही अच्छे
0: वेरी वेरी मेमोरेबल. चलिए इन्हीं प्यारी बातों, इन्हीं सुरीली बातों के बीच में हम एक और गीत सुनेंगे. आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, फिल्म कस्मे वादे.
1: Sure.

0: वेलकम बैक बिंदु मैम। गीत से पहले हम बहुत सारी गीतों भरी बातें कर रहे थे, कैसे बेंजी भी एक म्यूजिकल डॉग था और आपके म्यूजिक लेसन्स में, आपकी म्यूजिक लर्निंग में आपका साथ देता था, आपकी ऑडियंस बनता था और खुद भी गाने की कोशिश करता था। तो ये तो हुई मैम मजे की बातें। अब बिकॉज हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि पेट्स की तरफ जो अवेयरनेस है, जो नए पेट पेरेंट्स बन रहे हैं, अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सेंसिटिव हुए हैं इन द लास्ट 1 डेकेड आई थिंक। तो आपकी तरफ से, बिकॉज यू आर सच एन एक्सपीरियंस्ड पेट ओनर एंड पेट पेरेंट, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: तनुषा, ऐसा है कि पेट्स को लेने से पहले बहुत सारी मैं इंडिया की बात भी कर रही हूँ कि लोग रखते हैं जस्ट फॉर लाइक अ स्टेटस सिंबल या फिर अ प्लेथिंग या फिर सुंदर लगता है तो उसको रख लो घर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना, जो पेट्स के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आप उसको पहले समझिए एंड डोंट गेट पेट्स इफ यू आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देम। अभी इंडिया में बात हमारी अलग थी क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प काफी हो जाती थी। घर में हमारी मदर भी थी जो बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थी कि इसकी ग्रूमिंग सही होनी चाहिए, उसको रोज ब्रश करना चाहिए, उसकी
0: वाओ
1: खुराक ठीक हो, सब कुछ, और उसको घुमाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, विच ऑल्सो एक्चुअली हमें भी बहुत हेल्प करता है। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो अपना भी माइंड क्लियर होता है, डिस्ट्रेस करता है
0: एब्सोल्युटली
1: हमको, बहुत सारी मसलों के हमको हल मिल जाते हैं जो दिमाग में चल रहे हैं। तो हमारी मम्मी बहुत ही पर्टिकुलर थी कि इनको सही तरीके से इनकी देखभाल की जाए,
0: जी
1: पेट लेने से पहले समझ लो कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और फिर डिसिप्लिनिंग द पेट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
0: एब्सोल्युटली
1: क्योंकि कई पेट्स को आप अगर ठीक से नहीं डिसिप्लिन करेंगे या उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे थोड़ी बहुत, तो कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। फिर और फिर वो किसी को जाके बाइट कर लें, कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी
0: इट्स वेरी
1: उसको समझदार
0: डेंजरस।
1: करते
0: यस
1: हैं।
0: यस
1: हाँ, अभी जरूर इंडिया में बात अलग है पर यूएसए में क्या होता है कि इफ यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर तो पीपल कैन फाइल अ लॉ सूट आपके, किसी को काट लिया जाके, आपने अगर लीश पे नहीं रखा है डॉग को, आप अगर घुमाने जा रहे हैं तो देर इज अ प्रॉपर लीश लॉ हियर
0: राइट इट्स अ टॉट यस
1: एंड
0: लॉ ऑफ टॉट
1: यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे मालूम नहीं, बहुत अरसा हो गया है इंडिया को छोड़े मुझे, तो मुझे पता नहीं शायद वहां पे भी कुछ तब्दीली होगी, पर यहाँ पे तो ये जबरदस्त है।
0: बिल्कुल
1: और इसका भी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी अगर
0: जी
1: टाइम परमिट
0: जी
1: करेगा
0: जी
1: तो।
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत मेमोरेबल है मेरे लिए। मेरे डॉग के साथ नहीं हुआ पर मैंने किसी और डॉग को रिसासिटेट करके जान बचाई थी।
0: वाओ जी
1: तो इस तरह से मैं आपको वो भी बता दूंगी
0: नहीं
1: बाद में अगर
0: नहीं
1: टाइम हो
0: बिल्कुल
1: तो।
0: बिल्कुल मैम यू कैन शेयर इट राइट अवे। बिल्कुल टाइम है जी।
1: वो ऐसा था कि हमारी नेबरहुड में एक डॉग ओनर थे, हमको जानते भी थे, हमारे देसी थे, सिंधी लोग थे। उनका एक छोटा सा डॉग था, शिवावा था। अब शिवावा को आपने देखा है कि वो इतना छोटा होता है कि आपके पॉकेट में भी आ सकता है, इट्स अ वेरी स्मॉल डॉग। अच्छा, तो मैं अपनी नेबरहुड में मम्मी कहीं पे मुझे विजिट कर रही थी और किसी के घर पे थी, उनको लेने जा रही थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी। तो रेजिडेंशियल एरिया में तो जगह जगह पे वो भी होते हैं ना, आपके स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी, सो यू कैन नॉट इवन ड्राइव वेरी फास्ट, 10 या 15 मील की स्पीड के ऊपर आप चला रहे हैं। सडनली मैंने देखा, दोपहर का टाइम था, इट वॉज आफ्टरनून, और लोगों के घर भी बड़े बड़े हैं, लॉन्स हैं यहाँ पे, तो किसी का स्प्रिंकलर भी चल रहा था। और ये जो अपने डॉग को घुमा रहे थे, ये सड़क के एक तरफ चल रहे थे और जो इनका डॉग था वो सड़क के दूसरी तरफ चल रहा था, साइड वॉक पे। अभी सडनली मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार में कुछ अटका जैसे, तो
0: ओह शिट
1: हाँ, और मैंने अपनी रियर व्यू से, अपनी कार की रियर व्यू मिरर से देखा तो देखा कि ये जनाब जो इनके ओनर थे वो आके उन्होंने कोई चीज अपने हाथ में उठाई, छोटी सी तो थे वो द डॉग, तो मेरे से रहा नहीं गया, मुझे ऐसे लगा बहुत, हालांकि मेरी अपनी फैमिली में इमरजेंसी थी, मम्मी को लेने जा रही थी, बट आई टर्न माई कार अराउंड और तो लगा कि अरे मुझे तो ऐसे लगता है मैंने किसी का पेट को हिट किया है। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं जाके उसको शिवावा को अपने हाथ में उठाया एंड आप मानेंगे नहीं, उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें एकदम खुली थी और डायलेटेड थे उसके, और बिकॉज मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल थी तो ये चीजों पे गौर भी करती हूँ मैं, तो एकदम नेचुरल आता है मेरे साथ। देखा कि दिस डॉग प्रैक्टिकली डेड,
0: ओह माय,
1: यू नो, हाँ, तो मैंने उसको कुत्ते को हाथ में उठाया एंड द फर्स्ट, और मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर भी हूँ
0: जी जी
1: हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो वो एकदम जैसे इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये तो कुत्ता ब्रीद नहीं कर रहा है
0: राइट,
1: और मैं उसको माउथ टू माउथ तो नहीं देना चाह रही थी, पर मैंने हम के साथ ना जैसे बेबीज को हम रिससिटेट करते हैं न्यू बॉर्न्स को, तो हमने उसके आई स्टार्टेड गिविंग हिम लाइक थंब के साथ उसको कंप्रेशन हार्ट के, मैंने कहा इतनी कहीं अभी मैं कुत्ते का एनाटॉमी नहीं जानती, ये कहा कि छोटा सा है यहीं कहीं इसका दिल भी होगा,
0: दिल है राइट,
1: तो मैंने अपने थंब के साथ एक हाथ के साथ उसको कंप्रेशन देने शुरू करे, अंदर से मैंने आई वाज प्रेइंग कि हे भगवान इस कुत्ते को बचा लो
0: बिल्कुल
1: जिस तरह से, और क्योंकि वो जो थे उनके ओनर थे वो भी आए ऊंची ऊंची रो रहे हैं, उस कुत्ते का नाम था गोंजो
0: राइट,
1: तो वो मैं भी आज तक भूली हूँ, इस बात को बहुत अच्छा हो गया है, बट केम और वो गोंजो डोंट गो डोंट गो गोंजो डोंट गो इस तरह से वो मुझे सीख रहे थे, और विद इन 5 to 7 minutes की जब मैंने कंप्रेशन करी तो सडनली उसने अपनी आंख को झपका,
0: ओह माय,
1: हाँ उसकी आंख एकदम खुली थी ना बताया एकदम डायलेटेड वगैरह, तो उसने अपनी आंख को झपका, तो मैंने थोड़ी सी दिल में उम्मीद आ गई कि ये
0: बच सकता है,
1: इज कमिंग बैक टू लाइफ, और जिस घर के बाहर ये सब हो रहा था ये उनका घर भी नहीं था, ये तो उनके घर से काफी दूर था
0: जी,
1: बट उनका लॉन स्प्रिंकलर चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने उसकी डॉग की तो जो जीभ थी वो तो ऑलरेडी बाहर लटक रही थी, तो हमने थोड़ा सा पानी लेके उसकी जीभ के ऊपर रखा तो उसने उसको पी भी लिया
0: जी,
1: सो यू नो दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ,
0: ओह माय गॉड,
1: और तो फिर अभी मुझे आगे जाना था, अपनी मम्मी को पिकअप करना था कहीं से, तो थोड़ा इमरजेंसी था मेरे लिए, तो मैंने इनको बोला आप ऐसे कीजिए कि आप इसको अपने वेट के पास ले जाइए और इसको चेकअप करा लें, अभी मुझे आगे जाना है, तो बोले कि हमारा तो वेट ही नहीं है, तो मुझे अंदर से गुस्सा, हाँ मुझे इतना अंदर से गुस्सा आया, आई टेल यू, तो वही नेबरहुड के बाहर एक शॉपिंग स्ट्रिप थी वहाँ पे उनका हॉस्पिटल था, तो अपने डॉग को वहाँ ले जाती थी, अभी इतना महंगा कुत्ता आपने रखा है, शिवावा रखा है और आपके पास इसका
0: वेट नहीं है,
1: हाँ तो इसकी भी प्रॉपर केयर कराइए तो सही, तो मैंने उनको बोला लीजिए मेरी चाबी पकड़िए आप मेरी कार चलाइए और मैं आपके कुत्ते को ऑब्जर्व करती रहूंगी एंड आई विल गाइड यू, आप हमारे वेट के पास मैं आपको ले चलती हूँ,
0: राइट, इमेजिन,
1: मैंने ऐसे ही किया, हाँ तो मैं उसको ले गई, वहाँ पे मेरी मम्मी वेट कर रही है कि देर हो गई अभी, एनीवे मुझे जैसे लगा ना किसी जैसे ह्यूमन की लाइफ हम बचा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट कि इसको फॉलोअप भी करना है, तो मैं अपने वेट के पास इनको ले गई और उनका नाम डॉक्टर कीडो था
0: जी,
1: और अभी भी है उनका पेट हॉस्पिटल वहीं पे
0: जी,
1: तो एनीवे उनको हमने बताया पूरा किस्सा, मैंने कहा आप Now this dog is yours और मेरे को जाना है आगे तो आप उसको प्लीज रखिए, अभी वहां से मैं निकली बाहर और मम्मी को मैंने वही नेबरहुड में से लिया और मम्मी को पूरा किस्सा सुनाया
0: जी,
1: तो अब मम्मी भी तो डॉग लवर है तो उनको एकदम इतनी कंसर्न हो गई कि ओए वो कुत्ता वो कुत्ता वो पंजाबी हम लोग हैं वो कुत्ता बेचारा तो ये सब हुआ अच्छा उसके बाद वापसी पे हम मम्मी को जहाँ भी ले जाना था मैं लेके गई वापसी पे मम्मी ने कहा नहीं वेट के पास चलो जब हम गए तो पूछे तो द डॉक्टर टोल्ड मी कि मिसेस मल्होत्रा व्हाट एवर यू डिड दिस डॉग एक्चुअली केम बैक टू लाइफ बिकॉज ये मर गया
0: था. राइट
1: राइट के ऊपर एक हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट हो गया था.
0: राइट
1: तो वो बोला कि हमने इसको ओवरनाइट रखेंगे, वी विल ऑब्जर्व हिम. तो इस तरह से उसको उन्होंने ओवरनाइट रखा और वो कुत्ता उसके बाद काफी साल जिया. पर उसके जो ओनर थे वो मुझे आज तक भी फॉरगिव नहीं कर पाए कि तुमने हमारे कुत्ते को हिट किया.
0: बताएं तो जबकि आप ही ने सेव किया.
1: दिन रात को पता क्या हुआ, जब हमने रात को उनको फोन किया, उनको मैं जानती थी, हमारे इंडियन लोग ही थे
0: जी.
1: तो मैंने उनको पूछा, वो तो मेरे ऊपर एकदम गुस्से हो गए कि कॉस्टिंग मनी पता नहीं $120 थे या कुछ ऐसा था कुत्ते को वहां रखने. तो बोले कि इट्स कॉस्टिंग अस सो मच एंड यू नीड टू पे फॉर इट.
0: Of course, so, they were thinking it is an opportunity for them instead of taking care of the pet. Yes.
1: You know, like tell me how many people would. हम तो अपना निकल ही जाते हैं.
0: नहीं रुकते भी नहीं है मैम. Yes, yes. People don't stop or
1: something. Yeah. So what I did actually, उसी हमारे को हमारे friends के बेटी और उनका जो husband थे, वो attorneys हैं.
0: Right.
1: मैंने उनको फोन किया. अब देखिए आप मुझे बताइए ये ऐसा किस्सा हुआ. और इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर है तो मैं उनको पे कर दूंगी जाके. गाड़ी से तो मेरी टकराया. बट एनीवे उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बोला, आंटी यू डोंट ओ देम एनीथिंग एट ऑल, बट इफ एनीथिंग दे ब्रोक द लीश लॉ.
0: राइट
1: ओके. कुत्ते लीश पे नहीं था,
0: नहीं
1: और आपने तो कुत्ते की जान बचाई है.
0: यस
1: यू नो
0: इवन यू ड्रोव इट टू द वेट.
1: यू विल डू व्हाट यू डिड.
0: यस यस.
1: तो एनीवे तो उसने बोला, बट हमारी जो लोकल न्यूज़पेपर था ना क्रॉनिकल
0: जी जी
1: नाम है, तो बोले बट आंटी दिस विल मेक अ ग्रेट स्टोरी फॉर द हिस्ट्री.
0: इंडीड.
1: So,
0: indeed,
1: I'm telling you, so this also happened in my life, and I always, you know, share. I teach CPR.
0: Yeah, absolutely.
1: कुछ करे ना करे पर compression जरूर कीजिए.
0: Right.
1: Because heart को वापस लाना बहुत crucial रहता है. और चाहे वो जानवर हो चाहे वो humans हो, तो ये चीज मेरे बड़ा rare experience होता है किसी को भी.
0: Absolutely, very rare and yeah, very like. You know, significant in your journey wherein कई लोग सच में मतलब ऐसी चीजों को भी opportunity समझ के उसको mint करने की कोशिश करते हैं जबकि गलती उन्हीं की होती है और उनके पास vet भी नहीं है, which is amazing for me. I mean, and you're petting a dog that is, you know, as expensive like you mentioned and as, you know, high maintenance, and उसके बाद भी आप सामने वाले के ऊपर

0: जबकि सामने वाला इज द पर्सन हु इज एक्चुअली टेकन केयर ऑफ योर पेट एंड ड्रोव यू टू द वेट ऑल्सो. सो हाउ एवर इट्स अमेजिंग दैट यू नो द वे यू हैंडल द सिचुएशन एंड आई एम सो हैप्पी दैट द पेट सर्वाइव्ड. यू नो सबसे बड़ी बात की द पेट सर्वाइव्ड गोंजो राइट. Yeah, beautiful. So,
1: that's
0: beautiful.
1: Significant in my life too.
0: Yeah.
1: So, to share कर देती
0: हूँ. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. चलिए, इन्हीं खूबसूरत बातों के बीच, इन्हीं गहरी बातों के बीच, इन्हीं जीवन के एक्सपीरियंसेस के बीच हम एक और गीत का ब्रेक लेंगे जो जीवन से ही जुड़ा हुआ है, जीवन का ही फलसफा है. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले. फिल्म बड़े दिल वाले.

0: आगे चलते हैं मैम। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप अपना जीवन पेट्स के बिना इमेजिन कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतनी लंबी जीवन जो जर्नी आपकी रही है, उसमें पेट्स आपकी जीवन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो क्या आपका जीवन पेट्स के बिना आज वैसा ही है? क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जीवन पेट्स के बिना होगा, और किस तरह का वो एक्सपीरियंस है? और इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो लाइफ लेसन अगर कुछ सीखा हो अपने पेट से, तो वो क्या होगा?
1: ऐसा है कि पेट्स के साथ एक तो अनकंडीशनल लव, यू नो, और लॉयल्टी एंड टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, यू नो, ये चीजें बहुत अहम रहती हैं। क्योंकि जब हम अपने पेट्स को डिसिप्लिन करते हैं, उन्होंने कुछ गलती कर दी या कुछ उनको मना किया कि कार्पेट पे नहीं जाना है, और वो कभी कभी मुझे ट्राई करता था जरूर, यू नो, कि माँ देख तो नहीं रही है तो मैं जा रहा हूँ, मैं जाके कुछ करूंगा। और खासकर जब घर में ऐसे होते हैं, कोई आ गया घर में, तो देन दे थिंक जस्ट लाइक चिल्ड्रन की, ओ आई कैन गेट अवे विद दिस,
0: मैं
1: करता हूँ, है ना। तो इस तरह से होता था, पर फिर उनको डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा न्यूज़पेपर को रोल करके, जो मम्मी ने सिखाया था मुझे कि उन्होंने शायद पढ़ा था या फिर जब पेट केयर का, तो कि आप एक न्यूज़पेपर को जैसे रोल करके ना उसको करें, तो उससे चोट नहीं लगती है एनिमल को, पर उसकी जो आवाज होती है उससे से वो चौंक जाते हैं, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, और फिर वो आगे से नहीं करेंगे। तो वो एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग अ डॉग स्पेशली, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑफकोर्स लॉयल्टी तो मैंने बोला कि वो भी उन्हीं से सीखी, और लिविंग इन द प्रेजेंट, कि हम अपने पास्ट में नहीं चले गए, फ्यूचर का सोचना बंद कर दिया, तो एंजॉय द मोमेंट, उसी मोमेंट में रहे, तो वो सीखा। और दूसरा सवाल, वो मैंने कहा कि बहुत सालों से अब मेरे पास कोई पेट नहीं है, क्योंकि मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए मैं फुलफिल नहीं कर पाती हूँ। हमारे हस्बैंड जो है वो एक्सटेंसिव पीरियड्स के लिए ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं अपने अपने घरों में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हैं, और मैं भी मेरी भी जॉब है जो आई कंटिन्यू टू वर्क, तो बहुत ही मुझे लगता है कि क्रूअल होगा कि अगर कुत्ते को हम पालेंगे तो हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं फुलफिल कर पाते हैं।
0: ब्यूटीफुल, यस।
1: क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है कोई भी पेट।
0: करेक्ट करेक्ट। बट डू यू फील अ डिफरेंस लाइक अ वैक्यूम जब आपके पास पेट था, और जब यू नो अब यू डोंट हैव अ कंपेनियन एंड अब बच्चे भी बाहर हैं, डू यू फील दैट वैक्यूम, और डू यू एवर थिंक कि नहीं शायद ले आऊं या कुछ कोई एक छोटा सा पेट रख लूं, ऐसा कभी कुछ मन में आता है मैम?
1: मन में आता जरूर है, और रख भी सकूं तो नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बहुत सेवा करनी पड़ती है जैसे बोला। और देख रही थी टीवी पे आजकल एक वूफी करके एक डॉग है, हु इज लाइक एन एआई जनरेटेड डॉग, और वो एकदम और वो क्या है कि एकदम रियल डॉग की तरह है, जो आपके आसपास घूमता है, आपकी कमांड्स भी फॉलो करता है, आप उसको वॉक के लिए भी ले जा सकती हैं। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जाके एक वूफी ले आऊं अपने लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एआई का जमाना है तो उसका पूरा फायदा उठाया जाए। और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही मैम आपसे, बहुत ही सरल और साझा, सरल और सटीक तरीके से आपने अपनी बातें साझा की। अब अंत में, जैसे मैंने कहा था, बिकॉज अब गाती हैं और बहुत सुंदर गाती हैं, तो हमारे लिए कुछ गुनगुना दें जो हम बेंजी को डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: बेंजी को डेडिकेट करती हूँ एक सॉन्ग, मेरे बच्चे और मैं, बच्चे भी छोटे थे तब, तो हमें गाना इंग्लिश में है, गाया करते थे
0: जी।
1: और तो वो उसकी दो लाइनें सुना सकती हूँ आपको।
0: बिल्कुल।
1: सो इट वॉज लाइक दिस, यू आर माई सनशाइन, माई

0: keep my Please don't take my sunshine away.
1: Yeah, this is a beautiful song.
0: I'm sorry,
1: very beautiful song. Yeah, it's a very sunny and lovely song. I've heard it before. It's a beautiful song. And I hope ye song aapki feelings, hamari feelings, puri SN family ki feelings, Benji tak heavens mein zarur pahunchi hongi. Aaj humne Benji ko yaad kiya aur usse ye geet dedicate kiya, ye episode dedicate kiya. So I hope Benji is smiling at us from the heavens above. Thank you so much, Indula.
0: Thank you, dear, for the opportunity, Tanusha. God bless you.
1: Thank you. Thank you so much aaj humare saath judne ke liye aur itni achhi baatein saajha karne ke liye.
0: Sure. It was a pleasure.
1: Ji. Bindu ji aur Benji ki kahani waqai dil ko chhu lene wali hai. बेंजी की पहली मुलाकात बिंदु जी के परिवार से ऐसी थी जैसे उसने पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना लिया और फिर 10 सालों तक प्यार और वफादारी के साथ उस रिश्ते को निभाया और बहुत खास बनाया। बिंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज हमारे साथ इतनी प्यारी बातें, इतनी प्यारी यादें साझा की और हम सब ये एपिसोड बेंजी को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग पेट्स के संग सिर्फ एसएन रेडियो पर। याद रखिए, पेट्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनते हैं, लेकिन अपनी यादों से हमारी जिंदगी भर मुस्कुराने की वजह दे जाते हैं। नमस्कार।
2: तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे इन प्यारे साथियों से जुड़ी हुई ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे जरूर शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प हमारे साथी के साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है। तब तक अपने इन खास साथियों का ख्याल रखें और खुश रहें। नमस्कार।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
3: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था। तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फॉर्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी? नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है? एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें, ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी? उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर, रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था, पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। 6 हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी? पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गई, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया। वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गईं। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई। अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।

एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था, वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।

बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

तेरा हाथ पकड़ते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, हो जितनी भी तकलीफें फुर्र हो जाती हैं।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: घर वाले मुझे सुबह सुबह रोज ऐसे उठाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, मैं एक अकेला सैनिक बचाऊं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ, तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र होता है दोस्तों, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं।

0: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, कल फिर मिलता हूँ।
3: Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata.
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभिल 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
8: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए के उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्यादुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, MG के मैनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अबुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
9: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थी। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के

तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए तीन ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कूंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कूंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा, मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां दो हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खुसूसी मजमून चुनना थे यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे तीन टीचर्स ने बहुत मुतासर किया, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंहा राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट्स से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने दो मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था
एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं एक हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर ये बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाव। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात, ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्र कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं, बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MGK मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर, एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे।
नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MGK मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमरीका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है, जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबॉर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हद तक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक्य हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम

दस्ता था रॉकेटमैन का, जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्ग्रीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए।

0: जिम्मेवारी मेरी है। साइंस का काम कमाल दर्जा उत्साह भी देता है, खुशी भी, और उतनी ही गहरी मायूसी भी। इस तरह के वाकयात सोच सोचकर मैं दिल को ढारस देता रहा। ये ख्याल कि इंसान चांद पर उतर सकता है, सबसे पहले एक रूसी साइंटिस्ट ने सोचा था। उसे हकीकत बनने में 40 साल गुजर गए जब अमेरिका ने उसे पूरा किया। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट का आविष्कार किया था 1930 में जब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, लेकिन 50 साल बाद उन्हें उसी डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज मिला। वॉन ब्रॉन अपनी सैटर्न लॉन्च व्हीकल से आदमी को चांद पर उतारने से पहले कितनी सारी नाकामियों से गुजरे होंगे। पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चढ़ानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। चढ़ानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं और जिंदगी मंचती है और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है। चोटी पर पहुंचने की कोशिश ही में चढ़ानों का इल्म हासिल होता है। मैं एक एक कदम चलता रहा, चढ़ता रहा चोटी की तरफ। SLV-3 की उड़ान से 30 घंटा पहले 17 जुलाई 1980 के दिन अखबारों की सुर्खियां तरह तरह की राय और अंदाजों से भरी हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टर्स ने पहली SLV की उड़ान याद दिलाई थी कि किस तरह वो रॉकेट फेल हो गया था और उसका मलबा समंदर में जाकर गिरा था। कुछ लोगों ने तो देश की दूसरी खामियों का जिक्र करते हुए भी उसे SLV-3 से जोड़ दिया था। मैं जानता था कि अगले दिन का नतीजा हमारे फ्यूचर के स्पेस प्रोग्राम का फैसला करने वाला है। मुख्तसर ये कि सारी कौम की नजरें हम पर गड़ी हुई थी। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए।
1: मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है।
0: मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था। वो लोग मेरे साथ नहीं थे, मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर साराभाई। SLV-3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो, प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था। मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगाकर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाव रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था। पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं, बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था। फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से न खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकती हो, या आम तरक्की याफ्ता मुल्कों को परेशान कर दिया। अग्नि की टीम में 500 से ज्यादा साइंसदान शामिल थे। अग्नि की परवाज 20 अप्रैल 1999 तय पाई थी। लॉन्च की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और हिफाजत के लिए यह फैसला किया गया था कि लॉन्च के वक्त आसपास के तमाम गांव खाली करा दिए जाएं। अखबारात और दूसरी मीडिया ने इस बात को बहुत उछाला। 20 अप्रैल पहुंचते पहुंचते तमाम मुल्क की नजरें हम पर टिकी हुई थी। दूसरे मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था कि हम इस तजुर्बे को मुलतवी कर दें या खारिज कर दें, लेकिन सरकार मजबूत दीवार की तरह हमारे पीछे खड़ी रही और किसी तरह हमें पीछे नहीं हटने दिया। परवाज से सिर्फ 14 सेकंड्स पहले हमें कंप्यूटर ने रुकने का इशारा किया। किसी एक पुर्जे में कोई खामी थी।

अखबारात ने आस्तीनें चढ़ा ली, हर बयान ने अपनी अपनी तरह की वजूहात निकाल ली। कार्टूनिस्ट सुधीर दार ने एक कार्टून शाया किया जिसमें एक खरीदार कुछ सामान दुकानदार को वापस करते हुए कह रहा था, अग्नि की तरह वो भी नहीं चली। एक कार्टून में दिखाया गया कि साइंसदान कह रहा है, सब ठीक था, स्विच बटन नहीं चला। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्टून में एक नेता रिपोर्टर को समझा रहा है, डरने की कोई बात नहीं, यह बड़ी अमन पसंद अहिंसावाद की मिसाइल है, इससे कोई मरेगा नहीं। करीब 10 रोज दिन रात काम चला मिसाइल की दुरुस्ती पर, और आखिरकार साइंसदानों ने एक नई तारीख तय की अग्नि की प्रवास के लिए। मगर फिर वही हुआ, 10 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकावट का इशारा किया, पता चला एक पुर्जा काम नहीं कर रहा है। प्रवास फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटरवालू ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की प्रवास के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल केएन सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की प्रवास कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपनी खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1,00,000 पेड़ों की कोंपले लगाएंगे। मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, यह कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '90 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी।

0: 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
1: दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टंटाभील 90.8 FM छाबों की आवाज, RJ भावना के साथ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत।
7: सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है
6: पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया भील, रोज हांजे 6 થી 8 વાગે आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
4: किसान साथियों एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों रेडियो टंटिया भील 90.8 FM का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि वह खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक नवीनतम जानकारियों को, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम जानकारियों को आप तक पहुंचाए, जिसकी सहायता से हमारा जो किसान है वह अपनी

0: आजीविका में सुधार ला सके, साथ ही नवीन खेती पद्धति से हमारा जो किसान है वह उन्नत खेती की पद्धतियों को सीखकर न केवल अपना बल्कि अपने पड़ोसी किसानों का, अपने पड़ोसी किसान भाइयों को भी इस खेती की नवीन पद्धति में सहयोग कर पाएगा। किसान साथियों, अगर हम अभी समय की मांग को देखें तो कहीं ना कहीं आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आज का जो हमारा उपभोक्ता है वह कहीं ना कहीं जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि से उपजाए हुए उत्पादों को लेना पसंद कर रहा है। किसान साथियों, बदलते इस पर्यावरण में हमें कहीं ना कहीं हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है। जहां पर हम देख रहे हैं अभी प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आई है, तो किसान साथियों यहां पर जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारे जीवन में फलों का अहम स्थान है क्योंकि ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हमारे पोषण का भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लिहाजा जो किसान है उनकी आमदनी का भी ये अहम स्रोत है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की, इसका क्या उद्देश्य है, फलों के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, इसके साथ ही फल उत्पादन के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम विचर्चा करेंगे।
0: किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर फलों से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट पर।

0: हर साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। फलों और सब्जियों की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत फल उत्पादन में नंबर 2 पर आता है। विश्व में चीन के बाद फल उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल फल उत्पादन का 12.8% उत्पादन भारत में ही होता है। साल 2019-20 में 102.1 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था। फलों के उत्पादन के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न की तुलना में फलदार फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र कहीं ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पपीता, केला और अंगूर फल इसके उदाहरण है, जिनकी पैदावार परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा मिलती है। सरकार भी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु की विविधता भी सभी तरह के फलों की खेती के लिए अनुकूल है। फलों की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। फलदार पेड़ शुष्क कृषि क्षेत्रों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, बंजर और पर्वतीय भूमि पर भी रोपे जा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के फल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर करीब 28 फल वृक्षों की खेती ही प्रचलित है। विश्व परिदृश्य में आज पोषण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ताजे फलों जैसे आम, पपीता, सेब, केला, अंगूर, अनार, लीची, अमरूद, मौसमी और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर और किशमिश की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार फल उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में लगी है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को इसमें शामिल किया है। इससे लोगों की पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देशों में चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली और टर्की शामिल है।
1: जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और जैसा कि हमने देखा है इस रिपोर्ट में भी कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर तौर पर फलों का एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का?
2: देखिए, अगर हम इसका जो इतिहास है, अगर हम उस पर जाएं तो जो सोशल व्यवहारिक यूनिवर्सिटी जो बर्लिन में थी, वहां से इसकी शुरुआत हुई। जो कुछ बच्चे थे जो सोशल साइंसेस की स्टडी कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान की स्टडी कर रहे थे, और उनके दिमाग में एक बात ये आई कि हम सब लोग कुछ ऐसा काम करें जिसको हम मिलकर कर सकें और जो समाज के लिए भले की बात हो। तो उन्होंने एक शब्द सोचा, शेयरिंग मील, कि जो हम खाते हैं उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। और धीमे धीमे वहीं से उस चीज का जन्म हुआ और 1 जुलाई 2007 से इसकी शुरुआत हुई, और जिसमें सबसे पहले 400 लोगों को फल या फल से जुड़े उत्पादों को बांटा गया और उन्हें सिखाया गया कि भाई हम इनको अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में इसको त्योहार की तरह मनाएं। और सबसे खास बात इसमें यह है कि इस त्योहार को हर संप्रदाय के लोग बनाएं। अगर हम उसको फलों को खाने को अगर हम त्योहार की तरह मनाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी जो इसके पीछे फिलॉसफी थी वो ये थी कि एक तो हम खाएं ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। साथ ही साथ यूएनओ ने पिछले वर्ष 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी दिवस इसलिए मनाया क्योंकि हम लोगों को ये भी बताएं कि जो हमारा नुकसान होता है 20-25%, हम उसको भी रोकें। तो हम लोग इतने कॉशियस हों क्योंकि हमारे देश में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें 20-25% जो है उत्पाद जो औद्यानिकी फसलों का है उसका नुकसान होता है। और वो नुकसान कहाँ होता है कि फल खेत से लेके और बाजार तक आने में, जबकि विदेशों में भी वही हाल है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित कंट्री हैं, वहां भी होता है, लेकिन वहां पे रिटेलर से और कंज्यूमर के बीच में नुकसान होता है। तो ये दो पर्पज रहे कि एक तो हम अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए फलों को खाएं और उसको त्योहार के रूप में खाएं ताकि सब लोग उसको मनाएं, और दूसरा हम किस तरह
1: उनको लेकर के एक जागरूकता लोगों में आए, ये बेहद जरूरी है। एक तो जो बर्बादी है उसे रोकना मकसद है, दूसरा लोग इसको खाएं एक उत्सव की तरह ताकि जो इसका पोषण है वो लोगों को मिले, इस लिहाज से भी इसे मनाया जा रहा है। रहा है। तो डॉक्टर विनोद, यही आपसे समझना चाहेंगे कि पोषण सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, खासतौर पर भारत जैसे देश में अगर देखें, तो फलों की क्या अहमियत है?
3: सबसे पहले हम किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप बागवानी या फलों वाली फसल लेने जाते हैं, तो उसको उगाने से पहले जो हमारी परंपरागत तरीके से जो बागान लगाते हैं, उसकी जगह आप आधुनिक तरीके से अपने बागान को लगाएं और कोशिश करें कि बागान लगाते समय उससे संबंधित सारी जानकारियां संबंधित संभाग से जरूर ले लें, क्योंकि आज की पीढ़ी में इतने अच्छी हमारे पास वैरायटियां हैं, चाहे हमारे मैंगो की होगी, सिट्रस में हो, लेमन में हो, पपाया में हो, हर एक उसमें हमारे पास अच्छी वैरायटियां हैं। तो मैं अपने सब किसान भाइयों से सबसे पहले यही कहूंगा कि अपना बागवानी में जाने से पहले अपना जो परंपरागत बागवानी कर रहे हैं वो अपनी आधुनिक बागवानी की तरफ अग्रसित हो।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा ये बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर सचिन, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर विनोद, तो हमें बताएं कि जो बागवानी का क्षेत्र है हमारे किसानों के लिए, ये कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसलों के मुकाबले जो बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन है वो काफी ज्यादा हो रहा है। ऐसे में किसानों के लिए आमदनी के लिहाज से ये क्षेत्र कितनी संभावनाओं भरा है?
4: बहुत मैडम, बागवानी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं। जैसे अभी हमारे साहब ने बताया, शर्मा साहब ने, विश्व जो फल दिवस है उसकी उन्होंने जैसे जो महत्व वो बताया, और हमारा जो उत्पादन इस बार 100 मिलियन टन के ऊपर पहुंच गया है, और कई फलों में हम नंबर वन है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो जो नंबर है हमारा नंबर दो पे है। और किसान जितने बागवानी की तरफ जितने भी राज्यों में काफी बढ़ चढ़ कर बढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र से मैं आता हूं, मुझे पता है अनार जहां हमारा जो क्षेत्र था पहले 90,000 हेक्टर था, तो अभी 3,00,000 हेक्टर तक पहुंच गया है, क्योंकि उसको अनार को डॉलर क्रॉप के हिसाब से भी जाना जाता है। और जो किसान जो जिसके पास 3 एकड़ या 5 एकड़ जो जमीन थी, उसने आराम से उसमें अनार लगाया और काफी किसानों को काफी उससे पैसा भी पाया गया है। तो इसी तर्ज पर, अनार के तर्ज पर काफी किसान दूसरे जो फल के बागवानी फसल है वो भी लगा रहे हैं, और इसमें काफी संभावना है।
1: जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राधामोहन, जैसे कि आपने बताया हमें शुरुआत में ही कि ये जो फल हैं वो खाए तमाम लोग और इसके लिए एक दूसरे को बांटे, इस तरह से एक परंपरा की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बहाने। चाहूंगी आप हमें बताएं कि किस तरह से पोषण सुरक्षा जो है इससे हमारी जुड़ी हुई है।
2: देखिए, फलों को हम प्रोटेक्टेड फूड भी कहते हैं
1: जी,
2: क्योंकि मैं एक अभी हाल ही में एक मेडिकल साइंस का एक डाटा आया जिसमें कहा गया है कि लगभग 25 से 26 लाख लोग जो विश्व में मरते हैं वो कम सब्जी और फल खाने से मरते हैं। अच्छा। जिनमें खास करके 31% शेयर उन मरीजों का है जो दिल के मरीज होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोषण के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: कि कम फल और सब्जी खाने से लगभग 25 से 26 लाख लोगों की मृत्यु होती है पूरे विश्व में, और वो ज्यादातर दिल के मरीज होते हैं, उसमें कुछ कैंसर के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। तो एक तो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है फलों का। दूसरा ये है कि तीन बातें आती हैं, एक तो हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप मौसमी लीजिए, आप लाइम का जूस लीजिए ताकि आपकी रिकवरी तेज हो। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो मेंटेन कैसे रहे, उसके लिए भी हमें अलग से फल खाने की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसा कि कोविड के दौरान आपने देखा कि विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी रही और विटामिन सी काफी सहायक सिद्ध हुआ कोरोना रिकवरी में, तो हम जो है जो इम्यूनिटी को अपनी को कैसे बढ़ाएं, तो इन तीन तरह से फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रिकवरी, हमारा मेंटेनेंस और हमारी इम्यूनिटी, इन तीनों चीजों के लिए फलों का सेवन बहुत आवश्यक है। और अलग अलग तरह के फल अलग अलग तरह के पोषक तत्व देते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कि आपकी थाली में जो है जो 7-8 तरह के फल हैं उनमें कम से कम जो आधी एनर्जी आपकी दिन की हो वो सब्जी, फल और हरी सब्जियों से होनी चाहिए और ट्यूबर क्रॉप की होनी चाहिए। बाकी आप सीरियल लें और सीड जैब जो कुछ भी आप लेते हैं, नट्स लें, लेकिन आधी एनर्जी जो आदमी की दिन में जरूरत होती है, 2700-2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदमी को, तो उनका मानना है कम से कम 1200-1300 किलो कैलोरी ऊर्जा जो आपको मिले वो ऑर्गेनिकी फसलों से मिले, फलों से मिले, सब्जियों से मिले।
1: बिल्कुल, यानी कि जब बीमार पड़ते हैं उस समय तो फल खाने की जरूरत होती है, होती है, लेकिन ये हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए अलग अलग तरह के फलों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं उनमें। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो कह सकते हैं डॉक्टर विनोद कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि भारत जैसे देश में है, क्योंकि कई तरह के फल हमें यहाँ पर मिलते हैं। बताएं हमें कि हमारी मिट्टी और जलवायु की ऐसी क्या खूबी है कि इतने तरह के फल हमें यहाँ पर मिलते हैं।
3: सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आप जिस मिट्टी में बागवानी करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी बागवानी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आपकी बलुई दोमट मिट्टी है तो ये बागवानी के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। पर लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ किसान भाई हमारे जो बागवानी की ओर जब जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी बंजर भूमि है या ऊसर मिट्टी है या हमारी इस तरह की मिट्टी है जिसमें हम अपना फसल वाली फसलें नहीं ले सकते, उसके लिए वो बागवानी के लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा यदि आप ऐसी मिट्टी में भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो सब उसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी और जो आपका खेत है वो पूरा समतल होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके बाद अपनी मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे उचित जल निकास की व्यवस्था होगी, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होगी, तो आप जो है जो बंजर भूमि है या ऊसर भूमि है उसमें भी आप बागवानी लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर राधामोहन आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है उसकी जो टोपोग्राफी है उसमें तमाम तरह की स्थितियां हमें नजर आती है, पहाड़ी क्षेत्र भी है तो बंजर भूमि भी है तो रेगिस्तानी इलाका भी है और जो मैदानी इलाका है हरा भरा वो भी मौजूद है। तो क्या ये चीजें जो है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनाती है कि फलों के जो उपलब्धता है हम देखते हैं कि वो बहुत ही तरह तरह की हमें मिल पाती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जलवायु विविधता बहुत है। हमारे पास बहुत सारी सब्जियां तो ऐसी हैं कि पूरे साल मिल जाती हैं कि जब हमारे यहाँ खत्म हुआ तो पहाड़ों से आ जाता है। तो हमारे यहाँ खास करके तीन तरह के फल लगते हैं। एक तो वो फल जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं, बहुत ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं और एक मॉडरेट टेम्परेचर में होते हैं, साल भर जिनके लिए आवश्यक है, वो ट्रॉपिकल फल होते हैं जिनमें हमारा समुद्र के किनारे का एरिया तमिलनाडु केरला कर्नाटका, तो ये हमारी ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम जिसको कहते हैं। सेकेंड जो आता है सब ट्रॉपिकल जिसमें हम लोग दिल्ली के आसपास का एरिया सेंट्रल इंडिया है, उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जिसमें हमारा आम लीची नींबू वरिक फल अमरूद और बहुत सारे फलों की विविधता है, बेल बेर, तो हम उनका आनंद लेते हैं
1: जी।
2: और तीसरे प्रकार के जो फल हैं वो पहाड़ी फल होते हैं जिनको हम टेम्परेट फ्रूट्स कहते हैं, जैसे सेब नाशपाती आलूचा और आड़ू अखरोट बादाम पिस्ता, तो ये जो फल हैं वो पहाड़ी फल हैं। तो हमारे क्षेत्र में तीनों तरह के ही फल सफलतापूर्वक उगाए जाते हैं, ट्रॉपिकल भी सब ट्रॉपिकल भी और टेम्परेट भी। इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर समय जो वर्ष में हमारे यहाँ ताजे फल उपलब्ध रहते हैं किसी न किसी स्वरूप में।
1: बिल्कुल डॉक्टर सचिन आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो फल हैं जैसा कि डॉक्टर राधामोहन ने भी हमें बताया कि हम खाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पोषण के लिए बेहद ही जरूरी है, तो जाहिर तौर पर बाकी जो तमाम तरह की खेती होती है हम देखते हैं कि रसायनों का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन फल चूंकि हम पोषण के लिए ही खा रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसमें अगर रसायनों का इस्तेमाल न हो तो ही बेहतर है। तो जैविक खेती जो फलों की है वो किस पैमाने पर यहाँ पर की जा रही है आपसे जानना चाहेंगे।
4: सही बताया मैडम आपने, जैसा ये अभी कुछ दिनों पहले जो रिपोर्ट आई है, हमारा जो चाय जो निर्यात होता है तो बहुत से कंट्रियों ने हमारा जो कंसाइनमेंट है रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कीटनाशकों के जो अवशेष है उसमें ज्यादा पाए गए। तो सबसे पहले हम को अगर कीटनाशकों के अवशेष अगर कम करना है
1: जी।
4: फल पौधों में या अन्य पौधों में भी तो आपको कई प्रकार की जैविक आपके पास टूल्स है तो उसका इस्तेमाल आपको करना जरूरी है। जैसे आपके पास बहुत से फफूंदनाशक को ऐसे फफूंदनाशी जीवाणु है, फिर आपके पास फेरोमोन ट्रैप्स है जो किसान लगा सकता है। मॉनिटरिंग में कई बार ऐसे पाया गया है कि किसान अन्य से ले छिड़काव करते हैं जहां जरूरत भी नहीं होती है क्योंकि कैलेंडर उसको ऑपरेशन उसके पास दिया जाता है
1: जी।
4: तो उसको पहले निगरानी करनी चाहिए कि कीट आया है कि नहीं, अगर कीट आया है तो फिर उसकी जो मात्रा है वो उसकी जो आर्थिक स्थिति की दर होती है उससे कम है ज्यादा है। तो मैंने जैसे बताया कि येलो ट्रैप्स है, ब्लू ट्रैप्स है, येलो ट्रैप से वो सफेद मक्खियों को पकड़ सकते हैं, फिर फेरोमोन ट्रैप्स है, उसमें आप कई ट्रैप्स है जिसमें 10 या फिर 20 या 50 तक प्रति एकड़ में आप हेक्टर में लगा सकते हो, तो उससे काफी उसका कीटनाशकों का आप उपयोग कम कर सकते हैं। और जैसा ही आपने बताया कि इसके अवशेष काफी बढ़ रहे हैं, तो हम जब भी फल लेते हैं तो जब भी उपभोक्ता फल खरीदता है मार्केट से, तो सबसे पहले उसको पानी में अच्छे से भिगो के रखे आधा एक घंटा, फिर अगर आप उसको टैप वाटर से अच्छे धो लेते हो तो अच्छा 60-70% जो भी अवशेष है उसके ऊपर कीटनाशकों के वो कम हो जाते हैं। और सब्जियों के बारे में तो कुछ बताने नहीं, क्योंकि हम इंडिया में हम अच्छे से कुक करते हैं, तो कई प्रकार के जो कीटनाशकों के जो अवशेष होते हैं वो वहीं उसका ये हो जाता है, खत्म हो जाता है।
1: जी जी बिल्कुल, तो इन उपायों को जरूर किसानों को अपनाना चाहिए जब वो फलों की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद, फलों की खेती अगर शुरू करना चाहे कोई किसान, बाग लगाने की सोचे, तो उसके लिए जो मिट्टी की तैयारी है उन्हें किस तरह से करनी चाहिए?
3: मैं सबसे अपने किसान भाइयों को, जैसे मैंने अभी बताया

0: साथ साथ जांच करा रहे हैं। होता क्या है कि आप बिना मिट्टी की जांच कराए, बिना पानी की जांच कराए आप सीधे बागवानी के लिए चले जाते हैं। तो हमारे कुछ बागवानी वाली ऐसी फसलें हैं कि जिसमें जैसे डिफरेंट पीएच मान है या उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव जिसमें कहते हैं हमको सोलूबल साल्ट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव जो ज्यादा होते हैं तो उसमें आपकी फसल जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। आप कोई भी पेड़ लगाएंगे और वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तो मैं अभी आप सभी से कहूंगा कि पहले मिट्टी की जांच कराएं और मिट्टी की जांच कराने के बाद जब आपको पोषक तत्वों के बारे में पता लग जाए कि हमारे पोषक तत्वों का स्तर क्या है, उसकी मिट्टी की पीएच क्या है और उसकी सोलूबल साल्ट उसमें लवण कितना है
1: जी।
0: उसके आधार पर जब आप अपनी उस रिपोर्ट को जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप उन रिपोर्ट को एक बार चेक करा लें, चेक कराने के बाद वो सिफारिश करेंगे कि आपका इतना पीएच है तो आप इस फसल को, ये फल वाली फसल को आप लगा सकते हैं
1: जी।
0: आपका इतना साल्ट है, ये साल्ट के साथ आप इस फसल को लगा सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ कहूंगा जब आपको पीएच और ईसी पता लग जाए तो उसके बाद में आपको पोषक तत्वों की भी निगरानी करनी है और देखना है कि उस जांच कराई है मिट्टी की उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है,
1: है।
0: पोषक स्तर के हिसाब से अपने पोषक तत्वों को जो डिफरेंट हमारे सोर्स है चाहे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, बहुत से हमारे पोषक तत्व म्यूरेटा पोटास है, उनके द्वारा आप जो उचित मात्रा में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो उनको आप वहां डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मिट्टी की जांच कराने से पहले आप मिट्टी के नमूने को अच्छी तरह से वहां से लेना चाहिए
1: जी।
0: कम से कम एक एकड़ से दो या तीन सैंपल लें और लेने के बाद जब स्पेशली बागवानी के लिए जाते हैं तो मिट्टी की गहराई का अवश्य ध्यान रखें। जनरली किसान हमारे क्या करते हैं कि जो सरफेस सॉइल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर की उसका नमूना लेके बागवानी के लिए चले जाते हैं।
1: अच्छा।
0: पर मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा जब भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो कम से कम आप मिट्टी के 3 नमूने एक गड्ढे से जरूर लें।
1: अच्छा।
0: जिसकी गहराई 0 से 30 सेंटीमीटर होगी, 30 से 45 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर। और जब 60 सेंटीमीटर गहराई का 3 नमूने एक गड्ढे से बन जाएंगे उनकी जांच कराएं, उसके आधार पर जो तुम्हारा स्पेशलिस्ट है
1: जांच करना बेहद जरूरी है अगर आप बागवानी के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। आइए कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार फलों की जो खेती होती है उसके बारे में यहां पर जानकारी हासिल करें। डॉक्टर राधामोहन, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे देश के, वहां पर किन किन तरह के जो फल हैं वो अधिकतर उगाए जाते हैं?
2: देखिए वहां पे अगर मुख्य हम श्रेणी देखें तो 3 तरह के फल हैं। एक फ्रूट जिनको हम गुठली वाले फल कहते हैं, स्टोन फ्रूट कहते हैं, एक पॉम फ्रूट कहते हैं और तीसरा नट्स होते हैं
1: जी।
2: तो जो गुठली वाले फल हैं उसमें पीच, प्लम, एप्रिकोट, चेरी, ये जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। और इन फलों की खास बात यह है कि इनका इनकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम होती है।
1: अच्छा।
2: जैसे प्लम है, खुबानी है, इनको बहुत जल्दी तोड़ के बाजार में बेचा जाता है
1: जी, जी, जी।
2: और दूसरे तरह के फल होते हैं जिनको हम पॉम फल कहते हैं, जिसमें आपका नाशपाती है और सेब है, ये थोड़े से ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं और इसमें इनमें काफी विविधता है। सेब की बहुत सारी 1000 वैरायटी हैं जो सेब की हम लगाते हैं। और नाशपाती की जहां तक बात है वो ये है कि नाशपाती की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा, वो पहाड़ों से लेके और पंजाब और दिल्ली तक भी हम उसको कर सकते हैं, प्रजातियां उसकी अलग अलग है
1: जी।
2: साथ ही क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है कि ज्यादातर रोड जो होते हैं वो नाले या नदी के किनारे होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा साधन नहीं है तो वहां पे हमें प्लम, खुबानी जैसे फलों को उगाने से बचना चाहिए क्योंकि वो उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे खेत या ऐसे बाग जो रोड से थोड़ी ज्यादा दूरी पे है वहां पे हम अखरोट, बादाम या पिस्ता जैसी फसलों को हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि, क्योंकि उनकी भंडारण क्षमता बहुत होती है, अगर वो अपने घर पे भी 10 दिन 15 दिन रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी जो कैटेगरी आती है वो बेरीज की होती है जिसमें आपका कीवी फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी की भी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। कीवी फ्रूट जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और उत्तर भारत के कुछ राज्य प्रदेश में भी उसकी खेती जो है व्यवसायिक स्तर पर शुरू हो गई है, तो उसकी भी अपार संभावनाएं हैं। तो ये जो है पहाड़ी फल हैं।
3: फलों से फलता फूलता भविष्य। जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो फलों की खेती में भी अपार संभावनाएं हैं। जहां तक हम जानते हैं हमारा जो झाबुआ का किसान है अधिकतर खाद्यान्न फसलों में ही अपना रुख किया हुआ है। तो किसान साथियों यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है। अगर हमारा जो किसान है, कहीं कहीं पर हमारे जो किसान है वो फलों की खेती कर रहे हैं, बात करें तो पपीता है, अमरूद है, केला है, आदि जो बेर है, आदि जो फल है हमारे जो अपने झाबुआ के जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी

अच्छे से फलते फूलते हैं, और भी कई फल हैं जो हमारे झाबुआ में फलते फूलते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें आवश्यकता है, हमारे जो भाई है, जो हमें केवीकी के माध्यम से, जो भी किसान भाई है जो फलों की खेती करना चाहता है, वो केवीकी के माध्यम से भी इन फसलों की खेती कर सकता है। यहाँ से वह प्रशिक्षण ले सकता है और फलों की खेती में अपना रुझान कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM को।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप लगातार फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे। किसान साथियों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: विनोद, बताएं कि ये जो फल हैं जिनके बारे में बताया डॉक्टर राधामोहन ने कि किस तरह से बेरीज हैं, गुठली वाले फल हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इनकी जब खेती करते हैं बागवान, तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए?
2: मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मिट्टी की जाँच करा लेने के बाद आपको अच्छे उत्पादन के लिए जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं, उन मुख्य पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में और इंटीग्रेशन के साथ एकीकृत रूप से तुम्हारी जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, उसके साथ यदि FBM डाल सकते हैं, गोबर की खाद के साथ साथ आप बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट की जगह कंपोस्ट भी मिलता है, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उर्वरता और गुणवत्ता वाला दोनों ही तरह के आपको फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बगैर फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। और अधिकतर हमारे जो भारत देश में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकतर मृदाओं में कमी पाई जाती है, इसीलिए मिट्टी की जांच कराते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी एनालिसिस, उसका विश्लेषण अवश्य करा लें, जिसके आधार पर आप पोषक तत्वों को देंगे, क्योंकि हर पोषक तत्व का अपना पूरा रोल होता है। तो इसीलिए आप जांच के बाद उन पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा, संतुलित मात्रा आप उसमें प्रयोग करें, और जिससे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट आपको मिले।
1: तो अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र के फल हैं, इन्हें किस तरह के कीटों का प्रकोप जो है उसकी आशंका रहती है, और किसानों को क्या उपाय अपनाने चाहिए?
3: जैसे सर ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में तीन प्रकार के जो फल होते हैं, इसमें मैडम सबसे ज्यादा जो चूसक कीट है ना, जैसे भी ठंडा थोड़ा कम हो जाता है या फिर उसमें चूसक कीट का काफी प्रकोप होता है, उसमें व्हाइट फ्लाई है, फिर उसमें माउ एफिड्स है और कुछ फ्रूट बोरर्स भी है मैडम उसमें। तो इसका प्रकोप कम करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आर्थिक जो सीमा स्तर है, सभी जैसे भी फल है सब फलों में अलग अलग होती है सब कीट के लिए, तो अगर सबसे पहले निगरानी करें कि कीट है या नहीं, अगर कीट है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति दर कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तभी छिड़काव करे या तो ना करे। और जब किसान मार्केट में जाता है तो हमारे जैसे भारत देश में कम कीटनाशक के जो अन्य प्रकार है उसके 309 प्रोडक्ट भारत देश में पाए जाते हैं, तो उसमें जैविक नियंत्रण के लिए सिर्फ किसानों के पास बहुत कम उत्पाद है, उसमें सिर्फ 15 ही उत्पाद है जो जैविक नियंत्रण के लिए उत्पाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 309 में से हर स्टेट में हर उत्पाद उनको मिलेगा या ना मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। तो जब वो दुकान में जाए तो सबसे पहले इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उसका ही उत्पाद ले, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जब किसान मार्केट में जाता है कोई कीटनाशक खरीदने के लिए तो 40% जो उत्पाद है वो डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले फिर वो देखे कि वो रसीद ले, ज्यादातर दुकानदार रसीद देते नहीं है, किसान रसीद मांगता भी नहीं है, और जो उत्पाद उसने लिया है तो उसमें देखना चाहिए कि उसके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए एक्सपायरी के। तो कई बार ये देखा गया है कि जो दवा लेता है मैक्सिमम वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है या फिर 2-3 महीने में एक्सपायरी होने वाली है, तो ये करे। फिर उसपे ऊपर एक लेबल आता है जो भी कीटनाशक का जो भी किसान खरीदता है, तो लेबल में जो मात्रा दी है उसी मात्रा में वो छिड़काव करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा है कि अगर आपको 0.5 ml प्रति लीटर छिड़काव करना है तो किसान ज्यादातर 1 ml 2 ml भी प्रति लीटर छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से किसान को ही उसका नुकसान हो सकता है। जो कीट मैंने बताया जैसे फ्रूट बोरर का आपने मैंने पहले बताया, फ्रूट बोरर के लिए जैसे जो रोगग्रस्त फल है या कीटग्रस्त फल है जो भी गिर जाते हैं उनको उसको नष्ट कर दे, और फिर
1: इस तरह से जो कीट प्रबंधन है वो पर्वतीय इलाकों में किया जा सकते हैं। डॉक्टर राधामोहन, अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि वो इलाके जहां पर पानी की समस्या है, पानी की उपलब्धता कम है, तो वहां पर कई तरह की ऐसी फसलें हैं जिन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो इन इलाकों में भी लगाए जा सकते हैं?
4: बिल्कुल, देखिए फल जो है फल की बहुत तरह की जो विविधता है फलों में, जो और जो अलग अलग कंडीशन में सफलतापूर्वक उत्पादन दे सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कम पानी की दशा में हमारा जो शुष्क वन की जो है अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, वो इसी पे काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट फल हैं जहां पानी बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, वहां पे जिन फलों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें बेर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेर के साथ साथ जामुन है, करौंदा है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, कटहल है, जिन फसलों को हम जहां पानी की उपलब्धता कम हो वहां पे हमें इन फलों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो जमीन आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जमीनों को जो अंडर यूटिलाइज है, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन जगहों का भी इस्तेमाल हम फल उत्पादन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है फल उत्पादन की।
1: बिल्कुल, यानी कि जो किसान है जो बाकी फसलें यहां से नहीं ले सकते हैं, वो वहां पर फल उगाकर भी आमदनी कमा सकते हैं। डॉक्टर विनोद, लेकिन चुनौती वहां पर ज्यादा होती है किसानों के सामने, तो ऐसे में बताएं कि अगर किसी ने बेर, जामुन या करौंदा ऐसे पौधे लगाए हैं, तो उन्हें किस तरह से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर जो पोषक तत्व प्रबंधन है या सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार करनी चाहिए किसानों को?
2: मैं जैसे अभी मैं बता रहा था कि जहां आपकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी है, उसके बाद उस जो वहाँ की मिट्टी की दशा, वहाँ का जो जहाँ आप बाग लगा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए फसलों का, आप जो फलों वाली बागवानी के लिए जा रहे हैं तो उनका चयन करना चाहिए। उस चयन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फसल में पोषक तत्व ले रहे हैं वो पोषक तत्वों की मात्रा उसकी उम्र के हिसाब से, जो फसल जो प्लांट लगाया है उसकी एज के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं, बागवानी के समय बाग लगाने के बाद एक बार खाद लगाने के बाद उस उतनी मात्रा में खाद दोबारा आगे लगाते हैं, पर लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का फल और अच्छी उपज नहीं प्राप्त होती। इसीलिए मैं हर किसान भाई को कहूँगा कि सबसे पहले आप जिस बागवानी के लिए जा रहे हैं, जिस फसल की बागवानी करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लें, क्योंकि जिस खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो उसमें उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा
1: जी।
2: और उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए आपको कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं, इनका एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाल सकते हैं।
1: जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि बारानी क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जैसे कि बताया कि बेर, जामुन आदि जो फल हैं उनके पेड़ लगाए जा सकते हैं, यहां पर भी क्या कीटों से जुड़ी हुई समस्याएं आती है किसानों के सामने, किस तरह की चुनौतियां यहां पर होती हैं?
3: जैसे सर ने बताया बारानी जो क्षेत्र है, जैसे अरिड जोन की जो बातें कर रहे हैं हम, जहाँ जैसे बेर का फल है या कटहल है या अनार है, तो जहाँ पानी की मात्रा कम हो जाती है मैडम, वहाँ पे जो माइट्स है, माइट्स की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, क्योंकि माइट ऐसी पेस्ट है जहाँ भी आप अगर पानी कम दिया जाए तो उसका प्रकोप जैसे अप्रैल मई में ज्यादातर आता है। तो किसान ये देखे कि अगर उसके पास पानी अगर बहुत कम है सिंचाई के लिए, तो रिक्वायर्ड जो भी पानी की जो मात्रा है वो टाइम टाइम पे देते रहे, और माइट के प्रकोप के लिए फिर उसके पास अन्य जैविक नियंत्रण की भी पद्धतियां हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे हम कुछ कीटनाशक है, जैसे नीम पेस्टिसाइड है हमारे पास जो पेड़ों से निकाला गया है, तो नीम ऑयल है 300 ppm से लेकर आपको 30,000 ppm तक का उसका कॉन्सेंट्रेशन वाले जो उत्पाद है मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। जैसे 2 ml प्रति लीटर अगर 300 ppm है तो उसका छिड़काव कर सकता है। अगर 3,000 ppm का अगर उसके पास उत्पाद है तो 1 ml प्रति लीटर का भी छिड़काव कर सकता है। इसके साथ साथ फिर उसके पास जैसे मार्केटिंग कैटरपिलर है जो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर आती है, ये कीट जैसे है, ये रात में आके जो भी जो फल के पौधे है उसका जो रीण होता है उसको रीण को खाता है, तो उसका किसान लोग क्या करे कि इसका जो भी डैमेज ट्री है या डैमेज ब्रांचेस है उसका वहां से वो क्लीन कल्टिवेशन आराम से उसका करके उसको कंट्रोल कर सकता है।
1: जी जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फलों के उत्पादन के बारे में तो हमने जाना, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमने देखा कि विश्व में दूसरे नंबर पर है भारत, ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत तरह के फल हैं जो निर्यात भी होते हैं। डॉक्टर राधामोहन, हमें बताएं कि भारत के वो कौन कौन से फल हैं जो वैश्विक बाजार में अच्छी खासी मांग रखते हैं?
4: देखिए, जितनी भी उद्यानिकी फसलें हैं फलों को मिला के, इनका जो है निर्यात में बहुत बड़ा रोल है। जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की हम बात करें 35 से 40 हजार करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अगर हम फलों की बात करें तो उसमें जो मुख्य फल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं उनमें अंगूर बहुत आवश्यक है, आम, प्रसंस्कृत और ताजे फल दोनों ही रूप में वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है
1: जी।
4: और अनार जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, अखरोट बहुत बड़ी मात्रा में होता है, अखरोट लगभग हम 23 कंट्रीज को हम यहाँ से निर्यात करते हैं, लगभग 200 करोड़ का बिजनेस हमारा अखरोट का है। और अब तो ये समस्या आ गई है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घर की डिमांड है, वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट नहीं कई बार अवेलेबल होता। तो ये बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनकी अपार संभावना है एक्सपोर्ट की, जिसमें अपना लीची भी है, थोड़ा सा अमरूद भी है, और अब तो कुछ दिन पहले हमने सुना है कि थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉबेरी भी, खास करके महाबलेश्वर एरिया से उन्होंने उसका जीआई रजिस्टर कराया और थोड़ी मात्रा में वो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को भी। और इसके अलावा सेब है जो हमारा हालांकि एशियन कंट्रीज में ही जाता है
1: जी।
4: तो अखरोट और जो हमारा आम है और अंगूर, ये हमारे लगभग विश्व में कई कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ से इनका निर्यात किया जा रहा है और एक अच्छी खासी आय हमें इनके निर्यात से होती है।
1: बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सचिन, आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कि इन फलों की खेती से जुड़े हुए हैं, आम, अंगूर है या अखरोट है, जिनकी अच्छी खासी जो निर्यात मांग है वो इस वक्त बनी हुई है, उन्हें अपने इस जो संभावना है उसे तलाशने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें?
3: जैसे ही मैडम हमारा जैसे उत्पादन फल उद्यान का बढ़ रहा है निरंतर, जैसे उत्पादकता बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ते जा रहा है
1: जी।
3: तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही अगर उत्पादन बढ़ गया तो निर्यात बढ़ेगा तो उसमें फिर जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे अवशेष है कीटनाशकों के, अगर अवशेष पाए गए तो उत्पादन बढ़ने से भी फिर हम निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा किसानों से यही सुझाव है कि जब भी वो मार्केट से कीटनाशक खरीदते हैं तो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड जरूर खरीदे और जो संस्तुति की जो मात्रा है उसी मात्रा में हमेशा छिड़काव करें, अगर जरूरी है तभी छिड़काव करें। कई बार ऐसा होता है कि कीट नहीं भी है तभी किसान छिड़काव करते हैं, तो जरूरी नहीं हर बार हम छिड़काव करें, तो ये करने से आपकी उत्पादन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और कीटनाशकों के अवशेष जो कम हुए हैं उसके साथ साथ आप जब निर्यात करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी
1: जी। बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए?
2: मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अच्छी उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फलों की यदि उपज लेना चाहते हैं तो यदि आप पानी लगा रहे हैं तो वो पानी की क्वालिटी जो मैं बता रहा था कि चेक करा लेना चाहिए, जांच के बाद लगाएंगे। क्या होता है कि जैसे अपना राजस्थान एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ छारी वाटर है, उस पानी को जिप्सम के साथ ट्रीट कर लें, संतुलित मात्रा में जो मिट्टी जाँच के बाद जो आपके पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत है उतना उसमें दें, उसके साथ साथ अपने जो सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कोशिश करें कि कार्बनिक खादों के द्वारा दें, चाहे बायो फर्टिलाइजर हो या आपका गोबरी खाद हो चाहे कंपोस्ट हो। इसके बावजूद भी आपका अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम्स आपके फल और पौधे दिखाना शुरू कर देता है कि कौन से पोषक तत्व की आपकी कमी है, तो उसको आप स्प्रे करके भी उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं
1: जी। जी बिल्कुल। तो बेहतर उत्पादन के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाना बेहद जरूरी है। निर्यात की स्थिति के बारे में तो हमने बात कर ली। डॉक्टर राधामोहन, आप जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने आम के बारे में बताया, इसके ताजे फलों की मांग तो है ही लेकिन प्रसंस्कृत जो फल है इसके उसके भी मांग है, तो प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है फलों के मामले में, इसमें कितनी संभावनाएं हैं किसानों के लिए?
4: हमारे यहाँ जो प्रसंस्करण है वो बहुत कम है, 1-2% ही होता है
1: जी,
4: जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीजन पे हमारे यहाँ फल इतने सस्ते हो जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो फल हो, कि किसान को उसकी उतनी अच्छी आय नहीं मिलती। जैसे हम आपको स्ट्रॉबेरी के उदाहरण देते हैं कि जब हम स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते हैं तो सारे फल उसमें बाजार में बेचने लायक नहीं होते, कुछ फल इतने छोटे होते हैं, तो हमारे किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो छोटे फल हैं उनका वो पल्प प्रिजर्व करके रखें
1: जी।
4: पल्प प्रिजर्व क्योंकि डेली आप उससे जैम जेली चटनी नहीं बना सकते, आप दसियों बार तुड़ाई करते हैं अपने खेत से, तो जो ऐसे फल हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, छोटे फल हैं या उनका कलर उन पे वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो उसका आप फल, पूरा फल ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा हो जाए तो फिर आप उससे कोई भी उत्पाद जो आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो प्रसंस्करण है उसकी अपार संभावनाएं हैं। हालांकि उसके लिए अच्छी प्रजातियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रजाति को का प्रसंस्करण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण एक दूं आम का, कि आम में एक प्रजाति है तोतापरी, जो खास करके जो उसका पल्प होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत तरीके से इस्तेमाल उसको करते हैं। तो सारी प्रजातियों का हम उस तरह से उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते या परिरक्षित नहीं कर सकते। तो अपार संभावनाएं हैं अगर हम सही तरीके से उनका कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं और बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो निश्चय ही हमारी इनकम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दोगुनी करने का, उसमें ये निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा।
1: बिल्कुल, यानी कि आप अगर प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, मूल्यवर्धन करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस फल के कौन सी जो प्रजाति है उसका चुनाव करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल, आम की जैसा कि उदाहरण के तौर पर लिया डॉक्टर राधा मोहन ने, मैं जानना चाहूंगी कि आम फलों का राजा भी कहलाता है और इसकी अच्छी खासी मांग घरेलू बाजार में तो है ही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है। डॉक्टर विनोद, हमें ये बताएं कि जो आम के किसान हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कोई कमी रह जाती है तो किस तरह के रोग या किस तरह की समस्या आ सकती है आम में खासतौर पर।
2: मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि जब किसान की जो भी समस्या है वो समस्या से संबंधित जानकारियां हमारे सभी संभाग, जितने भी उद्यान संभाग हैं, वहां सब मिलता है आपको, पर लेकिन कुछ जानकारियां किसानों के पास स्वतः ही होती हैं। जैसे कि आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि खेत की उर्वरा शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि आप गोबरी खाद, पर लेकिन आप गोबरी खाद इतनी मात्रा में आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो जिस पीरियड में आपके बगीचे में फल नहीं है, फल वाला जो पीरियड नहीं है, उस पीरियड में आप दलहनी फसलें लगा सकते हैं। और जो डोरमेंसी पीरियड में जितनी पत्तियां जमीन पर गिरती है उसको भी खेत में उसको दवा देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अधिकतर किसान करते हैं, पत्तियां गिरती हैं और बाहर निकाल देते हैं, वो अपने किसी दूसरे यूज में ले लेते हैं, पर लेकिन पत्तियों को भी उसी में डालना है, दलहनी फसल लगा के उसका अवशेष है उसको भी उसी में दबाना है। और सबसे मेन चीज जो है, नमी जब आपका फ्रूटिंग स्टेज चल रही हो, जब फल बनने जा रहा हो और पकने तक, उसकी नमी का हमेशा ध्यान रखें, उस देखते रहें कि हमारे प्लांटों के नीचे नमी की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि वो नमी ही एक कारण ऐसा है कि जो पोषक तत्व जमीन से होते हैं वो उस नमी के द्वारा ही आपके पेड़ों को मिलते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से फिर आग्रह करूँगा कि आप बागान में जब फसल आती है तो उस जो फ्रूट आते हैं तो फ्रूट की देखभाल एक बच्चे की तरह करें, कि उसको कब पानी की जरूरत है, कब उसको खाद की जरूरत है, कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं लगी हुई है, या कौन यदि हमारे पोषक तत्व की किसी की कमी है तो उसका कौन सा लक्षण आ रहा है, उस लक्षण के हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर और पोषक तत्व दे देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता, अच्छी उत्पादन आपको मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, और जानना चाहेंगे डॉक्टर सचिन, अगर आप हमें बता सके कि कई बार हम देखते हैं कि जो फलों के किसान हैं वो फलों को पकाने के लिए किसी न किसी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना उचित है, या फिर किस तरीके से पकाया जाए कि सेहत को नुकसान ना पहुंचे, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
3: मैडम, जैसे साउथ इंडिया में जहां आम पहले निकलता है तो उसको पहले पका के डायरेक्ट दिल्ली भेजना होता है
1: जी।
3: तो मैं जैसे मेरे फैमिली के, मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ कि मैं जैसे ही मई या जून ना ही आए तब तक मैं आम खाता नहीं हूँ। तो ये बहुत खराब पद्धति है जो आर्टिफिशियली आम को पकाया जाता है, और ये पाया गया है कि इससे कैंसर भी होता है
1: जी।
3: तो जैसे 85% मैच्योरिटी पे जैसे आम या अन्य फल तोड़े जाते हैं, है ना, कई फल होते हैं जो आम पेड़ों पे पकते हैं, कई फल तोड़ने के बाद पकते हैं, जैसे मैंने अनार बताया था, अनार एक्चुअली जब पकता है तभी तोड़ा जाता है, आम आप जब कच्चा होता है तभी आप तोड़ के पकाते हो। तो जैसे जैसे फल है वैसे ऐसी पद्धतियां अनेक है, लेकिन जो केमिकल या रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसान ना करे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है।
0: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात की आशा से हम अधिकतर किसान भाई यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, ताकि फलों में चमक रहे, फल हमारी जो उपज है वो अच्छी रहे, फल अच्छे रहें। तो कहीं ना कहीं यह हमारी भूमि को भी प्रभावित करता है और साथ ही हमारे जो मानव का स्वास्थ्य है इस पर काफी बुरे दुष्परिणाम आते हैं। तो किसान साथियों, हम कोशिश करें कि जितना हो सके हम रासायनिकों का कम प्रयोग करें और प्राकृतिक द्वारा इसे पकने दें। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंडियाबिल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंडियाबिल रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: फलों की खेती और बागवानी से जुड़े किसानों के लिए यहाँ पर कई बातें हमने की है। डॉक्टर राधा मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है खास तौर पर बागवानी से जुड़े किसानों के लिए।
4: देखिए, 2003-04 से लगभग जो है बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी
1: जी।
4: और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2011-12 के अंत तक हमें अपने जो औद्यानिक की फसलें हैं उनको उनका उत्पादन डबल करना है। अब उत्पादन डबल करने के दो ही तरीके हैं कि या तो जो हमारे ऑर्चर्ड हैं, जो बाग हैं, उनकी उत्पादकता को हम बढ़ाएं, उसमें खाद डालें, उनकी कटाई छटाई ठीक करें, उनमें पानी ठीक तरह डालें। दूसरा, जो नए बाग हम लगाएं वो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों के लगाएं। तो इस योजना में बहुत सारे चीजें इसमें रखी गई थी। अब बाद में उसको कृषि मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है उस स्कीम को, और अभी भी जो स्टेट डिपार्टमेंट जो हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे जो भी किसान भाई हैं अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास जाके उनसे पता कर सकते हैं कि जैसे ड्रिप इरीगेशन के ऊपर भी सरकार कुछ उनको सब्सिडी दे रही है, पौधे आप खरीदते हैं उस पर भी सरकार कुछ देती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा सही तरीके से लगाएंगे तो उसके लिए हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास अवश्य जाएं और उनसे पूछें कि भाई किन किन तरह से वो जो है डिपार्टमेंट जो है उद्यानिकी विभाग है वो हमारी सहायता कर सकता है, कहां कहां हमें हेल्प कर सकता है। नर्सरी पे भी दे रहे हैं, स्टोरेज बनाने पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही है।
1: बिल्कुल, योजनाओं का लक्ष्य यही है जो किसान है वो बागवानी से जुड़े और जो उत्पाद, जो कृषि उत्पाद मिले वो गुणवत्ता युक्त हो। कीटों की वजह से गुणवत्ता को काफी असर पड़ जाता है। डॉक्टर सचिन, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि किसान कई बार कीटों से छुटकारा पाने के लिए कई कई बार छिड़काव करते हैं, तो ऐसा न करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान?
3: मैडम, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ अनार का। जैसे अनार में पहले, जैसे अनार 6 महीने का क्रॉप है, जैसे जब से फूल निकलता है तब तुड़ाई तक, तो सब पहले 45 स्प्रे किसान करते थे, 45 स्प्रे, तो कई प्रकार के हार्मोन्स है उसमें, फिर फफूंद नाशी है, जीवाणु नाशी है, फिर कीट नाशी है। तो इस पे फिर उस अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर ने उन्होंने रिसर्च करके वो 45 स्प्रे 15 तक रिड्यूस किया है। तो जो किसान 45 स्प्रे कर रहा है उसको भी उतना ही उत्पादन मिल रहा था, जो 15 कर रहा था उसको भी उतना ही मिल रहा था। तो किसान जो भी, जैसे कोई आम का किसान हो या कोई अनार का किसान हो या कोई सेब का किसान हो, तो जो आसपास जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से वो चर्चा करके या वहां से उनके जो भी टेक्निक्स है वो जानकारी लेके पता कर सकता है कि कब हमको छिड़काव करना चाहिए। और मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि छिड़काव जस्ट कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन में अगर आपको छिड़काव करना है तो आप कई बार छिड़काव कर सकते हो, लेकिन कीट है तभी आपको छिड़काव करना चाहिए। और जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड हमेशा यूज कीजिए, जैसे बहुत जैविक कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जैसे मेटराइजियम ब्यूवेरिया है, ये फफूंदनाशी है, फफूंद है और कीटों को भी मारते हैं। टाइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है जो कई प्रकार के जो फफूंद है जैसे जड़ों में जो रोग आते हैं पौधों में तो उसको भी मारते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास कीटों को मारने के लिए जीवाणुनाशी वायरसेस है जैसे NPV है, फिर बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियंसिस है, और कई प्रकार के हमारे पास जो पेड़ों से लिए गए जो कीटनाशी है जैसे नीम है, करंजीन है, तो इसका भी इस्तेमाल अगर किसान करेगा तो उसकी उपज भी कम होगी, उपज की जो आय होती है उसमें भी कम होगी, और जो अन्यथा जो हमारा जो उत्पाद आता है वो उत्पादन में भी जो कीटनाशकों के अवशेष है वो भी कम होते जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर विनोद, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमें बताया कि किस तरह से अगर पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो कई तरह की समस्याएं, कई तरह के रोग लग सकते हैं। ऐसे में एक किसान किस तरह से ये जाने, किस तरह से उन लक्षणों को पहचाने कि वो ये जान पाए कि पोषक तत्व की कमी हो रही है?
2: हाँ, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी बोला था कि आप स्प्रे करके भी जो लक्षण आ रहे हैं उसकी कमी के लक्षणों को देखते हुए स्प्रे कर सकते हैं
1: जी।
2: तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, यदि आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो उसके जो पत्ते हैं जो स्पेशली कुछ नई पत्तियां होती हैं, कुछ पुरानी पत्तियां होती हैं, जो पुरानी पत्तियां बीच में जो पत्तियां होंगी वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी
1: जी।
2: पर लेकिन वहीं नई पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाए तो वो आपकी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के द्वारा पुरानी पत्तियां और सल्फर की कमी के लक्षण के कारण नई पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस से क्या है कि जो पत्तियों का आकार है वो सिकुड़ जाता है, वो पूरी वृद्धि नहीं होती, और सबसे बड़ा जो पत्तियों का आकार जो है कुरूप टाइप का जो नॉर्मल साइज होना चाहिए पत्तियों का वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। उसके अलावा भी यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो पत्तों की पत्तियां कुछ बैंगनी और इस तरह कलर की हो जाती हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद में बैंगनी और इस तरह की कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। यदि पोटास की बात करते हैं तो पोटास की वजह से पत्तियां जलने लगेंगी, जो कि उसके किनारे वो जलने लगेंगे, और पत्तियों की टहनियां वो जो टिप्स होती है, टहनियों के टिप्स होते हैं वो सूखने लगी, तो ये आपको समझ जाना चाहिए पोटास की कमी है। ऐसे ही जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इन सब के अपने लक्षण हैं। जैसे मैग्नीज की कमी है तो पत्तियां का जो सिकुड़ने के साथ साथ गुच्छे टाइप में बन जाएंगे, तो समझ लेना कि ये मैग्नीज डेफिशिएंसी है। आयरन होगा, आयरन की कहीं डेफिशिएंसी होगी और उसकी कमी कहीं जो पत्तों पर नजर आएगी तो पूरी पत्ती पीली तो होगी पर लेकिन उसकी जो सिराएं, जो भीतर जो सिराएं होती हैं वो हरी होंगी, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस में।
0: किसान साथियों, ये कुछ लक्षण है जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि हमारी जो फसल है, हमारे जो पौधे हैं, उसमें कौन सी बीमारी आ चुकी है। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटियाबिल 90.8 FM के साथ, चौवा की आवाज।
5: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियाँ, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
7: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
5: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम जावा की आवाज। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है, इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्योहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।

0: कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। जिंदगी अनप्लग्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हर मोड़ पर एक नई कहानी और एक नई चुनौती के बाद नई रोशनी हमारा इंतजार करती है। आज हमारे साथ एक बहुत ही बहुमुखी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व मीना अय्यर जी जुड़ी हैं। बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, फिर म्यूजिक इंडस्ट्री की दो मशहूर कंपनीज HMV और मैग्ना साउंड में सफल करियर, जहां उन्होंने भारत के अनेक लेजेंडरी सिंगर्स, कंपोजर्स और लिरिसिस्ट्स के साथ काम किया। लेकिन उनका सफर यही नहीं रुकता। एक आध्यात्मिक मार्ग की साधिका, भगवद गीता की अध्यापिका, संस्कृत की लेखिका, गायिका और कैंसर जैसी कठिन परीक्षा को मुस्कुराते हुए जीतने वाली एक अद्भुत शक्ति का नाम है मीना अय्यर जी। उन्होंने आदि शंकराचार्य जी के शिव स्त्रोत पर एक अनमोल पुस्तक भी लिखी है जो उनकी गहरी आध्यात्मिक यात्रा का प्रमाण है। आज हम उनसे बात करेंगे उनके सफर, उनके गीत, उनकी आस्था और उनके जीवन के उन रंगों की जिन्होंने उन्हें और भी मजबूत बनाया है। तो मीना अय्यर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग के नए प्रोग्राम में। कैसा महसूस करें मैम आप?
1: बहुत अच्छा। SN रेडियो के सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे यहाँ आमंत्रित किया आपने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी मैम, मैं बहुत ही थ्रिल्ड हूँ आज के हमारे टेट अ टेट के लिए। और तो हम सामने नहीं है, आमने सामने नहीं है, बट इतनी हमारी बात हुई है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने ही हूँ। आई कैन एक्चुअली इमेजिन यू, आपकी लवली डीपीज और लवली सारीज और आपकी लवली बिंदीज से आई हैव ऑलरेडी मेड अ पिक्चर इन माई हेड कि ऐसे होगा हमारी बातचीत अगर हम आमने सामने होंगे तो। खैर, डिजिटल जमाना है तो थैंक्स टू SN रेडियो कि हम ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू बिकॉज आई रियली लव्ड योर प्रोफाइल। तो लेट्स डीप डाइव मैम। मेरा पहला सवाल आपके शुरुआती दिनों से है। जैसे आपने मुझे बताया था मैम कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने ट्राई किया था, आप मेडिकल स्टडीज में जाना चाहते थे एंड परहैप्स यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर। तो अगर वो नहीं होता तो आज जिंदगी कुछ और होती, कहानी कुछ और होती। तो आज जब आप मुड़ के देखते हैं उस मंजर को, उस डिसीजन को, उस डिटोर को लाइफ के, तो आपको कैसा लगता है और आपको क्या लगता है कि कभी कभी भगवान हमारे लिए सच में एक बेहतर स्क्रिप्ट तैयार करके रखता है हमारी चॉइसेस से ज्यादा बेहतर?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी पॉलिसी है जो ना मिले लाइफ में वो अपने लिए था ही नहीं, और जो बीत गया उस पे समय क्यों बर्बाद करें। आगे बढ़ते रहने से नए रास्ते भी खुल जाते हैं। हाँ, अगर मेडिकल में एडमिशन मिल गया होता, डॉक्टर बन गई होती, तो मेरी जो दुनिया है वो मरीजों तक सीमित हो जाती ना। लेकिन भगवान ने कुछ और सोच रखा था कि और लोगों को इनसे आनंद मिलना चाहिए। तो बेहतर जीवन की स्क्रिप्ट जरूर लिखते हैं वो। एक्चुअली सब कुछ वही करते हैं हम, तो सिर्फ उनके हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, संगीत में लुप्त रहती हूँ, बहुत मजा आता है जिंदगी में। तो ये अगर मैं मिस कर जाती अगर डॉक्टर बनती तो
2: बिल्कुल पूरी दुनिया आपसे लुप्त हो जाती रह जाती, आपके टैलेंट से, आपकी आवाज से और आपके इतने कलरफुल म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन से। तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी भगवान ने, आई एम वेरी हैप्पी कि मेडिकल में नहीं हुआ। ऑल्दो आई एम श्योर उस टाइम आपको क्या, उस टाइम आपको बुरा लगा था, कैसी फीलिंग्स थी वो, लाइक वो क्या था, वो क्या किस तरह से हुआ वो सब, थोड़ा सा अगर बताएं।
1: हाँ जी, वो ऐसा था कि मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में डॉक्टर थे।
2: वाओ।
1: तो बचपन से ना वो एक सपना पाल रखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है। एंड आई वॉज द ओनली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन द होल फैमिली आई मस्ट से। तो सबकी आशाएं भी बढ़ी थी।
2: होता है ना ऐसा।
1: फिर मैंने अच्छी से पढ़ाई भी की, नंबर भी मिले, सब कुछ हुआ। फिर क्या हुआ ये कहानी मैं फिर दोहरा रही हूँ। तो मैं गुजरात में रहती थी तब, बचपन पूरा मेरा गुजरात में बीता है अहमदाबाद में। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है वो इतनी रिकग्नाइज नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुंबई आके करना चाहिए, बेहतर है। तो मुंबई में मेरी मासी रहती थी, उन्होंने कहा हाँ मेरे पास आके रहो, वैसे भी यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मैं आ गई इधर, अप्लाई किया, सब हुआ। फिर उन्होंने जब रिजेक्ट कर दिया, और कारण भी ऐसा फालतू था कि आपका डोमिसाइल नहीं है महाराष्ट्र में, 10 साल अगर आप यहाँ रही होती तो आपको ये सीट हम दे देते, बताओ। मेरा तो मतलब दिल्ली टूट गया कि यू नो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई और सब पूरा नीचे कर दिया,
2: केम क्रैशिंग डाउन। बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन कोई रंज नहीं है, अभी तो जिंदगी बहुत अच्छी।
2: टच वुड एंड आई एम सो हैप्पी कि ये डिटॉल हुआ। और जैसे आपने कहा जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन की खूबसूरत कविता भी है, तो बहुत ही अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। उसके बाद आपने, खैर आप बने ब्रिलियंस के लिए थे, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जैसे मैंने हमारे इंट्रोडक्शन में भी बताया, और ब्रिलियंस आपको कहीं ना कहीं मिलनी थी लाइफ में। तो आपने HMV और मैग्ना साउंड जैसे अमेजिंग ब्रांड्स के साथ काम किया, और कुछ भारत के लेजेंडरी सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट, इन सबके साथ मुलाकात हुई, आपके काम हुए। तो इन सब यादों के बीच, उन रिकॉर्डिंग सेशंस के बीच, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मुलाकात जो बहुत स्पेशल हो और जिसने आपको कुछ लेसन भी दिया हो?
1: MS सुब्बलक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा।
2: जी जी बिल्कुल।
1: वो एक प्रातः स्मरणीय आवाज थी उनकी। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको जाके पर्सनली मिलूं और उन्हें अपना गाना भी सुनाऊं। तो बहुत दूर की सोच थी।
2: तो ड्रीम करना इटसेल्फ इज सो डेयरिंग, सच डेयरिंग।
1: चेन्नई। तो मेरी ननन जो है वो उसी एरिया में रहती हैं, और मेरे पास एड्रेस तो था ही कंपनी की वजह से। तो मैंने फोन किया कि क्या मैं आ सकती हूँ उनसे मिलने। तो उनके सेक्रेटरी का नाम था आत्मा। तो आत्मा जी बोले कि हाँ कल आप आ सकती हैं। तो मैं गई उस दिन, सैटरडे था मेरे ख्याल से। मैं गई तो थोड़ी पहले, फिर उन्होंने वापस, मैंने रिकन्फर्म किया फोन करके कि मैं आ रही हूँ, अभी आ सकती हूँ। तो फोन किसी लेडी की आवाज में हेलो हुआ। तो मैंने कहा मुझे सुब्बलक्ष्मी मामी से बात करनी है। तो बोली हाँ मैं सुब्बलक्ष्मी ही बोल रही हूँ। तो मेरे हाथ से तो फोन ही
2: गया। I'm sure. बापरे।
1: मैंने बोला नहीं, आपने मेरा नाम सुना है, मैंने करेस्पोंडेंस की है आपसे काफी, मैं HMV की मैं कार्य करती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि चेन्नई आई हुई हूँ। और आत्मा जी ने बोला कि मैं आज आ सकती हूँ। तो बोली हाँ हाँ जरूर आ जाओ, कोई बात नहीं, आप वेलकम। तो हम वहाँ गए और उनका घर ना जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कमरा जो था फर्स्ट फ्लोर पे
2: जी,
1: वो पूरा उनकी अवार्ड से भरा हुआ था, पूरा चारों दीवारें।
2: उफ,
1: मतलब मैं तो ऐसे ही स्तब्ध रह गए,
2: स्तब्ध रह गए. यस
1: यस, वाओ व्हाट एन अचीवमेंट,
2: व्हाट अ लाइफ ना.
1: या ऐसे लगता था उनके, मतलब वो कॉलम को छुओ ना तो लगता था कि वहां से भी संगीत आ रहा है, ऐसे लग रहा था मुझे.
2: क्या बात है, क्या बात है.
1: फिर हम नीचे आए तो सदाशिवम अंकल जो उनके हस्बैंड थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं इनके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ. तो बोले तस्वीर लेना है तो आपको कल लाना पड़ेगा.
2: बताइए, तो वो भी एक दौर था.
1: नहीं तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले नहीं, साउथ इंडियंस में ना हर हफ्ते पूरा मतलब तेल मालिश करके फिर स्नान करते हैं. तो फिर उन्होंने अपने सारे वो डायमंड कान के नाक के सब उतार के रखे थे. तो बोले उन्होंने पूरे ऑर्नामेंट्स पहने नहीं है और आज नहीं पहनेंगे. तो आप कल सुबह आइए 10 बजे और जितनी फोटो चाहिए ले लीजिए उनके साथ. तो मैंने बोला ठीक है. और मुश्किल क्या हुई पता है, मैं एक ही साड़ी ले गई
2: थी. बाप रे, ये तो वार्डरोब मैलफंक्शन हो गया.
1: फिर मैंने अपनी ननन को बोला कि भाई लेनी है साड़ी.

0: आई हूँ, तो बोले कुछ गा के सुनाओ।
1: ओ माय,
0: मेरी तो आवाज ही तो मैंने बोला मैं आपका ही गाया हुआ कुछ सुनाती हूँ, लेकिन प्लीज डोंट जज मी बाय व्हाट आई एम सिंगिंग नाउ
1: बिकॉज इट इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट आई एम डूइंग दिस। यस
0: हाँ, तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल डरे बिना गाओ, ये मत सोचो कि मैं सुब्बलक्ष्मी सामने बैठी हूँ, गाओ, समझो तुम्हारी माँ बैठी है। मैंने कहा वो तो और डरावनी है। बोली नहीं नहीं गाऊंगा कोई बात नहीं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो मैंने भज गोविंदम का एक स्टैंजा गाया, तो उन्होंने बोला वेरी नाइस, तुम्हारे दिल में डिवोशन बहुत है वो दिखता है, और उसको हमेशा बरकरार रखना, कभी भी संगीत जो है एक माध्यम है, भगवान का वरदान है, तो कभी छोड़ना नहीं, जब जितना गा सको गाते रहना तक, क्योंकि जो देन उसने दी है ना उसका हमको उपयोग भी करना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा तुमसे।
1: बिल्कुल,
0: मैंने कहा ये भी सही बात है। मैंने आई वॉज सो फ्लोड, यू नो, उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी सिंप्लिसिटी सब देख के मुझे लगा कि आप जितने बड़े होते हो ना उतना ही सरल रहना चाहिए। मैंने उनसे यही सीख मिली, मतलब कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लगा कि वो
1: हस्ती है,
0: बड़ी आर्टिस्ट है।
1: बाप रे, एंड उनके गोल्डन वर्ड्स, आई थिंक आपने उसको फॉलो किया टू द टी जो उन्होंने कहा आपको। जी, यू लिव्ड बाय इट, ब्यूटीफुल।
0: आई नो, इट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव रिसीव्ड इन लाइफ फ्रॉम एनीवन। या
1: आई एम श्योर मैम, हाउ ब्यूटीफुल, कितना अमेजिंग। और जिस तरह से आपने नरेट किया, मैं एक्चुअली इमेजिन कर सकती थी। और मैंने देखा है साउथ इंडियंस के घर में एक बहुत पेक्यूलियर सा फ्लेवर होता है, एक यू नो रजनीगंधा या जैस्मिन के फ्लावर्स की एक स्मेल होती है।
0: जी,
1: तो आई कैन एक्चुअली इमेजिन वो घर कैसा होगा और वो किस तरह का एक मंजर होगा। हाउ अमेजिंग, एंड एक्चुअली जितना इंसान बड़ा होता है उतना वो ग्राउंडेड होता है, और जो जेन्युइन टैलेंट्स होते हैं जिन पे सच में सरस्वती जी की कृपा होती है, वो दे आर बियॉन्ड वर्ड्स। एंड मतलब आई एम सो प्रिविलेज्ड कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले पा रही हूँ, बिकॉज यू हैड सच अ रिच लाइफ, माय गॉड, सच अ रिच लाइफ, रिच विद एक्सपीरियंसेस मोर देन एनीथिंग एल्स।
0: हाँ, लाइक आई सेड टू आरती द अदर डे, सीताओं से मिलती थी मैं।
1: आई वुड वॉन्ट यू टू जस्ट शेयर सम पिक्चर्स अगेन मैम, क्योंकि मैं चाहूंगी कि जब ये प्रोग्राम एयर हो जी, तो मैं वो सभी पिक्चर्स हमारे ग्रुप पे भी साझा करूं, ताकि लोग देखें कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ लीड की है ब्यूटिफुली। चलिए, इन्हीं अमेजिंग बातों के बीच, इन्हीं एक्साइटिंग बातों के बीच हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप ही की आवाज में। मेरा टॉप 10 फेवरेट सॉन्ग्स में से है, पता नहीं मेरे टॉप 10 की लिस्ट कितनी लंबी है, बट दिस इज लाइक अल्टीमेट सॉन्ग, लाइक प्यार का जो अल्टीमेट एक एपिटोम है वो मेरे लिए ये सॉन्ग है, खामोशी फिल्म का। जी जी जी, तो हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत, हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूके इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो, इन द वॉइस ऑफ मीना अय्यर मैम।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, और क्या बेहतरीन इसका रेंडिशन था आपकी आवाज में।
1: थैंक
0: आगे चलते हैं मैम, आपने
1: यू जी।
0: जितनी रिच लाइफ लीड की है उतने ही रिच आपकी जो लिंग्विस्टिक एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो लर्निंग है, आपको 10 से 12 भारतीय भाषाएं आती हैं, विच इज लाइक अमेजिंग। तो आपके हिसाब से भाषाओं को आना, उनका अलग अलग रूह में रहना, हर
1: हाँ
0: भाषा की एक रूह होती है, हर भाषा की एक पर्सनालिटी होती है, तो
1: जी
0: आपके लिए
1: बिल्कुल
0: कौन सी भाषा आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? और अगर आप इन भाषाओं को लिस्ट कर सकें कि कौन सी भाषाएं आपको आती हैं।
1: हाँ, सबका अलग लहजा है, अलग राग है, अलग तरीका है बात करने का, लेकिन सब में जितनी भी मुझे आती हैं उनमें से बंगला मेरी फेवरेट है। आई लव
0: मीठी।
1: बंगाली लैंग्वेज। ऑल्दो मैं साउथ इंडियन हूँ लेकिन मुझे बंगला बहुत पसंद है, और उसका कारण मैं नहीं जानती, बट मुझे
0: बस
1: पसंद
0: जी।
1: है। शायद बहुत मीठी भाषा है, और जब बोलते हैं तो भी उसमें उसका जो राग है वो मुझे बड़ा पसंद
0: यस, बहुत अच्छा। मुझे तो लगता है कि एवरीथिंग दैट इज बंगाली इज वेरी कल्चरल। आई आई जस्ट फील दैट,
1: जी।
0: जैसे एक वो बंगाली हो
1: हाँ
0: जाता है तो वो कल्चरली बहुत मेरे को अट्रैक्ट करती है वो चीज। जैसे आपने कहा
1: करेक्ट।
0: राग बहुत अच्छा है, विच इज ट्रू, कि जब भी
1: हाँ
0: किसी को बंगाली बोलते हुए सुनो तो वो कानों को इतना एक अलग सा
1: हाँ
0: फील देता है, यू
1: मतलब
0: वॉन्ट टू लर्न इट।
1: इवन हाँ इवन व्हेन दे आस्क यू हाउ आर यू कैन यू नॉट से माँ, तो
0: केमो नाचे, यस यस,
1: यू फील
0: टीका
1: सो
0: अच्छे बालो अच्छे, यस। आई वाज देयर इन कैलकटा
1: गुड।
0: फॉर 3-4 मंथ्स एंड आई फेल इन लव विद द
1: ओके
0: सिटी। यस यस, आई वाज देयर फॉर एन इंटर्नशिप बैक इन माय कॉलेज डेज,
1: ओके
0: तो मेरे को तो प्यार हो गया उस शहर से। पता नहीं लोगों को क्यों नहीं पसंद, बट मुझे तो आई लव्ड द
1: हाँ मुझे
0: सिटी।
1: भी बहुत अच्छा लगता है। या
0: ये
1: वहाँ का
0: कैसे सीख?
1: खाना, वहाँ
0: ओहो
1: की साड़ियाँ,
0: ओहो, खाना तो बाप रे, खाना इज लाइक
1: लाजवाब।
0: लाजवाब सच में। तो ये लैंग्वेजेस मैम आपका क्या लर्निंग का

0: बताओ, आई एम वेरी सॉरी, आई शुड हैव आस्क्ड यू. फिर वो ऐसे धुआं सा मुंह बना के ना उसने पूरा 5 किलो बोल दिया. So cute it was. I can never forget.
1: I know. वो भी 3 साल का बच्चा, imagine. हाँ. क्या grasping power.
0: आप सोचोगे भी नहीं कि इसको आता होगा है.
1: कभी आपने शायद पूछा नहीं. हाँ
0: हाँ
1: बताएं.
0: अमेजिंग. तो सही समय पर सही फैसला लेने से सब अच्छा ही होता है.
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है. आगे हम एक गाना सुनेंगे और गाने के बाद हम जरूर इस चीज की और चर्चा करेंगे कि कैसे आपने गीता का अध्ययन किया, और मैं आपसे कुछ सुनना भी चाहूंगी आपकी खूबसूरत आवाज में. अभी हम एक गाना सुनेंगे आप ही की आवाज में, आप ही की फरमाइश पे. ना ये चांद होगा ना तारे, फिल्म शर्ट.

0: चांद हो। बहुत ही खूबसूरत सिंगिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग।
1: थैंक यू।
0: आगे चलते हैं। जैसे कि आपने बताया कि भगवद गीता का आपने बहुत गहरा अध्ययन भी किया है और सालों से उसका ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर कोई एक श्लोक हो जो आज हमारे साथ आप साझा करना चाहें, जो एक ऐसा सिद्धांत शेयर करता है जो अगर आज की जनरेशन के साथ शेयर किया जाए, उनको उनको उस पर लिव बाय करने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा होगा और क्यों होगा? और अगर आप उसको थोड़ा सा गा के सुनाए हमें, जैसे आप अपने सेशन में सुनाते हैं। जी
1: हाँ हाँ, 12वां अध्याय जो है उसका नाम है भक्ति योग। ओके, और उसमें 20 ही श्लोक हैं, शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है वो।

लेकिन उसमें भक्ति का पूरा सार है हर एक वर्ष में। उसमें से एक श्लोक जो है मुझे बेहद पसंद है, 13वां श्लोक। दिस इज लाइक दिस,

0: ये भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि इन शॉर्ट इट मीन्स अद्वेष्टा, यानी किसी से कोई द्वेष मत रखो, डू नॉट हेट एनीवन। क्योंकि आजकल के बच्चे ना बिना किसी कारण बोलेंगे ओ आई हेट हिम, व्हाई डू यू हेट हिम, ये क्या बिगाड़ा तुम्हारा, नो बस आई हेट
1: हिम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिर मैत्रह यानी बी फ्रेंडली टू ऑल, एंड करुणा एवच यानी बी कंपैशनेट टू ऑल, दया भाव मन में रखना चाहिए।
1: ब्यूटिफुल।
0: फिर निर्मम निरा अहंकार, आइडेंटिफिकेशन विथ आई एंड माइंड, मैं और मेरा, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि आप तो कुछ हो ही नहीं, आपके थ्रू भगवान ही काम कर रहा है इस दुनिया में, है ना। तो आप अपने ऊपर कैसे ले सकते हो उसका जो क्रेडिट है। तो स्टे अवे फ्रॉम आई एंड माइंड, एंड सम दुख सुख यानी बी बैलेंस्ड इन जॉय एंड सोरो व्हेन दे कम, बिकॉज डोंट डांस इन एक्सटेसी व्हेन हैप्पीनेस कम, एंड डोंट ड्राउन इन सोरो व्हेन सोरो कम। दोनों में बैलेंस रहना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल टेम्पररी
1: एवरीथिंग।
0: हाँ, आज दुख आएगा तो कल सुख आएगा, आज सुख आया है तो कल दुख भी आ सकता है। एंड क्षमी, क्षमी यानी हर किसी को फॉरगिव करने की कैपेबिलिटी। क्योंकि मन में किसी के लिए लाइक या डिसलाइक नहीं पनपने देना चाहिए, और काइंडनेस और पेशेंस हर एक के साथ बरतना चाहिए। तो इसमें तो मतलब जीवन का सार ही है।
1: बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी, सब कुछ ही है इसमें। यस यस।
0: हाँ, तो आई लव दिस वर्ड।
1: यस, गागर में सागर हो गया ये तो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस पे जी जाएं तो क्या बात हो लाइफ में, इतना मुश्किल है।
0: एक भी इसमें से अपना लें तो बहुत है।
1: एक भी इस जीवन में एक भी अपना लें तो बिल्कुल। और आई थिंक क्षमा करना सीख लें तो बहुत सारी चीजें लाइट हो जाएंगी। खुद के लिए, खुद के लिए करना सीख लें और किसी के लिए नहीं तो।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: ब्यूटीफुल मैम, आगे चलते हैं। जीवन थोड़ा कठिन हुआ और आगे चले तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे दौर से आपको गुजरना पड़ा, और उस टाइम भी आपने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। मैंने आपको नोटिस किया है अभी आज के इंटरव्यू में भी, आप एक बहुत हसमुख पर्सनालिटी हैं। आप जल्दी हंस देते हैं, और मेरा ये मानना है जो लोग जल्दी हंस देते हैं वो दिल के बहुत साफ होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों पे हंसी आती है और बहुत स्माइलिंग होते हैं। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, ये क्या आपको लगता है कि गीता का जो आपका इतना अध्ययन है, अध्यापन है, उससे कहीं ना कहीं वो शक्ति आपने ड्रॉ करी इस समय में, और कैसा था ये दौर, इसके बारे में बताएं।
0: सबसे पहले तो मुझे मालूम था कि ये जानलेवा नहीं है, बस थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी।
1: क्या बात है मैम, थोड़ा दर्द, क्या बात है, क्या टेक है ये, वाओ अमेजिंग।
0: और फैक्ट है ना, लाइफ तो इंटैक्ट ही रहेगी,
1: बट कौन देखता है इसको ऐसे।
0: कीमोथेरेपी, हाँ, और फिर मेरे गुरुओं के आशीष से और मेरे महादेव की कृपा से मैं डटी रही चिकित्सा के दौरान। वो मेरे लिए किसी कवच से कम नहीं था, क्योंकि जब सर्जरी के पहले वो एनेस्थेटिस्ट आए तो मैंने उनको कहा यू कैन गिव द इंजेक्शन आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट, आई वुड लाइक टू मेडिटेट। ही सेड प्लीज मैम गो अहेड। तो वो है महादेव का जाप किया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो मुझे पता भी नहीं चला फिर उसने कब इंजेक्शन दिया और कब महादेव ने अपने हाथ में ले ली रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर मुझे किस बात का डर था मैं तो,
1: क्या बात है।
0: फिर बहुत कीमोथेरेपी के टाइम जो है कोविड शुरू हो गया उसी दौरान। तो हाँ, हर महीने हॉस्पिटल जाना, जाने से पहले आने के बाद टेस्ट करते थे, पता है।
1: मतलब हद हो गई, ट्राइंग टाइम्स की भी हद होती है।
0: तो फिर बहुत गाना गाया, बहुत सारे गाने सुने, क्योंकि रात रात भर नींद नहीं आती थी, तो क्या करें, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, अब कोई और हमारे लिए क्यों जागरण करे, तो मैं बस गाने सुनती रहती थी। जैसे बच्चों के साथ हम करते हैं ना, जब कोई बच्चा किसी बात से उदास हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका ध्यान कहीं और खींच लेते हैं ना। हाँ, फिर वो उदासी भूल जाता है। बस मैंने भी वही किया।
1: Oh man. Oh God, I want to give you a big hug right now. I wish I was there. I would have just hugged you tight. Yes. You're so enduring.
0: ऐसे ही निकल गए। फिर पूरी भागवतम पढ़ी, सिखाई,
1: बापरे.
0: कृष्ण कृष्ण लीला के जो सेलिब्रेशन होते हैं वो सब बच्चों से करवाए। बहुत मजा किया कैंसर के टाइम में भी।
1: मैम अमेजिंग अमेजिंग, व्हाट अ स्पिरिट. आई थिंक कहीं ना कहीं वो आर्मी स्पिरिट भी आप में झलकती है, दैट रेजिलियंस.
0: हाँ या
1: इम्पेकेबल, अमेजिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैम. बहुत सारे लोग जिनने सुना
0: श्योर।
1: होगा, आई एम श्योर उनको एक बहुत ही फ्रेश टेक मिला होगा कि
0: हाँ
1: ब्रेस्ट
0: नहीं, सब
1: कैंसर.
0: कैंसर पेशेंट्स को मैं बताऊंगी कि डरना नहीं, क्योंकि डरोगे तो फिर मार खाओगे। बिल्कुल बिंदास होके चल पड़ना है, ठीक हो जाता है।
1: क्या बात है, सुन रहे हैं सब लोग. इस तरह की स्पिरिट अपने अंदर जगाएं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जो रूट ऑफ द ऑल द स्ट्रेंथ इज दैट, कि इतना आपने सरेंडर की पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि कुछ भी आए ये श्योर है कि भगवान विल कैरी यू थ्रू. और सरेंडर करें उस समय में और आगे बढ़ें. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, नरेटेड एंड लिव्ड मोर देन एनीथिंग एल्स. तो इसी बात पे, इसी जज्बात पे हम सुनेंगे एक और आप ही की फरमाइश पे गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत आप ही की आवाज में. रहे ना रहे हम, फिल्म ममता.

0: बेहतरीन गीत और बेहतरीन आवाज, और ये गाना शायद लिखा ही आपकी पर्सनालिटी के लिए लिख गया है। बहुत ही सूटिंग सॉन्ग है ये आपको, ब्यूटीफुल।
1: जी
0: आगे
1: मेरी
0: चलते हैं।
1: पसंद
0: जी बहुत बहुत खूबसूरत। आप सिंगर भी हैं, टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं, जिसके बारे में हम और बात करेंगे। मैं चाहूंगी आप अपनी बुक के बारे में कुछ बताएं हमें, और एक स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं। तो अगर ये बहुत ही फिलोसफिकल सा क्वेश्चन है, अगर इन सभी पहचानों को किसी एक सुर में
1: है।
0: पिरोया जाए तो वो किस भाव का सुर होगा? प्रेम होगा, सेवा होगी, भक्ति होगी या आनंद होगा?
1: ये सब एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, कि जब दिल में प्रेम हो तभी हम सेवा कर सकते हैं किसी की। कि चाहत ही ना हो तो आप क्या सेवा करेंगे, है ना। और प्रेम पूर्वक सेवा करने से मन में आनंद उत्पन्न होता है। फिर आनंद के अनुभव से भक्ति जन्म लेती है। तो प्रेम से शुरू करके भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। नारद जी ने एक नारद भक्ति सूत्र, एक टेक्स्ट है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, उसमें उन्होंने कोई 84 सूत्र दिए हैं भक्ति को कैसे बड़ा करें। तो उसमें एक सूत्र कहती है कि भक्ति परम प्रेम रूपा है। तो प्रेम से शुरू करते हैं भक्ति तक पहुंचने के लिए।
0: वाओ, ब्यूटीफुल
1: या
0: ब्यूटीफुल। और ये अगर आप बता सकें अपनी बुक के बारे में कि ये किस तरह से आपको, मतलब आपके जहन में कैसे ये ख्याल आया कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए, किस चीज पे
1: जी।
0: किताब लिखनी चाहिए, कैसे ये राइटिंग की जर्नी कैसी थी आपकी मैम?
1: ये ना तो मेरी जीवनी है ना कोई एक विचार है जिसको मैंने एक किताब में बदल दिया। ये आदि शंकराचार्य की एक कविता है जिसमें 100 श्लोक हैं, जिसका नाम है शिवानंद लहरी। जैसे माता जी का है सौंदर्य लहरी, वैसे शिव जी का है शिवानंद लहरी। दोनों उन्हीं ने लिखी है। तो वो क्या है कि हम लोग सब रिसाइट तो कर देते हैं, है ना, संस्कृत पढ़ना आती है तो सब बोल देते हैं। मेरी माँ भी रोज उसको रिसाइट करती थी। तो उसका उसकी एक किताब में, मतलब 2 लाइनों में एक ब्रीफ सा मीनिंग दिया हुआ था। तो मैंने एक बार एक सोचा कि मैं क्लास में इस पे रिफ्लेक्ट करती हूँ। तो जैसे जैसे वर्स बाय वर्स मैंने एक्सप्लेन किया तो मुझे लगा कि इसको किताब के फॉर्म में रखें तो लोग पढ़ के समझेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे और उनको याद भी रहेगा कि इस श्लोक का क्या मतलब है। बस ऐसे ही लिखते लिखते हो गया, वो भी कैंसर के दौरान ही।
0: वाओ, कैंसर वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मैम, सच में। मतलब भगवान ने आपके, यस यस, आपकी गोदी में ये अपॉर्चुनिटी जैसे दिया कि ले बच्चे ये अपॉर्चुनिटी और अपने आप को और क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर। खूबसूरत मैम, खूबसूरत। आई विश
1: ऐसी
0: 1%
1: फुर्सत और
0: भी
1: कभी
0: मिले कि
1: और इतनी
0: नहीं।
1: फुर्सत। हाँ वही
0: बताइए, ब्यूटीफुल।
1: तो आई यूटिलाइज द होल टाइम।
0: 1% ऑफ दिस रेजिलियंस भी आज अगर डाउनलोड हो जाए हमारे श्रोताओं के अंदर तो आई थिंक जीवन सुधर जाएगा। बहुत ही खूबसूरत।
1: ले लो जितनी चाहिए।
0: जी। आगे चलते हैं मैम, आज का हमारा आखिरी
1: हाँ
0: सवाल, जिंदगी अनप्लग्ड का ये बहुत ही खास सवाल है। मान लीजिए क्योंकि आप शिव भक्त हैं, तो अगर शिव जी और आदि शंकराचार्य जी आपके सामने बैठकर आपसे पूछें कि मीना तुम्हें अपनी जिंदगी से में क्या सीखा, क्या वो सीख है जो तुमने ली, तो आप उन्हें एक वाक्य में क्या जवाब देंगी?
1: वाओ, आई विश इट वुड रियली हैपन,
0: इट
1: एटलीस्ट इन माय
0: विल, ट्रस्ट
1: ड्रीम।
0: मी, विथ योर लाइफ पैटर्न आई एम श्योर इट विल हैपन, आई एम श्योर।
1: अच्छा, एक वाक्य में कहना तो मुश्किल है, 4 वाक्य में बोलती हूँ।
0: परफेक्ट।
1: पहली बात तो खुशी आए या गम आए, हंस कर झेलना चाहिए क्योंकि दोनों पल भर के लिए आती हैं। दूसरी बात, अपना हर काम ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए, इससे हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे, फिर वो देख लेगा क्या करना। तीसरी बात, जीवन में जो मिला है, जितना मिला है, उसका शुक्र मानना चाहिए।
0: चौथी
1: बात है हर पल ईश्वर को याद करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात माता पिता गुरु के हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि हमको आज जो भी आता है जैसे भी हम हैं सब उन्हीं की देन है, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल।
1: और एक सेंटेंस में अगर मैसेज दूं तो लिव इन ग्रेटिट्यूड, इट इज द बेस्ट एटीट्यूड यू कैन हैव।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। और अगर हम सीख जाएं इस एक लाइफ टाइम में ये बात, तो आई एम श्योर बहुतों की जीवन सुधर जाए। बट यही है ना, पूरा जीवन लग जाता है ये सीखने में। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब आज का जो बातचीत थी वो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि मैं आपको पता नहीं कितने समय से जानती हूँ, बस हम कनेक्ट आज हुए हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बहुत मजा आया मैम, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ ऐसे रेडियो पे कनेक्ट करने के लिए।
1: आई एम मोर देन थैंकफुल। पता है आपके नाम का मतलब क्या है, तनुषा?
0: जी जी जी बताए, मतलब जो मुझे बताया गया वो तो मैं बता देती हूँ, ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड, सॉरी ग्रेसफुल एंड ब्लेस्ड।
1: तनुषा यानी जो गुड फॉर्चून लेके आए, वन हु ब्रिंग्स गुड फॉर्चून।
0: ओ वाओ, मेरी लाइफ का कहाँ है?
1: तो मेरे लिए थोड़ा फॉर्चून भेज दे भाई।
0: अरे मैम मेरी लाइफ का कहाँ है?
1: दूसरा मीनिंग है डिवाइन गिफ्ट थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। आई थरली एंजॉयड टॉकिंग टू यू एंड माई नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स ऑल्सो।
0: थैंक
1: यू, वी मीट अगेन,
0: अंटिल वी मीट अगेन एंड वेरी सून वी शैल मीट। I cannot wait for another conversation with you. It was beautiful. It was thrilling, truly. And मैं चाहूंगी कि मैं एक अंश आपके जीवन का, आपकी पर्सनालिटी का अपने अंदर जरूर शामिल करूं और धारण करूं। थैंक यू मैम,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू,
1: गॉड ब्लेस, थैंक
2: यू। मीना जी से आज की बातचीत में हमें ये एहसास हुआ कि जीवन की असली सफलता सिर्फ करियर या उपलब्धियों से नहीं होती, बल्कि उस शांति से मापी जाती है जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं, बहुत भीतर। मीना जी ने हमें ये दिखाया और ये सिखाया कि संगीत, ज्ञान, आस्था और सेवा जब एक साथ चल पड़ते हैं तो जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती बल्कि एक प्रेरणा बन जाती है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं मीना अय्यर जी का कि उन्होंने अपनी अनमोल जीवन यात्रा हम सभी के साथ साझा की। दोस्तों मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान और एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जिंदगी हमें हमेशा वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो देती है जो हमें सच में बनना होता है। नमस्कार।

0: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
1: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट अलार्म का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है। यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बने।
2: Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no peasant craze.
3: दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेरणा, मोटिवेशन इतना जरूरी क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि हमें जिंदगी बेहद खूबसूरत तरीके से हंसते खेलते गुजारनी है, रोते धोते नहीं। तो आइए दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं हंसते खेलते हुए प्रेरणादायक गीतों के साथ और करते हैं प्रेरणादायक बातें।
2: Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
3: आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आजाद भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है अन्ना राजम जॉर्ज। वो भी लाजवाब जमाना था, देश आजाद हो गया था, तब तोला भर सोने की अंगूठी के लिए करीब 100 रुपए लग जाते थे और आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए 140 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ता था। 20 की हो चुकी ये मलयाली युवती क्लर्क की नौकरी करती थी और तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परीक्षा का फॉर्म भर सके। वो सोचती थी कि स्नातक करने के बावजूद क्या वो सिर्फ क्लर्क बनकर रह जाएगी? नए आजाद हुए देश में सबसे बड़ी नौकरी के लिए प्रयास में भला क्या हर्ज है? एक बार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर देखें ना कुछ होगा तो तजुर्बा तो होगा। आगे बढ़ने का इरादा पक्का था तो कदम कदम पर चुनौतियों से टकराना भी तय था। एक दोस्त की मम्मी ने फार्म भरने के पैसे दे दिए। युवती ने पहली ही बार में कामयाबी हासिल कर ली। साक्षात्कार का मौका आया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने का उन्होंने इरादा जताया। साक्षात्कार लेने बैठे आयोग के प्रमुख ने हतोत्साहित किया, युवती हो भारतीय प्रशासनिक सेवा में मुश्किल होगी, विदेश सेवा या केंद्रीय सेवाओं में से कुछ चुन लो। पर वो अड़ गई, प्रशासनिक सेवा में ही जाना है। आयोग के सभी सदस्य अचंभित थे कि बुरे से बुरे हालात देखने पड़ते हैं, कड़े से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, किसी लड़की से ये सब हो सकेगा? भला हो महान संविधान निर्माताओं का जिन्होंने देश में कानून बना दिया था कि रोजगार में लड़का लड़की के बीच भेद नहीं किया जाएगा। लड़की अड़ गई, तभी वो देश की पहली आईएएस ऑफिसर बनी और पहुंच गई अपने कैडर प्रदेश तमिलनाडु। वहां मिल गए दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री सी रामगोपालाचारी। आईएएस रूप में युवती को देखकर चौंक गए, ये कैसे, सब कलेक्टर कलेक्टर बनेगी फिर फील्ड ड्यूटी में जाएगी। उन्होंने समझाया कि सचिवालय में कोई काम संभाल लो, जिला जाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर यहां भी वो युवती अड़ग रही, नहीं मुझे आप किसी जिले में ही भेजिए, कृपया भेदभाव नहीं कीजिए। खैर रामगोपालाचारी ने भी उन्हें अपने ही जिले होसूर में सब कलेक्टर तैनात कर दिया। लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि एक महिला सब कलेक्टर कैसे। उन दिनों कलेक्टर को अक्सर लाठीचार्ज या गोली चलाने का फैसला लेना पड़ता था, पता नहीं एक महिला ऐसे फैसले कैसे लेगी। ऐसे में खुद को साबित करना जरूरी था और मौके की तलाश थी। मौका जल्दी ही सामने आ गया। एक सुबह बंगले के बाहर शोर मच गया, बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। सब कलेक्टर साहिबा जल्दी जल्दी नहाकर निकली। छह हाथियों के एक समूह ने गांव पर हमला बोल दिया था, भगाए नहीं भाग रहे थे वो। ग्रामीणों को जब कुछ न सूझा तो मदद के लिए सब कलेक्टर के यहां पहुंच गए, पर सामने एक महिला को देखकर बड़े निराश हुए। ये कैसे फैसला लेगी, कैसे समाधान करेगी। पल भर के लिए सब कलेक्टर भी स्तब्ध रह गई, पर कुछ ही पल में उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे मौकों पर जानवरों को मार गिराने का आदेश उन दिनों बहुत आम हुआ करता था। अचानक दिमाग में सूझा कि अगर शोर किया जाए तो हाथी भाग सकते हैं। आदेश दिया कि जिसे जो मिले जोर जोर से बजाओ। सब लोग मिलकर शोर करने लगे। ग्रामीणों ने टीन बर्तन लेकर शोर करना शुरू कर दिया, वो भी ग्रामीणों के साथ शामिल हो गई। हाथियों के दल का मुखिया शोर सुनकर दूर चल पड़ा। लोग खुश हुए तो जोश और बढ़ गया। फिर क्या था, वे हाथियों को जंगल तक छोड़कर आए। हाथियों की जान भी बच गई और ग्रामीणों की समस्या का समाधान भी हो गया। तब तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के साथ खुशी की लहर दौड़ गई कि एक कलेक्टर आई हैं, अन्ना राजम जॉर्ज। सबने माना कि महिलाएं भी कलेक्टर के रूप में कारगर हो सकती हैं। महिलाओं की राह में रोड़े बिछाने वाले तमाम पुरुषवादी अफसरों को भी एहसास हो गया कि आईएएस के रूप में महिलाओं की पदस्थापना गलत नहीं होगी। अन्ना को चेन्नई से नई दिल्ली तक प्रशासनिक सेवा में खूब मौके मिले और उन्होंने कभी निराश नहीं किया। अब हर साल दसियों युवतों के चयन आईएएस के लिए होते हैं और अन्ना राजम जॉर्ज की याद अचानक ही आ जाती है। भूलना नहीं चाहिए कि अपने देश में एक समय वो भी था जब अन्ना राजम जॉर्ज की सेवा शर्तों में ये शामिल था कि अगर वो विवाह कर लेंगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी नौबत नहीं आई। अन्ना ने जल्द ही खुद को काबिल साबित कर दिया और अविवाहित रहने की शर्त हमेशा के लिए इतिहास हो गई।

एक बार एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक आदमी जो कि दरअसल भिखारी था वो आता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए खिसक जाता था। एक दिन जब वो खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि ये भाई जी भीड़ का लाभ उठाएगा और देखिएगा बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। हमेशा की तरह भाई ने इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप खिसक गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताइए तो सही कि आपने इस व्यक्ति को भला जाने क्यों दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने देखा है उसे और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठा रहता है और जब ये देखता है कि भीड़ हो गई तो वो चुपके से खाना खाने आता है और खा के निकल जाता है। मैंने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं है, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इसी भाई की वजह से है। कैसे? देखिए, वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना ही करता रहता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो तो मैं भी जल्दी से अंदर जाकर कुछ खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा यहां भीड़ ही होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसी की प्रार्थना का असर है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हों।

दुनिया की क्या हालत है। दोस्तों, अगर आप अपनी नजर खबरों पर ले जाएंगे तो आपको हर जगह गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, विफल होती हुई कंपनियां और आपदाएं ही नजर आएंगी। इससे ये सोच लेना कि दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है बड़ा आसान है। हालांकि सफल लोग इन सब की चिंता नहीं करते, क्योंकि वो उन सब चीजों में खुद को नहीं उलझाते जिन पर उनका बस ही नहीं चलता। इसके बजाय वो हर दिन का इस्तेमाल आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने और अपनी कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीजों पर ध्यान ही ना दीजिए जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बने रहिए आरजे समीर के साथ। दोस्तों, प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि प्रेम की भाषा गूंगे भी बोल लेते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: घर वाले मुझे सुबह सुबह रोज ऐसे उठाते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, मैं एक अकेला सैनिक बचाऊं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं, लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ, तब तक ये गीत सुनिए।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र होता है दोस्तों, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं।

0: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata. Ain't no peasant craze.
2: दोस्तों, आज के इस हंसी खुशी के प्रेरणादायक प्रोग्राम में बस इतना ही। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। कल फिर मिलता हूँ।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ।
1: दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत,

चांचुराने आए चमचा चिलमचा कोर चिरैया चूचू चूचर राय भैया चूचू का मुरब्बा भैया चूचू का मुरब्बा टकला टकलू टाक टवोरी तकिया टपकी जाए।

सुने सरसाए सांप सुने सरसाए साए साए सुरमा सा सा संग समाए समय सबक समझाए खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे से

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी माँ तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रही।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाता, दर्द मीठा है मगर रहा नहीं जाता। मोहब्बत हो गई है इस कदर आपसे, बिना याद किए रहा ही नहीं जाता। किसी ने पूछा, सफर मायने रखता है या मंजिल? मैंने कहा साथ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोज और रेडियो टांडिया भील पर मैं हूं आपकी अपनी ही दोस्त आरती रॉय और आप सुन रहे हैं हमारा सबका प्यारा सा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। जी हाँ दोस्तों, आपका साथ ही तो है जो मुझे हर वक्त तहरीक देता है, यानी इंस्पायर करता है, हौसला अफजाई करता है, और इसी हौसले के साथ मैं हर बार लेकर आती हूँ आप सभी के लिए जज्बातों का एक अनोखा सफर। दोस्तों, अल्फाज तो एक जरिया हैं, असली मकसद तो उन छुपे हुए एहसासों को आपके दिलों तक पहुँचाना है। कभी थोड़ी सी खुशी, कभी हल्की सी नमी, तो कभी ढेर सारी यादें। आज इस सफ़र में सब कुछ शामिल होगा। हम बातें करेंगे, कुछ नज़में और कुछ गज़लें सुनेंगे और दिलों की दास्तान को लफ्ज़ों में पिरोएंगे। तो फिर क्या, अपने दिलों की धड़कनों की रफ्तार को थोड़ा सा थाम लीजिए और तैयार हो जाइए जज्बातों की इस हसीन लहर में डूबने के लिए। आइए मिलकर शुरू करते हैं ख्यालों का ये खूबसूरत सा कारवां, सिर्फ और सिर्फ आपकी ही दोस्त आरती के साथ अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आज आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मशहूर गज़ल, जो ओरिजिनली तो मेहदी हसन साहब ने गाई है, लेकिन देखते ढूंढते ये वर्जन सामने आ गया, तो ज़रा देर ठिठक कर रुक कर बजा के देखा तो फिर वहीं रुक गई। एक लाइन, दो लाइन, और फिर वो चलती ही रही। और मैं यही सोच रही थी कि मेरे प्रोग्राम की शुरुआत में अब यही बजेगी। गज़ल का

मिसरा कुछ यूं है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, तुम्हारी खामोशी में मेरी सदा है, हर एक सांस में तेरी आहट छुपी है। तुम्हें जो लगा था कि सब खत्म हो गया, वहीं से कहानी हमारी शुरू है। जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। दोस्तों गौर फरमाइए, कह रहे हैं जो पल तुमने ठुकरा दिए बेरुखी में, वही पल तुम्हें रात भर जाग देंगे। जगा के नहीं रखेंगे, जाग देंगे। तुम्हारी नजरों से चाहे उतर जाऊं, मगर दिल से तुम गिरा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। ये बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, काइंड ऑफ फ्यूजन म्यूजिक। तो आप भी सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्यूजन वर्जन।

दोस्तों, जज्बातों के इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ साल 1953 की एक ऐसी शाहकार फिल्म की तरफ जिसने जबान और अदाकारी के मायने ही बदल दिए। मैं बात कर रही हूँ फिल्म फुटपाथ की। जब फुटपाथ का जिक्र है तो जाहिर है भला दिलीप कुमार साहब की उस खामोश, गहरी और शानदार अदाकारी को कोई भूल सकता है भला। इस फिल्म में उनके साथ मोहतरमा मीना कुमारी जी भी थी, लेकिन इस फिल्म की रूह थी वो नज़्म जो आज भी अकेलेपन में गुनगुनाई जाती है। मजरू सुल्तानपुरी और अली सरदार जाफरी के लिखे उन लफ्ज़ों को जब मौसिकार खयाम साहब ने धुनों में पिरोया तो उन्हें बयां करने के लिए आवाज किसकी चुनी गई? तलत महमूद साहब की। तलत साहब की आवाज का वो रेशम जैसा दर्द और उनका वो खामोश ठहरापन जब पर्दे पर दिलीप साहब के चेहरे के गम से मिलता है तो लगता है वक्त कहीं रुक गया हो, गम जदा हो गया हो। जैसे गजल का मिसरा है, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, अब तो आ जा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई, ढूंढती है नजर तो कहाँ है मगर, देखते देखते आया आंखों में दम। तो आइए दिल को थोड़ा गमगीन होने देते हैं। और इसमें मैं एक बात और शामिल करना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे याद आया कि ये गज़ल मेरे दिल के इसलिए भी बहुत करीब है क्योंकि इसको मेरे मरहूम बड़े भाई बहुत सुर और सोज के साथ गाते थे। उनका नाम कुंदन लाल था, सहगल नहीं, और ये उनकी ऑल टाइम फेवरेट हुआ करती थी। ये गज़ल मैं आज उनकी याद को डेडिकेट कर रही हूँ, मेरे बड़े भाई जिनको मैं प्यार से चिया बुलाया करती।

दोस्तों, जज्बातों का ये सफ़र अब एक ऐसे मकाम पर आ गया है जहाँ सुरों के शहंशाह की रूहानी आवाज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। जब भी सच्ची मोहब्बत और वफा की बात होती है तो दिल खुद ब खुद इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। साल 1960 की शानदार तारीखी फिल्म बाबर का एक ऐसा नगमा जिसे बेमिसाल शायर साहिर लुधियानवी साहब ने अपने खूने दिल से लिखा और मौसिकार रोशन साहब ने एक बहुत संजीदा धुन में पिरोया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संगीत के मसीहा मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सजी इस पुरसोज गज़ल की। पर्दे पर अदाकार थे सोहन कपिला और अदाकारा अजरा के बीच के उस पाक इश्क को रफ़ी साहब की आवाज़ ने तारीखी कर दिया। इस गज़ल की खासियत ही यही है कि जब रफ़ी साहब अपनी मखमली मगर कशिश से भरी अल्फाज में वहशत और खुलूस जैसे अल्फाज को पुकारते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए रफ़ी साहब की पाक साफ आवाज़ के साथ मोहब्बत की उस गहराई को नापते हैं। गज़ल का मिसरा कुछ यूँ है। सलाम शौक पे रंजिश भरा बयाम न दो, सलाम शौक पे रंजिश भरा बयाम न दो, मेरे खुलूस को फिर सो हवस का नाम न दो, मेरी वफा की अकीदत का इम्तहान तो लो। फिर कहते हैं, न तख्त ताज न लालो जहर की हसरत है। फिर कहते हैं, मैं अपनी जान भी दे दूं तो एतबार नहीं कि तुमसे बढ़ के मुझे जिंदगी से प्यार नहीं, यूं ही कहीं मेरी चाहत का इम्तहान तो लो, तुम एक बार मेरी मोहब्बत का इम्तहान तो लो। मोहम्मद रफ़ी साहब, आपकी नज़र।

दोस्तों, हमारी अगली पेशकश को मशहूर एल्बम जो कि गुलाम अली साहब और आशा ताई ने बनाई थी, जिसका नाम है मेराज़े गज़ल, उसमें से लिया गया है। जब गुलाम अली साहब इसकी धुन बना रहे थे तो उन्होंने जानबूझकर इसमें पूर्वी और अवधी लोक रंग डाला, जिसमें कागा और पवन यानी हवा जैसे खालिस देसी और मकबूल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त आशा ताई थोड़ा हिचकिचाई कि एक संजीदा गजल एल्बम में कागा और पवन जैसे अल्फाज कैसे लगेंगे। तब गुलाम अली साहब ने उन्हें समझाया कि नासिर काजमी साहब ने इन अल्फाजों के जरिए जुदाई के दर्द को बहुत सादगी से पेश किया है। जब आशा ताई ने सावन की मल्हार के साथ इस गजल की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्टूडियो का माहौल बहुत भावुक हो गया। गजल के खत्म होने पर सब म्यूजिशियंस की आंखों में आंसू थे। इसे मेराज़े गज़ल एल्बम की सबसे भीगी गज़ल कहा जाता है। जब आशा ताई अपनी मखमली आवाज़ में सावन के इस दर्द को पुकारती हैं तो गुजरा जमाना आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। सुनिए इस खूबसूरत मिसरे को। फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। और फिर मक्ता अर्ज किया है, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा, जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए। लीजिए आशा ताई और गुलाम अली साहब की आवाज में, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की बाजे बजी तुम याद आए। शौक फरमाए।

दोस्तों, आज के इस बेहद खूबसूरत सफ़र को मुकम्मल करने के लिए अब मैं आपको मौसीकी की और अदब के उस मकाम पर लेकर आई हूँ जहाँ लफ्ज़ खुद तारीख बन जाते हैं। जब हम सुनते हैं ये मिसरा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो हमारा जहन सीधे कभी कभी फिल्म और अमिताभ बच्चन की तरफ चला जाता है, या मुकेश साहब की आवाज की तरफ चला जाता है। लेकिन आज अल्फाज से एहसास तक की इस आखिरी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अजीम शायर साहिर लुधियानवी साहब की वो मुकम्मल और असली नज्म जो उन्होंने अपनी मशहूर किताब तलखियां में लिखी थी। इसी नज्म के को जब आप सुनेंगे तब भी आपको इसमें सुनाई देगा कि साहिर साहब जब वो 18-19 साल के थे तो उन्होंने एक पंजाबी लड़की से उनसियत हो गई थी, यानी लगाव हो गया था, जो कि उस वक्त की लाइलाज बीमारी तपेदिक की शिकार होकर गुजर गई। तो साहिर साहब को उसका आखिरी दीदार भी वो नहीं कर सके, मरघट में अंदर जा नहीं पाए, तो उस तड़प का बयान उन्होंने कुछ यूं किया था। ये एक बेहद लंबी, गहरी और फिलोसफिकल नज्म है जिसे राजेश सिंह ने अपनी बेहद रूहानी आवाज़ में बिना किसी फिल्मी तामझाम के उसके असल और मुकम्मल रूप में गाया है। साहिर साहब ने जब ये नज्म लिखी थी तो इसका मिजाज सिर्फ रुमानी नहीं था, बल्कि इसमें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों और समाज के तर्क दौर का भी जिक्र था। फिल्म में तो सिर्फ मोहब्बत वाले हिस्से को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से लिया गया था, लेकिन असली नज्म में साहिर साहब लिखते हैं कि इस दुनिया में भूख, गरीबी और बेबसी इतनी ज़्यादा है कि इंसान सिर्फ मोहब्बत के सहारे नहीं जी सकता। राजेश सिंह ने इसे खालिस और मुकम्मल अदबी रूप से ही इसको अपनी आवाज़ दी है। ज़रा तल्ख मिसरा गौर फरमाएं। कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, कौसर में वो धुली हुई बाहें भी जल गई, जो देखती मुझे वो निगाहें भी जल गई, अंबर से रिश्ते गेसुए शब्दू भी जल गए, वो दीदा हाय मस्तो पुरफसूम भी जल गए, मासूम कह कहूं का तरन्नुम भी मिट गया, झेपी हुई नजर का तबस्सुम भी मिट गया, ये दोपहर की धूप ये वीरान आसमां, तू ही बता कि अब मैं पुकारूं किसे कहां। दोस्तों, आपने इस नज्म का ये वर्जन शायद पहले ना सुना हो, पर आप जब आप इसे सुनेंगे तो सुनकर हैरान भी हो जाएंगे और आंखें नम भी हो जाएंगी। तो आइए सुनते हैं

मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा हम तेरी जुस्तजू। गुजर रही है कुछ इस तरह ये जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू है। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं हयात मौत के पुरहौल खार जारों से। न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, न कोई ज़्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफर मगर ही हुई कभी कभी मेरे

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि वह खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक नवीनतम जानकारियों को खेती बाड़ी से जुड़ी

0: तो कहीं ना कहीं आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि आज का जो हमारा उपभोक्ता है वह कहीं ना कहीं जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि से उपजाए हुए उत्पादों को लेना पसंद कर रहा है। किसान साथियों, बदलते इस पर्यावरण में हमें कहीं ना कहीं हमारी कृषि में भी बदलाव की आवश्यकता है। जहां पर हम देख रहे हैं अभी प्राकृतिक कृषि और जैविक कृषि कहीं ना कहीं उभर कर बाहर आई है, तो किसान साथियों यहां पर जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि करके अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, हमारे जीवन में फलों का अहम स्थान है क्योंकि ये न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हमारे पोषण का भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा फलों के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, लिहाजा जो किसान है उनकी आमदनी का भी ये अहम स्रोत है। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस की। इसका क्या उद्देश्य है, फलों के उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, इसके साथ ही फल उत्पादन के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन तमाम विषयों पर आज हम विचर्चा करेंगे।
0: किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर फलों से जुड़ी हुई इस रिपोर्ट पर।

0: हर साल 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाया जाता है। फलों और सब्जियों की अहमियत को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत फल उत्पादन में नंबर 2 पर आता है। विश्व में चीन के बाद फल उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल फल उत्पादन का 12.8% उत्पादन भारत में ही होता है। साल 2019-20 में 102.1 मिलियन टन फलों का उत्पादन हुआ था। फलों के उत्पादन के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि खाद्यान्न की तुलना में फलदार फसलों से प्रति इकाई क्षेत्र कहीं ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। पपीता, केला और अंगूर फल इसके उदाहरण है, जिनकी पैदावार परंपरागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र के हिसाब से कई गुना ज्यादा मिलती है। सरकार भी फलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए समय समय पर बागवानी फसलों को प्रोत्साहित और आर्थिक मदद देने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु की विविधता भी सभी तरह के फलों की खेती के लिए अनुकूल है। फलों की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। फलदार पेड़ शुष्क कृषि क्षेत्रों, वर्षा आधारित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी, बंजर और पर्वतीय भूमि पर भी रोपे जा सकते हैं। हमारे देश में कई तरह के फल वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर करीब 28 फल वृक्षों की खेती ही प्रचलित है। विश्व परिदृश्य में आज पोषण सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ताजे फलों जैसे आम, पपीता, सेब, केला, अंगूर, अनार, लीची, अमरूद, मौसमी और सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर और किशमिश की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार फल उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने में लगी है। इसके लिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को इसमें शामिल किया है। इससे लोगों की पोषण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि विश्व के प्रमुख फल उत्पादक देशों में चीन, भारत, ब्राजील, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इटली और टर्की शामिल है।
1: जहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। और जैसा कि हमने देखा है इस रिपोर्ट में भी कि अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर तौर पर फलों का एक अहम स्थान हमारे जीवन में है। क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का?
2: देखिए, अगर हम इसका जो इतिहास है अगर हम उस पर जाएं तो जो

0: और किसान जितने बागवानी की तरफ जितने भी राज्यों में काफी बढ़ चढ़ कर बढ़े हैं, जैसे महाराष्ट्र से मैं आता हूं, मुझे पता है अनार जहां जहां हमारा जो क्षेत्र था पहले 90,000 हेक्टर था तो अभी 3 लाख हेक्टर तक पहुंच गया है, क्योंकि उसको अनार को डॉलर क्रॉप के हिसाब से भी जाना जाता है। और जो किसान जो जिसके पास 3 एकड़ या 5 एकड़ जो जमीन थी उसने आराम से उसमें अनार लगाया और काफी किसानों को काफी उससे पैसा भी पाया गया है। तो इसी तर्ज पर अनार के तर्ज पर काफी किसान दूसरे जो फल के बागवानी फसल है वो भी लगा रहे हैं और इसमें काफी संभावना है।
1: जी जी बिल्कुल डॉक्टर राधामोहन, जैसे कि आपने बताया हमें शुरुआत में ही कि ये जो फल हैं वो खाए तमाम लोग और इसके लिए एक दूसरे को बांटे, इस तरह से एक परंपरा की शुरुआत की गई है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के बहाने। चाहूंगी आप हमें बताएं कि किस तरह से पोषण सुरक्षा जो है इससे हमारी जुड़ी हुई है।
2: देखिए फलों को हम प्रोटेक्टेड फूड भी कहते हैं
1: जी,
2: क्योंकि मैं एक अभी हाल ही में एक मेडिकल साइंस का एक डाटा आया जिसमें कहा गया है कि लगभग 25 से 26 लाख लोग जो विश्व में मरते हैं वो कम सब्जी और फल खाने से मरते हैं।
1: अच्छा।
2: जिनमें खास करके 31% शेयर उन मरीजों का है जो दिल के मरीज होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोषण के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है
1: जी।
2: कि कम फल और सब्जी खाने से लगभग 25 से 26 लाख लोगों की मृत्यु होती है पूरे विश्व में, और वो ज्यादातर दिल के मरीज होते हैं, उसमें कुछ कैंसर के भी बहुत सारे मरीज होते हैं। तो एक तो जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है फलों का। दूसरा ये है कि तीन बातें आती हैं, एक तो हम बीमार जब पड़ते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप मौसमी लीजिए, आप लाइम का जूस लीजिए ताकि आपकी रिकवरी तेज हो। दूसरी बात आती है कि जो हमारा स्वास्थ्य है वो मेंटेन कैसे रहे
1: जी।
2: उसके लिए भी हमें अलग से फल खाने की आवश्यकता है। और तीसरा, जैसा कि कोविड के दौरान आपने देखा कि विटामिन सी की बहुत ज्यादा कमी रही और विटामिन सी काफी सहायक सिद्ध हुआ कोरोना रिकवरी में, तो हम जो है जो इम्यूनिटी को अपनी को कैसे बढ़ाएं, तो इन तीन तरह से फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी रिकवरी, हमारा मेंटेनेंस और हमारी इम्यूनिटी, इन तीनों चीजों के लिए फलों का सेवन बहुत आवश्यक है। और अलग अलग तरह के फल अलग अलग तरह के पोषक तत्व देते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से कि आपकी थाली में जो है जो 7-8 तरह के फल हैं उनमें कम से कम जो आधी एनर्जी आपकी दिन की हो वो सब्जी फल और हरी सब्जियों से होनी चाहिए और ट्यूबर क्रॉप की होनी चाहिए। बाकी आप सीरियल लें, ऑयल सीड, जैव जो कुछ भी आप लेते हैं, नट्स लें, लेकिन आधी एनर्जी जो आदमी की दिन में जरूरत होती है 2700-2800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है एक आदमी को, तो उनका मानना है कम से कम 1200-1300 किलो कैलोरी ऊर्जा जो आपको मिले वो ऑर्गेनिक फसलों से मिले, फलों से मिले, सब्जियों से मिले।
1: बिल्कुल, यानी कि जब बीमार पड़ते हैं उस समय तो फल खाने की जरूरत होती है, लेकिन ये हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए अलग अलग तरह के फलों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं उनमें, और इस लिहाज से अगर हम देखें तो कह सकते हैं डॉक्टर विनोद कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि भारत जैसे देश में है, क्योंकि कई तरह के फल हमें यहां पर मिलते हैं। बताएं हमें कि हमारी मिट्टी और जलवायु की ऐसी क्या खूबी है कि इतने तरह के फल हमें यहां पर मिलते हैं।
3: सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि आप जिस मिट्टी में बागवानी करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी बागवानी के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि कोशिश करें कि आपकी बलुई दोमट मिट्टी है तो ये बागवानी के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। पर लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि कुछ किसान भाई हमारे जो बागवानी की ओर जब जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी बंजर भूमि है या ऊसर मिट्टी है या हमारी इस तरह की मिट्टी है जिसमें हम अपना फसल वाली फसलें नहीं ले सकते, उसके लिए वो बागवानी के लिए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा, यदि आप ऐसी खेत मिट्टी में भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो सब उसमें ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी और जो आपका खेत है वो पूरा समतल होना चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद अपनी मिट्टी की जांच कराने के बाद उसमें अधिक से अधिक मात्रा में कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, क्योंकि जब आप अधिक से अधिक कार्बनिक खादों का प्रयोग करेंगे उचित जल निकास की व्यवस्था होगी, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होगी, तो आप जो है जो बंजर भूमि है या ऊसर ऊसर भूमि है उसमें भी आप बागवानी लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर राधामोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो देश है उसकी जो टोपोग्राफी है उसमें तमाम तरह की स्थितियां हमें नजर आती है, पहाड़ी क्षेत्र भी है तो बंजर भूमि भी है तो रेगिस्तानी इलाका भी है और जो मैदानी इलाका है हरा भरा वो भी मौजूद है, तो क्या ये चीजें जो है

0: वो एक तरह से हमारे लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनाती है कि फलों के जो जो उपलब्धता है हम देखते हैं कि वो बहुत ही तरह तरह के हमें मिल पाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही।

0: डॉक्टर विनोद, फलों की खेती अगर शुरू करना चाहे कोई किसान, बाग लगाने की सोचे, तो उसके लिए जो मिट्टी की तैयारी है उन्हें किस तरह से करनी चाहिए?
1: मैं सबसे अपने किसान भाइयों को, जैसे मैंने अभी बताया कि बागवानी करने से पहले अपने खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले आपको पता ध्यान रखना है कि आप बागवानी जिस खेत में करने जा रहे हैं उसकी तैयारी करते समय उसकी मृदा जांच अवश्य करा लें
0: जी।
1: मृदा जांच से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा, और मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मृदा जांच के साथ साथ अपने जो पानी का सोर्स है, चाहे आपका ट्यूबवेल का सोर्स है, चाहे अदर कोई सोर्स है, जो पानी आप उस बागवानी में लगाएंगे उसकी भी साथ साथ जांच करा लें। होता क्या है कि आप बिना मिट्टी की जांच कराए, बिना पानी की जांच कराए आप सीधे बागवानी के लिए चले जाते हैं। तो हमारे कुछ बागवानी वाली ऐसी फसलें हैं कि जिसमें जैसे डिफरेंट पीएच मान है, या उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जिसमें कहते हैं सोल्यूबल साल्ट्स, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ज्यादा होते हैं, तो उसमें आपकी फसल जो है सर्वाइव नहीं कर पाती। आप कोई भी पेड़ लगाएंगे और वो पूरे खत्म हो जाते हैं। तो मैं अभी आप सभी से कहूंगा कि पहले मिट्टी की जांच कराएं, और मिट्टी की जांच कराने के बाद जब आपको पोषक तत्वों के बारे में पता लग जाए कि हमारे पोषक तत्वों का स्तर क्या है, उसकी मिट्टी की पीएच क्या है, और उसकी सोल्यूबल साल्ट उसमें लवण कितना है
0: जी।
1: उसके आधार पर जब आप अपनी उस रिपोर्ट को जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे आप उन रिपोर्ट को एक बार चेक करा लें, चेक कराने के बाद वो सिफारिश करेंगे कि आपका इतना पीएच है तो आप इस फसल को, ये फल वाली फसल को आप लगा सकते हैं
0: जी।
1: आपका इतना साल्ट है, ये साल्ट के साथ आप इस फसल को लगा सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ कहूंगा जब आपको पीएच और ईसी पता लग जाए तो उसके बाद में आपको पोषक तत्वों की भी निगरानी करनी है और देखना है कि उस जांच कराई है मिट्टी की, उसमें पोषक तत्वों का स्तर क्या है, पोषक स्तर के हिसाब से अपने पोषक तत्वों को, जो डिफरेंट हमारे सोर्स है, जहां चाहे अमोनियम सल्फेट है, यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, बहुत से हमारे पोषक तत्व म्यूरेटा पोटाश है, उनके द्वारा आप जो उचित मात्रा में जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो उनको आप वहां डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मिट्टी की जांच कराने से पहले आप मिट्टी के नमूने को अच्छी तरह से वहां से लेना चाहिए
0: जी।
1: कम से कम 1 एकड़ से 2 या 3 सैंपल लें, और लेने के बाद जब स्पेशली बागवानी के लिए जाते हैं तो मिट्टी की गहराई का अवश्य ध्यान रखें। जनरली किसान हमारे क्या करते हैं कि जो सरफेस सॉइल होती है 0 से 15 सेंटीमीटर की, उसका नमूना लेके बागवानी के लिए चले जाते हैं।
0: अच्छा।
1: पर मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा जब भी आप बागवानी के लिए जाते हैं तो कम से कम आप मिट्टी के 3 नमूने एक गड्ढे से जरूर लें।
0: अच्छा।
1: जिसकी गहराई 0 से 30 सेंटीमीटर होगी, 30 से 45 सेंटीमीटर, 45 से 60 सेंटीमीटर, और जब 60 सेंटीमीटर गहराई का 3 नमूने एक गड्ढे से बन जाएंगे उनकी जांच कराएं, उसके आधार पर जो तुम्हारा स्पेशलिस्ट
0: है। जांच करना बेहद जरूरी है अगर आप बागवानी के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। आइए कुछ अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार फलों की जो खेती होती है उसके बारे में यहां पर जानकारी हासिल करें। डॉक्टर राधामोहन, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारे देश के, वहां पर किन किन तरह के जो फल हैं वो अधिकतर उगाए जाते हैं?
2: देखिए, वहां पे अगर मुख्य हम श्रेणी देखें तो 3 तरह के फल हैं। एक फ्रूट जिनको हम गुठली वाले फल कहते हैं, स्टोन फ्रूट कहते हैं, एक पॉम फ्रूट कहते हैं, और तीसरा नट्स होते हैं
0: जी।
2: तो जो गुठली वाले फल हैं उसमें पीच, प्लम, एप्रिकोट, चेरी, ये जो फल हैं वो उगाए जाते हैं। और इन फलों की खास बात यह है कि इनकी जो भंडारण क्षमता है वो बहुत कम होती है।
0: अच्छा।
2: जैसे प्लम है, खुबानी है, इनको बहुत जल्दी तोड़ के बाजार में बेचा जाता है
0: जी, जी, जी।
2: और दूसरे तरह के फल होते हैं जिनको हम पॉम फल कहते हैं, जिसमें आपका नाशपाती है और सेब है, ये थोड़े से ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं, और इसमें इनमें काफी विविधता है। सेब की बहुत सारी, 1000 वेरायटी हैं जो सेब की हम लगाते हैं। और नाशपाती की जहां तक बात है वो ये है कि नाशपाती की जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है, वो पहाड़ों से लेके और पंजाब और दिल्ली तक भी हम उसको कर सकते हैं, प्रजातियां उसकी अलग अलग हैं। साथ ही क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है कि ज्यादातर रोड जो होते हैं वो नाले या नदी के किनारे होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहां पे ट्रांसपोर्ट का उतना अच्छा साधन नहीं है, तो वहां पे हमें प्लम, खुबानी जैसे फलों को उगाने से बचना चाहिए क्योंकि वो उनकी भंडारण क्षमता बहुत कम है। तो ऐसे खेत या ऐसे बाग जो रोड से थोड़ी ज्यादा दूरी पे है, वहां पे हम अखरोट, बादाम या पिस्ता जैसी फसलों को हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि क्योंकि उनकी भंडारण क्षमता बहुत होती है, अगर वो अपने घर पे भी 10 दिन 15 दिन रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी जो कैटेगरी आती है वो बेरीज की होती है, जिसमें आपका कीवी फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी की भी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। कीवी फ्रूट जो कि आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, और उत्तर भारत के कुछ राज्य प्रदेश में भी उसकी खेती जो है व्यवसायिक स्तर पर शुरू हो गया।

0: है तो उसकी भी अपार संभावनाएं हैं। तो ये जो है पहाड़ी फल हैं।
1: फलों से फलता फूलता भविष्य। जी हाँ किसान साथियों, अगर हम देखें तो फलों की खेती में भी अपार संभावनाएं हैं। जहां तक हम जानते हैं, हमारा जो झाबुआ का किसान है अधिकतर खाद्यान्न फसलों में ही अपना रुख किया हुआ है। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है। अगर हमारा जो किसान है, कहीं कहीं पर हमारे जो किसान है वो फलों की खेती कर रहे हैं। बात करें तो पपीता है, अमरूद है, केला है, आदि जो बेर है, आदि जो फल है हमारे जो अपने झाबुआ के जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी अच्छे से फलते फूलते हैं। और भी कई फल हैं जो हमारे झाबुआ में फलते फूलते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर हमें आवश्यकता है, हमारे जो भाई है, जो हमें केविकी के माध्यम से, जो भी किसान भाई है जो फलों की खेती करना चाहता है, वो केविकी के माध्यम से भी इन फसलों की खेती कर सकता है। यहाँ से वह प्रशिक्षण ले सकता है और फलों की खेती में अपना रुझान कर सकता है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM को।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आप लगातार फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को सुन रहे थे। किसान साथियों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और फलों की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को।
1: विनोद, बताएं कि ये जो फल हैं जिनके बारे में बताया डॉक्टर राधामोहन ने कि किस तरह से बेरीज हैं, गुठली वाले फल हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो इनकी जब खेती करते हैं बागवान, तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए?
2: मैं अपने सभी किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे मैं अभी बता रहा था कि मिट्टी की जाँच कराने के बाद आपको अच्छे उत्पादन के लिए जो आपके मुख्य पोषक तत्व हैं, उन मुख्य पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में और इंटीग्रेशन के साथ एकीकृत रूप से तुम्हारी जो कार्बनिक खाद है उनका प्रयोग करते हुए आप अच्छी गुणवत्ता का अच्छी फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोर, पोटास, उसके साथ यदि FBM डाल सकते हैं। गोबर की खाद के साथ साथ आप बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट की जगह कंपोस्ट भी मिलता है, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि उर्वरता और गुणवत्ता वाला दोनों ही तरह के आपको फ्रूट चाहिए, तो उसके लिए आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों के बगैर फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। और अधिकतर हमारे जो भारत देश में जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की अधिकतर मृदाओं में कमी पाई जाती है, इसीलिए मिट्टी की जांच कराते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी एनालिसिस, उसका विश्लेषण अवश्य करा लें, जिसके आधार पर आप पोषक तत्वों को देंगे, क्योंकि हर पोषक तत्व का अपना पूरा रोल होता है। तो इसीलिए आप जांच के बाद उन पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा, संतुलित मात्रा आप उसमें प्रयोग करें, और जिससे अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट आपको मिले।
1: बिल्कुल, तो अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का ध्यान रखना भी बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र के फल हैं, इन्हें किस तरह के कीटों का प्रकोप जो है उसकी आशंका रहती है और किसानों को क्या उपाय अपनाने चाहिए?
3: जैसे सर ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में तीन प्रकार के जो फल होते हैं, इसमें मैडम सबसे ज्यादा जो चूसक कीट है ना, जैसे भी ठंडा थोड़ा कम हो जाता है या फिर उसमें चूसक कीट का काफी प्रकोप होता है, उसमें व्हाइट फ्लाई है, फिर उसमें माऊ एफिड्स है और कुछ फ्रूट बोरर्स भी है मैडम उसमें। तो इसका प्रकोप कम करने के लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आर्थिक जो सीमा स्तर है, सभी जैसे भी फल है सब फलों में अलग अलग होती है सब कीट के लिए, तो अगर सबसे पहले निगरानी करें कि कीट है या नहीं, अगर कीट है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति दर कम है या ज्यादा है, अगर ज्यादा है तभी छिड़काव करे या तो ना करे। और जब किसान मार्केट में जाता है तो हमारे जैसे भारत देश में कम कीटनाशक जो कीटनाशक के जो अन्य प्रकार है उसके 309 प्रोडक्ट भारत देश में पाए जाते हैं, तो उसमें जैविक नियंत्रण के लिए सिर्फ किसानों के पास बहुत कम उत्पाद है, उसमें सिर्फ 15 उत्पाद है जो जैविक नियंत्रण के लिए उत्पाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 309 में से हर स्टेट में हर उत्पाद उनको मिलेगा या ना मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। तो जब वो दुकान में जाए तो सबसे पहले इंटरनेशनल जो मल्टी नेशनल कंपनीज है उसका ही उत्पाद ले, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि जब किसान मार्केट में जाता है कोई कीटनाशक खरीदने के लिए तो 40% जो उत्पाद है वो डुप्लीकेट है। तो सबसे पहले फिर वो देखे कि वो रसीद ले, ज्यादातर दुकानदार रसीद देते नहीं है, किसान रसीद मांगता भी नहीं है, और जो उत्पाद उसने लिया है तो उसमें देखना चाहिए कि उसके पास कम से कम 2 साल होने चाहिए एक्सपायरी के। तो कई बार ये देखा गया है कि जो दवा लेता है मैक्सिमम वो एक्सपायर्ड हो चुकी होती है या फिर 2-3 महीने में एक्सपायरी होने वाली है, तो ये करे। फिर उस पे ऊपर एक लेबल आता है जो भी कीटनाशक का जो भी किसान खरीदता है, तो लेबल में जो मात्रा दी है उसी मात्रा में वो छिड़काव करना चाहिए। ज्यादातर ये देखा है कि अगर आपको 0.5 ml प्रति लीटर छिड़काव करना है तो किसान ज्यादातर 1 ml 2 ml भी प्रति लीटर छिड़काव कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से किसान को ही उसका नुकसान हो सकता है। जो कीट मैंने बताया जैसे फ्रूट बोरर का आपने मैंने पहले बताया, फ्रूट बोरर के लिए जैसे जो रोगग्रस्त फल है या कीटग्रस्त फल है जो भी गिर जाते हैं उनको उसको नष्ट कर दे, और फिर
1: इस तरह से जो कीट प्रबंधन है वो पर्वतीय इलाकों में किया जा सकते हैं। डॉक्टर राधामोहन, अब आपसे जानना चाहूंगी मैं कि वो इलाके जहां पर पानी की समस्या है, पानी की उपलब्धता कम है, तो वहां पर कई तरह की ऐसी फसलें हैं जिन्हें उगाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या फलों के कुछ ऐसे पौधे हैं, पेड़ हैं जो इन इलाकों में भी लगाए जा सकते हैं?
4: बिल्कुल, देखिए फल जो है हल्की बहुत तरह की जो विविधता है फलों में जो और जो अलग अलग कंडीशन में सफलतापूर्वक उत्पादन दे सकते हैं। जैसा आपने कहा कि कम पानी की दशा में हमारा जो शुष्क वन की जो है अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में, वो इसी पे काम करता है, क्योंकि कुछ ऐसे विशिष्ट फल हैं जहां पानी बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, वहां पे जिन फलों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए जिसमें बेर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेर के साथ साथ जामुन है, करौंदा है, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं, कटहल है, जिन फसलों को हम जहां पानी की उपलब्धता कम हो वहां पे हमें इन फलों को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो जमीन आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह की जमीनों को जो अंडर यूटिलाइज है, जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन जगहों का भी इस्तेमाल हम फल उत्पादन में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ये एक मुख्य विशेषता है फल उत्पादन की।
1: बिल्कुल, यानी कि जो किसान है जो बाकी फसलें यहां से नहीं ले सकते हैं वो वहां पर फल उगाकर भी आमदनी कमा सकते हैं। डॉक्टर विनोद, लेकिन चुनौती वहां पर ज्यादा होती है किसानों के सामने, तो ऐसे में बताएं कि अगर किसी ने बेर, जामुन या करौंदा ऐसे पौधे लगाए हैं तो उन्हें किस तरह से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, वहां पर जो पोषक तत्व प्रबंधन है या सिंचाई की व्यवस्था है वो किस प्रकार करनी चाहिए किसानों को।
2: मैं जैसे अभी मैं बता रहा था कि जहां आपकी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी अच्छी है, उसके बाद उस जो वहाँ की मिट्टी की दशा, वहाँ का जो जहाँ आप बाग लगा रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए फसलों का, आप जो फलों वाली बागवानी के लिए जा रहे हैं तो उनका चयन करना चाहिए। उस चयन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फसल में पोषक तत्व ले रहे हैं वो पोषक तत्वों की मात्रा उसकी उम्र के हिसाब से, जो फसल जो प्लांट लगाया है उसकी एज के हिसाब से बढ़ा देना चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं, बागवानी के समय बाग लगाने के बाद एक बार खाद लगाने के बाद उस उतनी मात्रा में खाद दोबारा आगे लगाते हैं, पर लेकिन उससे अच्छी क्वालिटी का फल और अच्छी उपज नहीं प्राप्त होती। इसलिए मैं हर किसान भाई को कहूंगा कि सबसे पहले आप जिस बागवानी के लिए जा रहे हैं, जिस फसल की बागवानी करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लें, क्योंकि जिस खेत की उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो उसमें उतना ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। और उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए आपको कंपोस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर हैं इनका एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं और उन्हीं के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाल सकते हैं।
1: जी जी, आइए आगे बढ़ते हैं। और अब डॉक्टर सचिन आपसे जानना चाहेंगे कि बारानी क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा नहीं है, वहां पर जैसे कि बताया कि बेर, जामुन आदि जो फल हैं उनके पेड़ लगाए जा सकते हैं, यहां पर भी क्या कीटों से जुड़ी हुई समस्याएं आती है किसानों के सामने, किस तरह की चुनौतियां यहां पर होती हैं?
3: जैसे सर ने बताया बारानी जो क्षेत्र है, जैसे अरिड जोन की जो बातें कर रहे हैं हम, जहां जैसे बेर का फल है या कटहल है या अनार है, तो जहां पानी की मात्रा कम हो जाती है मैडम, वहां पे जो माइट्स है, माइट्स की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है, क्योंकि माइट ऐसी पेस्ट है जहां भी आप अगर पानी कम दिया जाए तो उसका प्रकोप जैसे अप्रैल मई में ज्यादातर आता है। तो किसान ये देखे कि अगर उसके पास पानी अगर बहुत कम है सिंचाई के लिए तो रिक्वायर्ड जो भी पानी की जो मात्रा है वो टाइम टाइम पे देते रहे, और माइट के प्रकोप के लिए फिर उसके पास अन्य जैविक नियंत्रण के भी पद्धतियां हैं, तो उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जैसे हम कुछ कीटनाशक है, जैसे नीम पेस्टिसाइड है हमारे पास जो पेड़ों से निकाला गया है, तो नीम ऑयल है 300 ppm से लेकर आपको 30,000 ppm तक का उसका कॉन्सेंट्रेशन वाले जो उत्पाद है मार्केट से मिल जाते हैं, तो इसका छिड़काव वो कर सकते हैं। जैसे 2 ml प्रति लीटर अगर 300 ppm है तो उसका छिड़काव वो कर सकता है। अगर 3,000 ppm का अगर उसके पास उत्पाद है तो 1 ml प्रति लीटर का भी छिड़काव कर सकता है। इसके साथ साथ फिर उसके पास जैसे मार्केटिंग कैटरपिलर है जो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर आती है, ये कीट जैसे है, ये रात में आके जो भी जो फल के पौधे हैं उसका जो रीण होता है उसको रीण को खाता है, तो उसका किसान लोग क्या करे कि इसका जो भी डैमेज ट्री है या डैमेज ब्रांचेस है उसका वहां से वो क्लीन कल्टिवेशन आराम से उसका करके उसको कंट्रोल कर सकता है।
1: जी जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। फलों के उत्पादन के बारे में तो हमने जाना, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमने देखा कि विश्व में दूसरे नंबर पर है भारत, ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत तरह के फल हैं जो निर्यात भी होते हैं। डॉक्टर राधामोहन, हमें बताएं कि भारत के वो कौन कौन से फल हैं जो वैश्विक बाजार में अच्छी खासी मांग रखते हैं?
4: देखिए, जितनी भी उद्यान की फसलें हैं फलों को मिला के, इनका जो है निर्यात में बहुत बड़ा रोल है। जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की हम बात करें 35 से 40 हजार करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो अगर हम फलों की बात करें तो उसमें जो मुख्य फल जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं इनमें अंगूर बहुत आवश्यक है, आम, प्रसंस्कृत और ताजे फल दोनों ही रूप में वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है
1: जी।
4: और अनार जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, अखरोट बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अखरोट का लगभग हम 23 कंट्रीज को हम यहाँ से निर्यात करते हैं, लगभग 200 करोड़ का बिजनेस हमारा अखरोट का है। और अब तो ये समस्या आ गई है कि हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घर की डिमांड है, वो इतनी बढ़ गई है कि हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए फ्रूट नहीं कई बार अवेलेबल होता। तो ये बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनकी अपार संभावना है एक्सपोर्ट की, जिसमें अपना लीची भी है, थोड़ा सा अमरूद भी है, और अब तो कुछ दिन पहले हमने सुना है कि थोड़ी सी मात्रा में स्ट्रॉबेरी भी, खास करके महाबलेश्वर एरिया से उन्होंने उसका जीआई रजिस्टर कराया और थोड़ी मात्रा में वो उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी को भी। और इसके अलावा सेब है जो हमारा हालांकि एशियन कंट्रीज में ही जाता है
1: जी।
4: तो अखरोट और जो हमारा आम है और अंगूर, ये हमारे लगभग विश्व में कई कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ से इनका निर्यात किया जा रहा है और एक अच्छी खासी आय हमें इनके निर्यात से होती है।
1: बिल्कुल। तो ऐसे में डॉक्टर सचिन, आप किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कि इन फलों की खेती से जुड़े हुए हैं, आम, अंगूर है या अखरोट है, जिनकी अच्छी खासी जो निर्यात मांग है वो इस वक्त बनी हुई है, उन्हें अपने इस जो संभावना है उसे तलाशने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे आप उन्हें?
3: जैसे ही मैडम हमारा जैसे उत्पादन फल उद्यान का बढ़ रहा है निरंतर, जैसे उत्पादकता बढ़ती जा रही है, उत्पादन बढ़ते जा रहा है
1: जी।
3: तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही अगर उत्पादन बढ़ गया तो निर्यात बढ़ेगा तो उसमें फिर जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे अवशेष है कीटनाशकों के, अगर अवशेष पाए गए तो उत्पादन बढ़ने से भी फिर हम निर्यात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा किसानों से यही सुझाव है कि जब भी वो मार्केट से कीटनाशक खरीदते हैं तो ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड जरूर खरीदे और जो संस्तुति की जो मात्रा है उसी मात्रा में हमेशा छिड़काव करें। अगर जरूरी है तभी छिड़काव करें। कई बार ऐसा होता है कि कीट नहीं भी है तभी किसान छिड़काव करते हैं, तो जरूरी नहीं हर बार हम छिड़काव करें। तो ये करने से आपकी उत्पादन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और कीटनाशकों के अवशेष जो कम हुए हैं उसके साथ साथ आप जब निर्यात करोगे तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। डॉक्टर विनोद, आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए?
2: मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप अच्छे उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फलों की यदि उपज लेना चाहते हैं तो यदि आप पानी लगा रहे हैं तो वो पानी की क्वालिटी जो मैं बता रहा था कि चेक करा लेना चाहिए, जांच के बाद लगाएंगे। क्या होता है कि जैसे अपना राजस्थान एरिया है, बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ छारी वाटर है, उस पानी को जिप्सम के साथ ट्रीट कर लें, संतुलित मात्रा में जो मिट्टी जाँच के बाद जो आपके पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत है उतना उसमें दें, उसके साथ साथ अपने जो सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति कोशिश करें कि कार्बनिक खादों के द्वारा दें, चाहे बायो फर्टिलाइजर हो या आपका गोबरी खाद हो चाहे कंपोस्ट हो। इसके बावजूद भी आपका अच्छा फसल उत्पादन नहीं हो रहा है तो उसके सिम्टम्स आपके फल और पौधे दिखाना शुरू कर देता है कि कौन से पोषक तत्वों की आपकी कमी है, तो उसको आप स्प्रे करके भी उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर सकते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। तो बेहतर उत्पादन के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें अपनाना बेहद जरूरी है। निर्यात की स्थिति के बारे में तो हमने बात कर ली। डॉक्टर राधामोहन, आप जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने आम के बारे में बताया, इसके ताजे फलों की मांग तो है ही, लेकिन प्रसंस्कृत जो फल है इसके उसके भी मांग है, तो प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक है फलों के मामले में, इसमें कितनी संभावनाएं हैं किसानों के लिए?
4: हमारे यहाँ जो प्रसंस्करण है वो बहुत कम है, 1-2% ही होता है
1: जी,
4: जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि सीजन पे हमारे यहाँ फल इतने सस्ते हो जाते हैं, चाहे वो सब्जी हो फल हो, कि किसान को उसकी उतनी अच्छी आय नहीं मिलती। जैसे हम आपको स्ट्रॉबेरी के उदाहरण देते हैं कि जब हम स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई करते हैं तो सारे फल उसमें बाजार में बेचने लायक नहीं होते, कुछ फल इतने छोटे होते हैं। तो हमारे किसान भाई जो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो छोटे फल हैं उनका वो पल्प प्रिजर्व करके रखें
1: जी।
4: पल्प प्रिजर्व, क्योंकि डेली आप उससे जैम जेली चटनी नहीं बना सकते, आप दसियों बार तुड़ाई करते हैं अपने खेत से। तो जो ऐसे फल हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, छोटे फल हैं या उनका उनका कलर उन पे उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो उसका आप पल पूरा फल ही आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और जब आपके पास पर्याप्त मात्रा हो जाए तो फिर आप उससे कोई भी उत्पाद जो आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो प्रसंस्करण है उसकी अपार संभावनाएं हैं। हालांकि उसके लिए अच्छी प्रजातियों की भी आवश्यकता है, क्योंकि हर प्रजाति को का प्रसंस्करण नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण एक दूं आम का, कि आम में एक प्रजाति है तोतापरी, जो खास करके जो उसका पल्प होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुतायत तरीके से इस्तेमाल उसको करते हैं। तो सारी प्रजातियों का हम उस तरह से उनको प्रिजर्व नहीं कर सकते या परिरक्षित नहीं कर सकते। तो अपार संभावनाएं हैं अगर हम सही तरीके से उनका कुछ प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं और बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो निश्चय हमारी इनकम जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आय दोगुनी करने का, उसमें ये निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा।
1: बिल्कुल, यानी कि आप अगर प्रसंस्करण से जुड़ना चाहते हैं, मूल्यवर्धन करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस फल के कौन सी जो प्रजाति है उसका चुनाव करना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। बहरहाल आम की जैसा कि उदाहरण के तौर पर लिया डॉक्टर राधा मोहन ने, मैं जानना चाहूंगी कि आम फलों का राजा भी कहलाता है और इसकी अच्छी खासी मांग घरेलू बाजार में तो है ही और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बढ़ रही है। डॉक्टर विनोद, हमें ये बताएं कि जो आम के किसान हैं उन्हें पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर कोई कमी रह जाती है तो किस तरह के रोग या किस तरह की समस्या आ सकती है आम में खासतौर पर।
2: मैं जैसे अभी बता रहा था आपको कि जब किसान की जो भी समस्या है वो समस्या से संबंधित जानकारियां हमारे सभी संभाग, जितने भी उद्यान संभाग हैं, वहां सब मिलता है आपको, पर लेकिन कुछ जानकारियां किसानों के पास स्वतः ही होती हैं। जैसे कि आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि खेत की उर्वरा शक्ति जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा। उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने बताया था कि आप गोबरी खाद, पर लेकिन आप गोबरी खाद इतनी मात्रा में आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो जिस पीरियड में आपके बगीचे में फल नहीं है, फल वाला जो पीरियड नहीं है, उस पीरियड में आप दलहनी फसलें लगा सकते हैं। और जो डोरमेंसी पीरियड में जितनी पत्तियां जमीन पर गिरती है उसको भी खेत में उसको दवा देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अधिकतर किसान करते हैं, पत्तियां गिरती हैं और बाहर निकाल देते हैं, वो अपने किसी दूसरे यूज में ले लेते हैं, पर लेकिन पत्तियों को भी उसमें डालना है, दलहनी फसल लगा के उसका अवशेष है उसको भी उसी में दबाना है। और सबसे मेन चीज जो है, नमी जब आपका फ्रूटिंग स्टेज चल रही हो, जब फल बनने जा रहा हो और पकने तक, उसकी नमी का हमेशा ध्यान रखें, उस देखते रहें कि हमारे प्लांटों के नीचे नमी की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि वो नमी ही एक कारण ऐसा है कि जो पोषक तत्व जमीन से होते हैं वो उस नमी के द्वारा ही आपके पेड़ों को मिलते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से फिर आग्रह करूँगा कि आप बागान में जब फसल आती है तो उस जो फ्रूट आते हैं तो फ्रूट की देखभाल एक बच्चे की तरह करें, कि उसको कब पानी की जरूरत है, कब उसको खाद की जरूरत है, कोई कीड़ा बीमारी तो नहीं लगी हुई है, या कौन यदि हमारे पोषक तत्व की किसी की कमी है तो उसका कौन सा लक्षण आ रहा है, उस लक्षण के हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर और पोषक तत्व दे देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी गुणवत्ता अच्छी उत्पादन आपको मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, और जानना चाहेंगे डॉक्टर सचिन, अगर आप हमें बता सके कि कई बार हम देखते हैं कि जो फलों के किसान हैं वो फलों को पकाने के लिए किसी न किसी रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ये कितना उचित है, या फिर किस तरीके से पकाया जाए कि सेहत को नुकसान न पहुंचे, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए?
3: मैडम, जैसे साउथ इंडिया में जहां आम पहले निकलता है तो उसको पहले पका के डायरेक्ट दिल्ली भेजना होता है
1: जी।
3: तो मैं जैसे मेरे फैमिली के, मैं हमेशा ख्याल रखता हूं कि मैं जैसे ही मई या जून ना ही आए तब तक मैं आम खाता नहीं हूं
1: जी।
3: तो ये बहुत खराब पद्धति है जो आर्टिफिशियली आम को पकाया जाता है, और ये पाया गया है कि इससे कैंसर भी होता है
1: जी।
3: तो जैसे 85% मैच्योरिटी पे जैसे आम या अन्य फल तोड़े जाते हैं, है ना, कई फल होते हैं जो आम पेड़ों पे पकते हैं, कई फल तोड़ने के बाद पकते हैं, जैसे मैंने अनार बताया था, अनार एक्चुअली जब पकता है तभी तोड़ा जाता है, आम आप जब कच्चा होता है तभी आप तोड़ के पकाते हो। तो जैसे जैसे फल है वैसे ऐसी पद्धतियां अनेक है, लेकिन जो केमिकल या रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो किसान ना करे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है।
0: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर अधिक उत्पादन और अधिक निर्यात की आशा से हम अधिकतर किसान भाई यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रासायनिकों का प्रयोग करते हैं, ताकि फलों में चमक रहे, फल हमारी जो उपज है वो अच्छी रहे, फल अच्छे रहें। तो कहीं ना कहीं यह हमारी भूमि को भी प्रभावित करता है और साथ ही हमारे जो मानव का स्वास्थ्य है इस पर काफी बुरे दुष्परिणाम आते हैं। तो किसान साथियों, हम कोशिश करें कि जितना हो सके हम रासायनिकों का कम प्रयोग करें और प्राकृतिक द्वारा इसे पकने दें। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, परंतु यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडियाबिल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांडिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: फलों की खेती और बागवानी से जुड़े किसानों के लिए यहां पर कई बातें हमने की है। डॉक्टर राधामोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है खास तौर पर बागवानी से जुड़े किसानों के लिए।
4: देखिए, 2003-04 से लगभग जो है बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी
1: जी।
4: और उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 2011-12 के अंत तक हमें अपने जो औद्यानिक की फसलें हैं उनको उनका उत्पादन डबल करना है। अब उत्पादन डबल करने के दो ही तरीके हैं कि या तो जो हमारे ऑर्चर्ड हैं, जो बाग हैं, उनकी उत्पादकता को हम बढ़ाएं, उसमें खाद डालें, उनकी कटाई छटाई ठीक करें, उनमें पानी ठीक तरह डालें। दूसरा, जो नए बाग हम लगाएं वो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों के लगाएं। तो इस योजना में बहुत सारे चीजें इसमें रखी गई थी। अब बाद में उसको कृषि मंत्रालय में मर्ज कर दिया गया है उस स्कीम को, और अभी भी जो स्टेट डिपार्टमेंट जो हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे जो भी किसान भाई हैं अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास जाके उनसे पता कर सकते हैं कि जैसे ड्रिप इरीगेशन के ऊपर भी सरकार कुछ उनको सब्सिडी दे रही है, पौधे आप खरीदते हैं उस पर भी सरकार कुछ देती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि जब आप अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा सही तरीके से लगाएंगे तो उसके लिए हम अपने किसान भाइयों को कहना चाहेंगे कि आप अपने जिला उद्यान अधिकारी के पास जाएं और उनसे पूछें कि भाई किन किन तरह से वो जो है डिपार्टमेंट जो है उद्यानिकी विभाग है वो हमारी सहायता कर सकता है, कहां कहां हमें हेल्प कर सकता है। नर्सरी पे भी दे रहे हैं, स्टोरेज बनाने पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो भारत सरकार द्वारा दी जा रही
1: है। बिल्कुल, योजनाओं का लक्ष्य यही है जो किसान है वो बागवानी से जुड़े और जो उत्पाद, जो कृषि उत्पाद मिले वो गुणवत्ता युक्त हो। कीटों की वजह से गुणवत्ता को काफी असर पड़ जाता है। डॉक्टर सचिन, ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि किसान कई बार कीटों से छुटकारा पाने के लिए कई बार छिड़काव करते हैं, तो ऐसा न करना पड़े इसके लिए क्या कर सकते हैं किसान?
3: मैडम, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ अनार का। जैसे अनार में पहले, जैसे अनार 6 महीने का क्रॉप है, जैसे जब से फूल निकलता है तब तुड़ाई तक, तो सब पहले 45 स्प्रे किसान करते थे, 45 स्प्रे, तो कई प्रकार के हार्मोन्स है उसमें, फिर फफूंदनाशी है, जीवाणुनाशी है, फिर कीटनाशी है। तो इस पे फिर उस अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर ने उन्होंने रिसर्च करके वो 45 स्प्रे 15 तक रिड्यूस किया है। तो जो किसान 45 स्प्रे कर रहा है उसको भी उतना ही उत्पादन मिल रहा था, जो 15 कर रहा था उसको भी उतना उत्पादन उतना ही मिल रहा था। तो किसान जो भी, जैसे कोई आम का किसान हो या कोई अनार का किसान हो या कोई सेब का किसान हो, तो जो आसपास जो कृषि विश्वविद्यालय है या फिर किसान कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से वो चर्चा करके या वहां से उनके जो भी टेक्निक्स है वो जानकारी लेके पता कर सकता है कि कब हमको छिड़काव करना चाहिए। और मैंने पहले जैसे बताया था आपको कि छिड़काव जस्ट कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन में अगर आपको छिड़काव करना है तो आप कई बार छिड़काव कर सकते हो, लेकिन कीट है तभी आपको छिड़काव करना चाहिए। और जैसे पहले मैंने बताया कि ग्रीन लेवल पेस्टिसाइड हमेशा यूज कीजिए, जैसे बहुत जैविक कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जैसे मेटराइजियम ब्यूवेरिया है, ये फफूंदनाशी है, फफूंद है और कीटों को भी मारते हैं। ट्राइकोडर्मा नाम की एक फफूंद है, जो कई प्रकार के जो फफूंद है जैसे जड़ों में जो रोग आते हैं पौधों में तो उसको भी मारते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास कीटों को मारने के लिए जीवाणुनाशी वायरसेस है, जैसे एनपीवी है, फिर बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियंसिस है, और कई प्रकार के हमारे पास जो पेड़ों से लिए गए जो कीटनाशी है जैसे नीम है, करंजीन है, तो इसका भी इस्तेमाल अगर किसान करेगा तो उसकी उपज भी कम होगी, उपज की जो आय होती है उसमें भी कम होगी, और जो अन्यथा जो हमारा जो उत्पाद आता है वो उत्पादन में भी जो कीटनाशकों के अवशेष है वो भी कम होते जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर विनोद, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने हमें बताया कि किस तरह से अगर पोषक तत्वों की कमी रह जाए तो कई तरह की समस्याएं, कई तरह के रोग लग सकते हैं। ऐसे में एक किसान किस तरह से ये जाने, किस तरह से उन लक्षणों को पहचाने कि वो ये जान पाए कि पोषक तत्व की कमी हो रही है?
2: हाँ, ये बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैसे मैं अभी बोला था कि आप स्प्रे करके भी जो लक्षण आ रहे हैं उसकी कमी के लक्षणों को देखते हुए स्प्रे कर सकते हैं
1: जी।
2: तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, यदि आपके पौधों में नाइट्रोजन की कमी है तो उसके जो पत्ते हैं जो स्पेशली कुछ नई पत्तियां होती हैं, कुछ पुरानी पत्तियां होती हैं, जो पुरानी पत्तियां बीच में जो पत्तियां होंगी वो पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी
1: जी।
2: पर लेकिन वहीं नई पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाए तो वो आपकी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के द्वारा पुरानी पत्तियां और सल्फर की कमी के लक्षण के कारण नई पत्तियां पीली पड़ती हैं। अब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस से क्या है कि जो पत्तियों का आकार है वो सिकुड़ जाता है, वो पूरी वृद्धि नहीं होती, और सबसे बड़ा जो पत्तियों का आकार जो है कुरूप टाइप का, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए पत्तियों का वो हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। और उसके अलावा भी यदि फास्फोरस की डेफिशिएंसी है तो पत्तों की पत्तियां कुछ बैंगनी और इस तरह कलर की हो जाती हैं, जैसे अमरूद है, अमरूद में बैंगनी और इस तरह की कलर की पत्तियां हो जाती हैं, तो समझ लेना चाहिए फास्फोरस की डेफिशिएंसी है। यदि पोटाश की बात करते हैं तो पोटाश की वजह से पत्तियां जलने लगें, जो कि उसके किनारे वो जलने लगेंगे, और पत्तियों की टहनियां वो जो टिप्स होती है, टहनियों के टिप्स होते हैं वो सूखने लगी, तो ये आपको समझ जाना चाहिए पोटाश की कमी है। ऐसे ही जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, इन सब के अपने लक्षण हैं। जैसे मैग्नीज की कमी है तो पत्तियां का जो सिकुड़ने के साथ साथ गुच्छे टाइप में बन जाएंगे, तो समझ लेना कि ये मैग्नीज डेफिशिएंसी है। आयरन होगा, आयरन की कहीं डेफिशिएंसी होगी और उसकी कमी कहीं जो पत्तों पर नजर आएगी तो पूरी पत्ती पीली तो होगी पर लेकिन उसकी जो सिराएं, जो भीतर जो सिराएं होती हैं वो हरी होंगी, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो 1 साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो। टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार, जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफी बढ़ चुकी है। और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता हैं वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
7: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही हैं। किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
8: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं।

0: थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है। ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है, इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है। इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा। वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहाँ पर उसके पहलू जो है उन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहाँ आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी, जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती है कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो हैं वो खोल दी गई हैं। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको है। वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहाँ उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी, जो कि एक सफल उन्नत किसान है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है, जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहाँ पर हासिल की हैं, उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुँचे, यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
2: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है, बहुत ही सफल योजना है, और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है, जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है जी। और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परम्परागत कृषि विकास योजना के नाम पर, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, PGSIndia.NCUF.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
1: जी।
2: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है, जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है
1: जी।
2: दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना, वो चालू किया गया है। और ये देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है
1: जी।
2: तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई, जो आज तक नहीं हुआ है
1: जी,
2: कि किसानों के पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया।
2: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं,
1: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान हैं वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
3: इसमें मुकुल जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए। उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
3: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
3: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
3: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
3: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
3: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है
3: जी।
1: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के, हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनु जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचा है।
4: डेढ़ साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्रा सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
4: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीज़ों को खरीदते थे
1: जी बिल्कुल।
4: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफ़ी भलाई हो सकता है
1: जी।
4: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
1: जी,
4: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहे हैं बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना। तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
1: जी,
4: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
1: जी,
4: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
4: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
1: जी,
4: और इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
1: जी।
4: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
1: जी,
4: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदो भोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
1: जी,
4: कालोनिया। अभी इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
1: जी,
4: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
1: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रही है,
4: मांग भी देखने को मिल रहा है
1: जी। बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णा, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
2: देखिए ये हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ दो साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
1: बिल्कुल
2: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने

0: भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है
1: जी,
0: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधा मोहन साहब ने, जो उन्हें फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था, और उनका ये व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं जो जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी किसान जुड़ रहे हैं अगर वो ऑर्गेनिक में है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो उनको 10% मिनिमम मार्केट रेट से अधिक मिलता है
1: जी,
0: और अगर उनका जैविक पूरा उत्पाद है तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहाँ बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकल कर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
0: देखिये, प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
1: जी,
0: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजारी भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, तो यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जुड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी नहीं मान सकते किसान को दी जा रही है,
0: उस पे एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं, तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है, तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजिडुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: कुछ तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक है वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
2: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए पीके भी वाई स्कीम में पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
1: जी,
2: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
1: जी,
2: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी
1: बिल्कुल,
2: उसमें क्या था कि 3 साल आपको जैविक पूरे खेती करनी होगी तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
1: जी,
2: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
2: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुका
1: नहीं,
2: नहीं होता था
1: जी,
2: लेकिन जब ये स्कीम आया पीके वीवाई का स्कीम आया जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
1: जी,
2: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी,
2: और चूंकि पहले साल खेती होता है जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदि है
1: जी,
2: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
2: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का
1: जी,
2: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले, तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पर देंगे जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
2: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम उससे हम लोग 10 से 15%
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
2: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस।
1: जी,
2: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में।
1: जी,
2: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अब 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
2: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आगे भी जुड़ेगी। तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा, इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
3: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
3: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
3: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी,
3: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
3: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
3: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
3: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी,
3: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्यूर चाहिए
1: जी,
3: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना DAP पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहाँ उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपरू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: यहाँ पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारा जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है? अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: अब काफी हद तक इसमें डर कम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है। तो कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी है, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है। तो इस सब उनके में जागरूकता है, अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है
2: बिल्कुल। लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसे आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी,
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए
2: जी।
4: अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, जो आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा। तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो ढूंढना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि ये डिकम्पोजर यूज करिए। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए।
2: बिल्कुल,
4: जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं, तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपकी जो इनकम है वो करीब चार लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब चार गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती
2: है, प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है,
4: दिया जाता है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है
2: जी।
4: तो कैसे कर रहे हैं, हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं
2: जी
4: कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: जी दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फार्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनके उनकी उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: यानी उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा
4: जिससे जी वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में अनुरोध किया गया
2: जी।
4: तो वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल शुरू एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसे की जा सकती
4: है। मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खोली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद वो उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फिर लाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने तीन सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही तीन डिमांड है, इसी तीन डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहा है, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो ज़्यादा डे टू डे में ज़्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मान सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 किलो गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी।
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी।
6: और 7 दिन में गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
2: जी।
6: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
2: जी।
6: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
2: जी।
6: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
2: जी।
6: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
2: जी
6: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से। और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
2: जी।
6: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पादन का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
4: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली। इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती के अंदर इसमें इन्वॉल्व था, 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
4: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया। डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए ये बनाया गया, तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के
2: जी।
4: राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव जाके किया है
2: जी।
4: वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
2: जी।
4: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमने करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए। जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया, तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया, तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
2: जी,
4: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है सर, हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
2: जी।
4: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं अपने आप कर दो, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें। तो उसके फायदे अनेक हैं और एक बारी जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
8: आपनू रेडियो आपड़ी बातें
2: की जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
5: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
2: जी,
5: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो
2: जी,
5: तो वहाँ उनका थोड़ा सा बचत
2: जी।
5: दूसरा जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
2: जी।
5: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
2: जी,
5: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम,
2: वो भी आय का जरिया मान
5: एक आय का जरिया मान सकते हैं
2: जी।
5: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
2: जी, बिल्कुल।
5: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
2: जी,
5: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए, तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
2: जी।
5: तो बाजारी का बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत
2: जी, लागत कम हो जाती,
5: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ
2: बिल्कुल।
5: तीसरा जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
2: जी,
5: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
2: जी।
5: चौथा जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
2: जी,
5: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट
2: बिल्कुल।
5: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
2: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
5: आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
2: जी,
5: यहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
2: जी,
5: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चली गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
2: जी,
5: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सकें और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में। अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
2: जी,
5: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचे
2: यानी जो उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
5: खराब नहीं।
2: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने हैं अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
5: देखिये उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
2: जी।
5: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहा है जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
2: जी,
5: क्योंकि उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं
2: बिल्कुल,
5: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को बेचना है जो वो खेती कर रहे हैं
2: जी।
5: बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट दे,
2: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनुजी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं, प्रसंस्करण की इकाई है, इसके जरिए उनको भी आय का जरिया मिल सकता है?
4: बिल्कुल मिल रहा है, और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल इस तरह से आपके साउथ में जाए, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
2: जी।
4: तो एक जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे को भेजते हैं, दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवम्बर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहाँ आएगा, तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मटेरियल देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
2: बिल्कुल,
4: ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि दिखाई
2: उपलब्धता हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए, लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में अगर एक किसान की हम बात करते हैं किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
9: आज की तारीख में मुकुल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
2: जी,
9: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरे चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
2: जी।
9: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है
2: बिल्कुल।
9: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
2: जी,
9: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए, कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
2: जी। ये आपका निजी अनुभव है यानी?
9: मेरा अपना अनुभव है। दूसरे, जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
2: जी।
9: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
2: जी।
9: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
2: जी,
9: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
2: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
9: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
2: जी।
9: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
2: जी।
9: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो, या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है, उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे, आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
2: जी।
9: तीसरे, आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
2: जी।
9: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, वो 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
2: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
4: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक को शुरू कर दिया है
2: जी।
4: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे काम चालू हो गया। और जहाँ तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
2: जी।
4: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
2: जी।
4: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
2: जी,
4: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहें, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
2: जी,
4: आपके
2: प्रयोगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
4: दिखाएंगे या है
2: जी।
4: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बॉटल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
2: जी।
4: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
2: जी,
4: स्ट्रेस में है आपकी रेनफेड एरिया। तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
2: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी।

0: लिए भी, मतलब
1: उनकी
0: किसानों
1: भी
0: के लिए भी
1: है,
0: उपभोक्ता के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी जमीन को बचाना है
1: जी।
0: तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है
1: जी।
0: अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, इसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन भी वहां पर,
1: यानी बीज उत्पादन भी,
0: बीज उत्पादन मुनाफा शुरू हो रहा है। और जिसके पास जानवर नहीं है, तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
1: बिल्कुल एक पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
0: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर से भी ले सकते हैं। ट्रेडर से लेने में फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है, और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पे जाइए, आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
1: इस पर सारी जानकारी जो है,
0: सारी जानकारी है, और उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
1: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है कि किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र, यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है, उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है, कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे, आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है, एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी, यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
2: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं, बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम

0: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
2: हर घर

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। दोस्तों, आज के कलाकार का मंच है नए टैलेंट्स के लिए, नए गायकों के लिए, नई गायिकाओं के लिए जो अपनी प्रतिभा का बहुत बहुत लुत्फ उठा रहे हैं और आज हमें मौका मिल रहा है उनके गीत सुनने का, उनके संगीत को हमें भी मजे से इंजॉय कर पाए, ये हमें आज मौका मिल रहा है। और आज हमारे साथ जो गायिका है वो है रुबीना दास जी। बाकी रुबीना जी अपने बारे में खुद हमें बताएंगी, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके गीत भी सुनेंगे। रुबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी धन्यवाद। नमस्कार समीर जी, और आज के कलाकार सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रुबीना, बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं बैंगलोर में अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता सकती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ या होममेकर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मैं खुद भी योगा करती हूँ और दूसरों को भी योगा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ।
0: बहुत खूब,
1: मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन है।
0: बहुत खूब रुबीना जी। हम सभी जानते हैं दोस्तों, योगा हमारे देश से ही पैदा हुआ और कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रभावशाली है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है हमारे दोस्तों में से ज्यादातर लोग योगा को प्रैक्टिस करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू करना चाहिए, और अब चाहें तो रुबीना जी से संपर्क कर सकते हैं। रुबीना जी हमारे बीच में एक बहुत अच्छे टीचर, एक बहुत अच्छे फ्रेंड और अब हमारी फैमिली मेंबर भी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम को रुबीना जी की ही आवाज में गाए हुए इस बहुत खूबसूरत गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत बढ़िया रूबीनाथ जी, बहुत बढ़िया स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हुए आपसे एक इंपॉर्टेंट, एक मजेदार और बहुत सिग्निफिकेंट सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप मुझे अपने जीवन के कुछ 3 महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बता सकती हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो? 3 लोग?
1: 3 लोग
0: जी।
1: ओके, एक सबसे पहले तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे बहुत पॉजिटिविटी मुझे आई है, मैं उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं हमेशा उनको बहुत ज्यादा मानती हूँ। और दूसरे हैं मेरे माताजी, उनको भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, वो भी नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर हैं। और तीसरे हैं बहुत, जिनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस अभी अभी हुई हूँ, अभी मतलब कुछ दिनों से, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी।
0: क्या बात
1: है, उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ।
0: तो ऐसी क्या बात है प्रधानमंत्री मोदी साहब में जिससे आपको लगा कि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है?
1: उन पॉजिटिविटी आती है, वो हमारे देश को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत पीछे थे हम। वो पॉजिटिविटी आती है उनको देखने से, उनकी सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, ये ऐसे लीडर ऐसे ही होने चाहिए।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया बात कही साहब आपने जी।
1: एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मान देती हूँ
0: जी। मैं भी वही कह रहा हूं मैम कि एज अ पर्सनैलिटी, ऐसे एक व्यक्तित्व, जितना पावरफुल इंसान वो दिखाई देता है, बस उसको देख के मजा आ जाता है। इतनी बड़ी उम्र में भी कितनी पावर उनमें रहती है, कितना काम वो करते हैं,
1: बहुत ऊर्जा,
0: बहुत ऊर्जा रहती है उनके पास। वो तमाम जगहों पर जाकर वो काम करते हैं जो इतनी उम्र पर पहुंचकर, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर आदमी नहीं करना चाहता या नहीं झुकना
1: नहीं
0: चाहता, लेकिन वो बहुत प्यारे ढंग से हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूब कहा आपने
1: जी जी। जी। उनसे मुझे योगा के लिए भी इंस्पिरेशन उनसे भी ज्यादा मिली है।
0: क्या बात,
1: इसीलिए मैं ज्यादा उनको पसंद करती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही आपने। वो हमारे देश की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रूबीना जी की ही आवाज में।

0: बहुत सुंदर। रुबीना जी, आपके जीवन के कुछ सबसे सुखद, बहुत ही प्लेजेंट कुछ पल रहे होंगे, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सुखद पल, जब मेरा पहला बच्चा हुआ था,
0: जी
1: मेरा बेटा जब आया था मेरी गोद में, वो तो सबसे अच्छा सुखद पल होता ही है एक
0: वाह,
1: माँ के लिए।
0: जी जी जी
1: और जबकि मैं एक बेटी चाहती थी, पहला बच्चा,
0: ओके
1: लेकिन भगवान ने ये मुराद भी मेरी पूरी कर दी। तो मेरी सेकेंड चाइल्ड, जब भी मेरी बेटी हुई है, उस टाइम भी मुझे बहुत ही खुशी मिली।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और दोनों बच्चे मेरे काफी बड़े हो गए हैं, दो में एक माँ के लिए वो बच्चे ही रहेंगे, लेकिन हाँ, वो आज बहुत अच्छा ऑनेस्ट हैं अपने जिंदगी में, और बहुत आगे भी आ चुके हैं। दोनों ही जॉब करते हैं, बैंगलोर में ही रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं।
0: वेरी नाइस।
1: और एंड दे आर वेरी नाइस एंड बहुत मान रखते हैं पेरेंट्स का, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है
0: बहुत खूब,
1: दोनों को पाके मैं बहुत खुश हूँ।
0: अमेजिंग, बहुत खूब रुबीना जी। दोस्तों, आपने सुना, मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कहीं पढ़ी थी मैंने, फिर उसको लेकिन मैंने अपनाने की कोशिश की। देखिए, हम लोग सब एक दूसरे से सीख के ही सीखते हैं, कोई ऊपर से ज्ञान हमारे पास नहीं आ जाता। तो हुआ यूं कि एक मित्र ने मेरे से पूछा कि आपकी माँ कहाँ रहती हैं, तो मैंने उनको बताया वहां रहती हैं, जहां भी रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो माँ मतलब आपके पास रहती हैं। मैंने कहा जी नहीं, माँ मेरे पास नहीं रहती हैं, मैं माँ के पास रहता हूँ। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं माँ से दूर जा सकूं या माँ को रख सकूं, मेरी माँ मुझे अभी भी रखती है।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने, और ये बात मेरे दोनों बच्चे भी यही बोलते हैं, हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं।
0: क्या बात है, सो क्यूट, सो क्यूट, दैट इज सो ब्यूटीफुल। दोस्तों सुनिए, कितनी प्यारी बात है ये। चलिए एक प्यारा सा गीत भी सुनते हैं रवीना जी की आवाज में, जो मैं उनके दोनों बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: रुबीना जी, आपके जीवन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण सबक आपने सीखा और आप हमें बताना चाहेंगी कि वो सबक सब लोग सीखें, ऐसा कौन सा सबक होगा?
1: सबक तो जिंदगी तो बहुत सारा सबक हम लोगों को सिखाती है।
0: जी
1: हाँ, जब भी मैं छोटी थी तो मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। हमेशा मेरे मन में था कि मैं कुछ करूं, लेकिन शादी थोड़ी जल्दी हो गई तो उसके बाद मैं हाउसवाइफ बन के रह गई। फिर बच्चों को बड़ा किया, लेकिन मन में था कि मैं कुछ करूं। मेरे अंदर वो वुमेन एम्पावरमेंट का भाव था, लेकिन नहीं कर पाई। जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी। और योगा, उस टाइम मैं थोड़ी लेटर एज में योगा में योगा को सीखी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी और मैं उसी में आगे बढ़ती गई। योगा का ट्रेनिंग लिया, इंस्ट्रक्टर बनी। और अभी मैं वही चाहती हूँ, सारे लेडीज को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होना सीख लीजिए। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम कितना भी, हम घर भी संभाल सकते हैं और बाहर भी संभाल सकते हैं। तो ये सबक मैं अपनी जिंदगी से सीखी कि हाँ, हम लेटर एज में भी हम चाहे तो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, बिल्कुल ठीक कहा रुबीना मैम आपने। ये बहुत बहुत जरूरी बात है दोस्तों। एक बहुत ही प्यारी सी किताब अभी पीछे कुछ दिनों काफी पॉपुलर हुई थी, जिसका नाम है इकीगाई। जैपनीज कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है। उसमें बात यह है कि अगर हमारी जिंदगी का कोई पर्पस होता है, कोई उद्देश्य होता है और उसकी तरफ हम चलते रहते हैं, कुछ स्किल डेवलप करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, जैसे रुबीना जी ने योगा सीखा, उसी तरीके से अगर हम कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो गाना गाना ही क्यों ना हो, हमारी जिंदगी को एक उद्देश्य मिल जाता है और जिंदगी
1: जी
0: बहुत ही
1: जी
0: खूबसूरत हो जाती है। और जाहिर सी
1: बहुत
0: बात
1: ही
0: है,
1: खूबसूरत हो जाती है। सही में ये आपने सही बोला, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है।
0: और जाहिर
1: ये
0: से
1: लाइन मुझे बहुत पसंद है आपकी।
0: जाहिर सी
1: थैंक
0: बात
1: यू।
0: है, जाहिर सी बात है मैम, आपने एम्पावरमेंट की बात की। जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसा कुछ कर लेते हैं तो हम अपने अंदर से एम्पावर्ड होते हैं, अपने अंदर से इतने
1: जी
0: ताकतवर बन जाते हैं कि दूसरे लोग फिर हमारी तरफ सहायता के लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए देखते हैं। और बस यही तो उद्देश्य है एक मानव जीवन का। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने मैम। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत रुबीना जी की इस प्रतिभा की तरफ।

0: बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही सुंदर। चलिए मैम, कुछ पुरानी यादों में चलते हैं। आपकी कोई पुरानी सी याद है जो आपको बड़ी खूबसूरत लगती हो, आपको अक्सर याद आ जाती हो, क्या वो हमें आप बताना चाहेंगे?
1: पुरानी सी यादें, पुरानी यादें तो किसको पसंद नहीं है, है तो बहुत सारी खजाने ही हैं।
0: जी
1: हाँ, लेकिन कॉलेज के टाइम के जो दोस्तों के साथ जो हम लोग जो टाइम बिताते हैं वो बहुत ही ज्यादा यादगार बनी रहती है। और ये भी मैं बोल सकती हूँ, एक बहुत अच्छी बात है, जब मैं छोटी थी तब मेरी मम्मी मुझे गाना सिखाने के लिए लेके जाती थी और मैं थोड़ा पीछे भागती थी मुझे, और मम्मी को मुझे पता था, वो चाहती थी कि मैं गाना सीखूं, जबकि मैं थोड़ा पीछे भागती थी और मेरी मम्मी मुझे लेके जाती थी गाना सीखने के लिए। जब मैं छुपती थी तो मम्मी क्या करती थी, मेरे टीचर को घर पे बुला लेती थी तो, और क्योंकि मेरी आवाज अच्छी थी तो सारे टीचर्स भी मुझे बहुत पसंद करते थे, वो खुशी खुशी आ भी जाते थे और मैं छुप नहीं पाती थी।
0: वाओ,
1: इस तरह से मम्मी ने मुझे थोड़ा, ये बचपन का कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो अभी मुझे याद आती हैं, तभी मैं मम्मी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि तभी मुझे गाना थोड़ा बहुत जो सिखाई थी और मैं छुप छुप के ना सीखने की कोशिश करते हुए भी कुछ सीख ली थी, आज इस मुकाम पर हूँ कि थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: क्या बात है।
1: और ये मेरी हॉबी की तरह भी है, मैं गाना सुनती भी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी लेती हूँ।
0: बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। दोस्तों आपने सुना, तो अगला गीत मैं रूबीना जी की माता जी को डेडिकेट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूबीना जी को गाने के लिए प्रोत्साहित किया, उनको गाना सिखाया, उनके लिए हमेशा मोटिवेशनल बनी रही। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अच्छा रुबीना मैम, ये बताइए आपके सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: मेरे सबसे पसंदीदा गायक तो किशोर कुमार जी हैं।
0: ओके।
1: मैं उनके गाने को बहुत एंजॉय करती हूँ, वो जो दिल से गाते हैं। वैसे तो मुझे मुकेश जी, मोहम्मद रफी जी और सारे सिंगर्स पसंद है, लेकिन किशोर कुमार जी का जो अल्हड़पन है गाने में वो मुझे ज्यादा पसंद है। और मैं तो हमेशा लता दी को दिल से बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ, और लेकिन मैं आशा जी के ज्यादा फैन हूँ।
0: क्या बात है, बहुत खूब। आशा जी की क्यों फैन है आप?
1: आशा जी की भी वही अल्हड़पन।
0: बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने,
1: मुझ में भी वही अल्हड़पन है इसीलिए।
0: बहुत खूब।
1: वैसे तो मैं सबको पसंद करती हूँ, गाना तो सबका गाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो जॉयफुलनेस है गाने के लिए, जो जिस जॉयफुलनेस से वो लोग गाते हैं वो मुझे ज्यादा पसंद है।
0: बहुत खूब कहा मैम आपने, बहुत ही प्यारा टर्म यूज किया, जॉयफुलनेस। आशा जी के गानों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनकी आवाज की लरज में जो जॉयफुलनेस सुनाई देती है वो बहुत अमेजिंग है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक प्यारा प्यारा सा गीत।

0: तो रुबीना जी चलिए एक काम करते हैं, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: मैं सच बताऊं, मैं बचपन में जब छोटी थी तो आसमान में उड़ना चाहती थी। तो पंछी बनकर तो नहीं, हाँ उस टाइम मुझे एयर होस्टेस बनने का बहुत मन था।
0: क्या बात है।
1: और मुझे लगता था वो लोग बहुत सुंदर होते हैं और उड़ते भी हैं और डिफरेंट जगह भी जाते हैं। मुझे डिफरेंट प्लेसेस घूमने का भी बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि अगर मैं एयर होस्टेस बन जाऊं तो एक तो आसमान पे उड़ भी सकती हूँ और दूसरी जगह देख भी सकती हूँ।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात। तो दोस्तों आपने सुना कि रुबीना जी बचपन में एयर होस्टेस बनना चाहती थी। तो अगला गीत रुबीना जी की उसी चाहत के नाम, जब वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: बहुत बढ़िया। रुबीना जी, बचपन की बात हो रही है, बहुत सारे टीचर्स आपके रहे होंगे, आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: हाँ, वैसे तो मेरे बहुत सारे फेवरेट टीचर्स थे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे मैथ्स टीचर मेरे बहुत फेवरेट थे, और उनके वजह से मेरा मैथ्स बहुत सुधर गया था और मैं बहुत अच्छा मार्क्स लेके आती थी, और मेरे मैथ्स टीचर भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। फिर जब भी मैं कॉलेज में गई तो मेरे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर मुझे बहुत पसंद थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत पसंद किया क्योंकि मेरा अच्छा होता था इकोनॉमिक्स में। और फिर मैं ये भी जानती हूँ और ये भी मेरा जीवन का फंडा है कि हम बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, सबसे बहुत कुछ सीखते हैं, सभी टीचर हैं एक दूसरे के, तो मैं अपने बच्चों को भी अपना टीचर मानती हूँ, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ।
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही
1: तो
0: आपने।
1: हाँ, लेकिन हाँ, ये दो टीचर स्कूल के, एक मेरे मैथ्स टीचर और कॉलेज के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे, ये मेरे अभी भी मुझे बहुत पसंद है। दोनों ही नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं बहुत याद करती हूँ दोनों को, और उनके वजह से आज मैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो उनको मैं सोचती हूँ उनके वजह से ही हुआ है।
0: बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात है। दोस्तों चलिए अगला गीत रुबीना जी के ही इन दो टीचर्स को डेडिकेट करते हुए सुनते हैं।

0: बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी गायकी। तो रुबीना जी मुझे बताए ना कि कौन से ऐसे तीन शब्द हैं, कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं।
1: जी जी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ।
0: ऑलराइट।
1: मैं लाइफ के हर डिसीजन को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करती हूँ। दूसरी चीज है, मैं बहुत आई एम ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, तो मैं ऑनेस्टी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ।
0: ओके।
1: और तीसरी है, मैं बहुत डिटर्मिंड हूँ। जो चीज मैं सोचती हूँ उसको मैं करके ही रहती हूँ। अगर नहीं कर पाऊंगी तो पहले से बता देती हूँ,
0: क्या बात
1: लेकिन
0: है,
1: हाँ कोशिश करती हूँ कि वो करके ही रहूं।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात कही है। मुझे आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आई मैम, जो आप डिटर्मिनेशन की कह रहे हैं। डिटर्मिनेशन वैसे भी किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत ही पावरफुल स्किल होता है। हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं और ये हमारे अंदर से इनबिल्ट भी होता है। बहुत खूब।
1: थैंक यू,
0: तो चलिए दोस्तों,
1: थैंक
0: सुनते हैं रुबीना जी के डिटर्मिनेशन के ऊपर एक प्यारा सा गीत।

0: और रुबीना जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए और नए जो गायक आ रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
1: जी जी, जरूर देना चाहूंगी। और प्रोग्राम सुनने वालों को तो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। आपने मेरा गाना सुना और सराहा, इसके लिए भी दिल से बहुत शुक्रिया है। और जैसे मैं बोली, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा मोटो है हेल्थ इज वेल्थ। तो आप अपने शरीर को, शरीर के प्रति सजग रहिए एंड आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा अगर आप योगा, प्राणायाम या कोई किसी भी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें। वो आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए बहुत अच्छा है। शरीर और मन को बैलेंस करता है योगा। तो मैं तो हमेशा बोलूंगी योगा, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ तो योगा के लिए ही बोलूंगी। लेकिन हाँ, अपने स्वास्थ्य के ऊपर जरूर ध्यान दें। गाना गाते रहे जो मन के लिए बहुत ही अच्छा है, और गाते रहे जो आपको शांति भी देती है, मन को शांति भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहिए।
0: बड़ी ही प्यारी बात रुबीना जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, हेल्थ जो होती है वो पहली वेल्थ होती है। अगर हमने उसे संभाला तो बाकी की सारी वेल्थ फिर अपने आप पीछे आ ही जाती हैं। बड़ी ही खूबसूरत बात कही रुबीना जी आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। आइए दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन टैलेंट, एक प्रतिभा, एक सिंगर आज हमारे साथ हैं। ये हैं सना आसिफ शेख जी। बाकी आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आज के कलाकार प्रोग्राम में मैं पहले सना जी का स्वागत करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा सना जी का। तो सना जी, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए थोड़ा सा बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करती हैं, बात कीजिए उनसे।
1: यस, सबसे पहले मैं समीर जी आपका, नितिन जी का और आपके एसएम टीम का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझे नितिन जी ने बताया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा टेंशन आया कि अरे मुझे मतलब अभी मैं क्या बताऊंगी। कि मुझे ऐसा लगा ना कि हम इतने जिंदगी में इतने आगे चले गए हैं कि बहुत पीछे मुड़ के देखना भी, और क्या मैं बताऊं, इस टेंशन में मैं ऐसे ही सोचती रह गई। और मैं पूरा मेरा बचपन, मेरे स्कूल का टाइम, मेरा जूनियर कॉलेज, देन मेरा डिग्री कॉलेज, ये मैं पूरा मतलब अपने आप बोलते ना जैसे ख्वाब में मैं घूम के आई, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतना मतलब मैंने एक खुशी महसूस की, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबका, एसएन टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे वो सारी सारी खूबसूरत यादें मुझे मतलब वापस से, सभी तो नहीं हो गई, पर फिर भी जो कुछ मुझे यादें आ गई उससे मुझे बहुत बहुत खुशी मिली। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सबका। और अगर मेरे बारे में बात करूंगी, तो वैसे मेरा जन्म जो है वो अहमदनगर, यानी अभी का जो अहिल्या नगर है, नाम चेंज हो गया है उसका, तो मैं अहमदनगर से हूँ। और वैसे मेरा पूरी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो संगीतमय फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरी मम्मी म्यूजिक टीचर थी, वो पुणे आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, गोवा आकाशवाणी रेडियो की स्टार थी, अहमदनगर रेडियो की स्टार थी। उसने बहुत सारे दिन रात म्यूजिक प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते थे घर में। मेरे पापा भी अच्छा तबला बजाते थे, भाई अच्छा गाता है, तबला बजाता है, बहन भी थोड़ा बहुत गा लेती है। तो एक कहेंगे ना, तो संगीतमय माहौल में ही मेरा जन्म हुआ है, मैं उसमें ही पली बड़ी हुई है। पर सोचते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है आगे। तो जैसे मेरा 10th हुआ, तो मेरा शायद 12th में मेरा संगीत विशारद भी कंप्लीट हो गया था, पर जब मुझे 11th स्टैंडर्ड में डालना था जूनियर कॉलेज में, तो मम्मी पापा ने सोचा था कि चलो इनको हम लोग क्या करेंगे, म्यूजिक करियर उनके दिमाग में था कि मेरा म्यूजिक में करियर हो। पर जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया अहमदनगर के, मैं न्यू आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज में पढ़ी, तो वहां जाने के बाद में फिर होता है ना कि हमें म्यूजिक तो था ही, पर मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद आया। फिर मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करके मैंने फिर स्पेशलाइजेशन मैंने साइकोलॉजी में किया, बीए किया, एमए किया,

0: बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया शुरुआत और बहुत ही प्यारे गीत। तो सना जी चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो पूछ लेता हूं, जिससे हमारे सभी सुनने वालों को आपकी संगीत के बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है उससे थोड़ी सी बढ़कर मिल जाए, फिर हम आपको समझने के लिए आपके ऊपर बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पसंदीदा गायक और गायिका आज तक की डेट में कौन रहे हैं, एक एक या दो दो आप बता सकते हैं, और भला क्यों। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आपको किस तरीके का संगीत पसंद है। आपने कहा विशारद, संगीत विशारद वगैरह भी आपने किया है, लेकिन फिर भी हर एक गायक या गायिका की अपनी एक पसंद होती है। गजल होगी, सूफी गाने होंगे, या बॉलीवुड संगीत होगा, या क्लासिकल होगा। सो दो सवाल, कौन तो आपके फेवरेट गायक गायिका हैं और किस तरीके का म्यूजिक आप पसंद करते हो, थोड़ा बताइए ना
1: जी। अगर मैं सही आपको बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा, मतलब मुझे, मैंने जो गौर किया है, मुझे जो सॉन्ग अच्छा लगता है वो मैं गा लेती हूँ, फिर वो मतलब किसी का भी हो तो जो दिल को छूता है या दिल को अच्छा लगता है, मैं उस गाने को मतलब कोशिश करती हूँ, फिर नहीं आता है तो उसको ट्राई करती हूँ, सीखती हूँ थोड़ा और फिर गाने की कोशिश करती हूँ। फिर उसमें जेंट्स हो, लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो, मतलब वॉट एवर, किसी का भी सॉन्ग हो। पर फिर भी हम देखेंगे तो लता जी है, आशा जी है, और लेटेस्ट में श्रेया घोषाल जी है, ये मुझे बहुत पसंद है। और कुछ गाने गीता दत्त जी के अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो ओल्ड वाले सॉन्ग है गीता दत्त जी के।
0: जी जी, और किस तरीके का संगीत आपको पसंद है वो भी तो बताइए।
1: देखिए मैं जब मतलब छोटी थी ना तो घर में सब

0: क्लासिकल का ही माहौल था, तो वो टाइम पे हमने कभी मतलब फिल्मी सॉन्ग मतलब सुनते थे हम लोग, पर कभी फिल्मी सॉन्ग की तरफ हम लोग झुके ही नहीं थे। तो ज्यादा करके सब पूरा मराठी माहौल था हमारे घर में, तो मैं पूरा मराठी ही मतलब जो मम्मी सिखाती थी वही गाती थी, या क्लासिकल वाले चीज थे या बड़े ख्याल थे ऐसे हम लोग गाते थे, या भावगीत भक्ति गीत अभंग यही गाते थे। तो थोड़ा सा फिल्मी की तरफ मतलब कभी ऐसा हम लोगों ने गौर ही नहीं किया था, पर जब शादी हो गई, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो प्रोफेशनली गाते हैं, उनकी वजह से एक्चुअल में मैं फिल्मी गाना मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में जब मैं देखती थी तो मुझे मतलब स्केल जो रहता था, तो जैसे मम्मी ने सिखाया था काली चार में मैं गाती थी, तो फिल्मी सॉन्ग बहुत हाई स्केल में होते थे तो मैं इतना गा नहीं पाती थी, पर शादी के बाद में मैं अभी काफी अच्छे तरीके से मतलब वो रिकॉर्डेड जो स्केल होते हैं मैं वो गाती हूँ। तो मैं दोनों सवाल जो है आपके उसका एक ही जवाब दूंगी, जो अच्छा लगे मेरे दिल को सुकून दे मुझे खुशी दे मैं उसी टाइप के गाने गाती हूँ, और ज्यादा करके मुझे जो स्लो रोमांटिक सॉन्ग होते हैं वो वाले बहुत पसंद आते हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल क्लियर बात है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए सना जी की ही गाए हुए इन गीतों का आनंद लें। तो जो उन्होंने कहा वो आपको इन गीतों में सुनाई देगा और बहुत मजा आएगा। लीजिए, पेश करता हूं।